मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव एवं FM पर एक साथ आरंभ होती है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट

0: देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 में अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के श्रद्धा रूपी पुष्प सबसे पहले अर्पित करते हैं माँ के चरण कमलों में। माँ जो ममतामयी करुणामयी है, माँ की पूजा करने के लिए किसी खास समय या दिन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हर रूप में हर समय माँ पूजनीय है, आदरणीय है।

हे गिरधर गोपाल, हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हमारे अवगुणों को दूर करके मन और तन को शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। हमें इतना ज्ञान दीजिए कि अपने और पराए को पहचान सकें, तेरी आराधना मन से कर सकें।

ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब में एक ही नूर देखा। नानक ने इस जहां के हर जर्रे में खुदा का जहूर देखा।

ब्रज के दुलारे माखन चोर और हम सब के संकट मोचन, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। उनकी कृपा और मधुर बंसी की तान हमेशा आपके जीवन में खुशियां और शांति बिखेरती रहे। हे कन्हैयालाल, आपकी जय हो।

0: इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज के कलाकार थे अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, असद और साथी, मोहम्मद रफ़ी, नरेंद्र चंचल और साथी। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: कौमों का उरूज व जवाल एक फितरी अमल है। उरूज के बाद जवाल और जवाल के बाद उरूज आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जवाल कुछ असबाबों मुहरिकात के बगैर आता हो। इसका सबसे नुमाया सबब अपनी तनकीद और एहतिसाब से गुरेज करना है। जो फर्द या समाज अपनी बुराइयों से आंखें बंद रखे उसकी इस्लाह करना मुहाल है। जब खुद एहतिसाबी न हो तो अकलियत पसंदी यानी रेशनलिज्म का पनपना मुश्किल है। एक मसले के हमेशा एक से ज्यादा पहलू होते हैं और मुनसिफाना अंदाज फिक्र के लिए हर पहलू पर नजर रखना जरूरी है। हम पहले सोचते हैं फिर अमल करते हैं, तो अमल की इस्लाह के लिए पहले सोच की इस्लाह करना लाजमी है। अगर अक्ल को पीछे धकेल दिया जाए तो जज्बात की हुक्मरानी हो जाती है और जज्बात का मरकज दिमाग है, वो सही खतूत पर सोचना छोड़ देता है। इससे बड़ी नादानी और कोई नहीं हो सकती कि हम ये तवक्को करने लगें कि दुनिया का कारोबार हमारे जज्बात से मुआफिक होकर चलता है। अकल जिंदगी में तवाजुन पैदा करती है और हद से बड़े हुए जज्बात जिंदगी का तवाजुन बिगाड़ देते हैं। जज्बात से ही नस्ली, मजहबी, समाजी या इलाकाई तासुब पैदा होता है। तासुब हमें अंधा बनाता है और बेइंसाफी और बददयानती अख्तियार करने पर आमादा करता है। बददयानती से दूसरों के हुकूक तलफ होते हैं, जिससे मुआशरे के अफराद में बेचैनी पैदा होती है और वो बेचैनी

0: किसी चैलेंज का मुकाबला करने पर उभारती है। इंसान को समाजी जानवर कहा गया है। वो तन्हाई को सजा समझता है और मिलजुल कर रहना चाहता है। समाज का ढांचा ऐसा है कि आदमी की दवा आदमी को बनाया गया है। सबके काम एक दूसरे से अटके होते हैं। अगर समाज का कोई तबका ये एहसास करने लगे कि वो उन हुकूक से महरूम कर दिया गया है जो दूसरों को हासिल हैं, तो उसमें जबर और धांधली का मुकाबला करने की कुव्वत उभरने लगती है और इससे मुआशरे का सुकून बर्बाद होता है। जो तबका इख्तदार में हो, पैदावार के वसाइल भी उसकी मुट्ठी में होते हैं और उसमें हवस पैदा हो जाती है। वो इख्तसादी वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा खुद उठाना चाहता है और दूसरों तक सिर्फ उतना ही हिस्सा पहुँचता है जितना उस हाकिम तबके के मफादात को बाकी रखने के लिए ज़रूरी हो। इस तरह मईशत की गलत और मुनसिफाना तकसीम होती है और कमज़ोर तबके में बेचैनी फैलती है। अगर तकसीम मुनसिफाना हो तो इस्तेहसाल ख़त्म हो जाता है और सारे तबकात खुद को एक सतह पर महसूस करते हैं तो समाज में खुशहाली आती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे हुकूक का हद से बढ़ता हुआ एहसास दूसरों की हक तलफी बन जाता है। ऐसा तबका जो पैदावार और वसाइल का फ़ायदा खुद उठा रहा हो, अवाम को छोटे छोटे और बेहकीकत मसाइलों में उलझाए रखता है, जिन पर अगर गौर कीजिए और गैर जानिबदारी से जायज़ा लीजिए तो मालूम होगा कि कौमी हैसियत के मसाइल ही नहीं हैं। इस तरह फसादात में उलझकर भोले अवाम आपस में सरफुट अव्वल करते रहते हैं और इस्तेमाल करने वाले तबके को दौलत बटोरने का खूब मौका मिलता है।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है

0: हल्दी।
1: हल्दी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हल्दी का यूं तो प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, इसके गुणों को भी जानना बहुत जरूरी है। हल्दी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। हल्दी का प्रयोग आमतौर पर खून के रिसाव को रोकने या चोट को ठीक करने के लिए किया जाता है। कई बार हाथ पैरों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए भी हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हल्दी का सेवन दूध में मिलाकर ही किया जाता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं। वहीं दूध में मौजूद कैल्शियम हल्दी के साथ मिलकर शरीर को फायदा पहुंचाता है। हल्दी का सेवन शरीर को सुडौल बनाता है। प्रतिदिन एक गिलास दूध में सुबह के समय आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से शरीर सुडौल हो जाता है। गुनगुने दूध के साथ हल्दी के सेवन से शरीर में जमा अतिरिक्त फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें उपस्थित कैल्शियम और अन्य तत्व वजन कम करने में भी मददगार होते हैं। हल्दी के सेवन से रक्त शोधित होता रहता है। इसे खाने से रक्त में मौजूद विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। पतला होने के बाद रक्त का धमनियों में प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्तियों को हृदय संबंधी परेशानियां नहीं होती। हल्दी में किसी चोट के घाव को तेजी से भरने का भी गुण होता है। यदि आपके चोट लगने पर तेजी से खून बह रहा है तो आप उस जगह तुरंत हल्दी डाल दें। इससे आपकी चोट का खून बहना कम हो जाएगा। हो सके तो डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले इस पट्टी को ना खोलें। सर्दी जुकाम या कफ की समस्या होने पर हल्दी मिले दूध का सेवन लाभकारी साबित होता है। इससे सर्दी जुकाम तो ठीक होता ही है, साथ ही गर्म दूध के सेवन से फेफड़ों में जमा हुआ कफ भी निकल जाता है। सर्दी के मौसम में इसका सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है और हल्दी के गुणों के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिससे हड्डी संबंधित तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस में भी कमी आती है। यदि आपको भी रात में नींद नहीं आने की समस्या है और आप रात भर विचारों में खोए रहते हैं तो हल्दी वाला दूध आपके लिए अच्छी नींद में सहायक हो सकता है। रात का भोजन करने के बाद सोने से आधे घंटे पहले हल्दी वाला दूध पिए, देखिए आपको रात में कैसी नींद आती है। खून में ब्लड शुगर बढ़ने पर हल्दी वाले दूध का सेवन फायदेमंद रहता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शुगर लेवल कम होता है, लेकिन हल्दी का ज़्यादा सेवन ब्लड शुगर की निर्धारित मात्रा को भी कम कर सकता है। समझ गए होंगे कि हल्दी कितनी गुणकारी है। इसका सेवन आप जरूर करें। एक चम्मच हल्दी आप नियमित रूप से शाम को खाने के बाद दूध में प्रयोग करें, तब आप देखेंगे कि स्वस्थ रहेंगे।
0: गुणकारी हल्दी कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश में अभी आप सुन रहे थे। इस पर जानकारी दे रहे थे राम स्वरूप गंगवार। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए एक नज़र डालते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष और दूसरी सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:45 पर रोजाना की भांति सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। 7 बजे प्रसारित किया जाएगा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज की कलाकार होंगी उर्मिला। 2 फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे हम लेकर हाजिर होंगे।

7:31 पर, 8:45 पर सुनिएगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स। गौरव भारत देश के कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 9:25 पर। आज सुनिएगा लोकमान्य तिलक जी की गौरव गाथा। उर्दू प्रोग्राम 9:30 पर समाप्त फरमाएंगे। आज सुनिएगा आकाशवाणी के नए साल पर एक बातचीत राजीव सक्सेना से। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप तक पहुंचेगा 10:00। 10:45 पर प्रसारित की जाएगी झलकी प्रेजेंटेशन ड्यू, जिसके लेखक होंगे बलराम सिंह। 10:55 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की जनता से मन की बात। 11:30 पर सुनिएगा मन की बात का संस्कृत अनुवाद।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम आप तक पहुंचेगा दोपहर 12:10 पर। कार्यक्रम कलियां हमारे बच्चे सुन सकेंगे 1:15 पर। दोपहर 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे 50 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। दूसरी सभा के आरंभ में शाम 5 सुनिएगा फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। हमारे युवा साथी कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:15 पर। हमारे किसान भाई कार्यक्रम कृषि जगत सुन सकेंगे शाम 6:20 पर, जिसमें चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। इसके अलावा भेंटवार्ता होगी पशुओं में बांझपन समस्या कारण और निवारण। डॉक्टर मनोज कुमार से बात करेंगे जसविंद्र। शाम 7 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आसपास, जिसके अंतर्गत सुनेंगे अजहा खाना बाबुल मुराद में मजलिस, ईदुल अजहा पर प्रशासन में सुनिए प्रशासन के सुरक्षा के किए इंतजाम। ईदुल अजहा पर प्रशासन ने सुरक्षा के किए इंतजाम। रामपुर में 1258 मस्जिदों और 190 ईदगाहों में हुई नमाज। नौतपा पर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी जानकारी। सुगम संगीत में आज 7:31 पर सुनिएगा चित्रा सिंह की गाई गजलें। गीत गाता चल कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा रात्रि 8:00। 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा अनुगूंज। रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण रहेगा रात 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा की शेष और दूसरी सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। आज सुनिए प्रसंग संख्या 314।
1: एपिसोड नंबर 314। 314।

अंगद के क्रोध में हाथ पटकने से पृथ्वी का प्रकंपन देख रावण अपने योद्धाओं को उन्हें मार डालने का आदेश देता है। कहता है, इसे मारकर सब योद्धा सभी दिशाओं में दौड़ जाओ और जहां कहीं भी वानर रीछ दिखाई पड़े उनको खा डालो। इस पृथ्वी से ही वानर और भालुओं का अस्तित्व मिटा डालो और फिर जाकर इनके स्वामी दोनों तपस्वियों को जीते जी पकड़कर यहां ले आओ। इस मूर्खतापूर्ण आदेश पर अंगद मुस्कुराए, फिर क्रोध में गरजे, अरे निर्लज्ज, तुझे मेरे बल का आभास पाकर भी भय नहीं लगता? पर स्त्री चुराने वाले पापी मंदबुद्धि, तेरा काल आ पहुंचा है। मैं अभी तेरा वध कर देता, किंतु ऐसा करने से श्री राम के वाणों की प्यास नहीं बुझेगी। इन शब्दों के साथ अंगद ने धरती पर पैर रोप दिया। बोले, यदि तू मेरा पैर धरती से उठा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, श्री राम भी लौट जाएंगे। अंगद की ये चुनौती सुनकर मेघनाथ तथा सभा में उपस्थित अन्य योद्धा मन ही मन हर्षित हुए। एक एक कर वे अपना पूरा बल प्रदर्शित करते हुए अंगद का पैर उठाने की चेष्टा करते हैं, किंतु उसे उठाना तो दूर, वे उसे हिलाने में भी असमर्थ हैं। लज्जित होकर वे अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस से आज का प्रसंग। आज आपने सुनी भाग संख्या 314। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय प्रातः की 5:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति।

कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ला के गाए लोकगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
1: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
0: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
2: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक

रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:18 होने वाले हैं।

0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से

0: उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
1: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। इस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर

0: के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
1: 833 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। अब जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर

0: साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

कार्यक्रम सुबह सवेरे के सभी साथियों को इरम फातिमा का प्यार भरा सलाम नमस्कार। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब सेहतमंद होंगे और अपने अपने सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रोज़ाना की तरह आज भी सुन रहे होंगे हमारा फिल्मी गीतों का इंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे, क्योंकि आप ही से जुड़े हैं हम। जब तक आप साथ देंगे तब तक हमारा वजूद है। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज के इतिहास की। आज के इतिहास में बहुत कुछ है खास। 31 मई यानी आज के दिन भारत के इतिहास में कई ऐसी महान विभूतियों की पुण्यतिथि भी होती है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया, जिसमें आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था, आज यानी 31 मई को। दिग्गज संगीतकार अनिल विश्वास हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान संगीतकार थे, निर्देशक थे, जिनका निधन 2003 में आज ही के दिन हुआ था। उन्हें भारतीय फिल्मी संगीत का भीष्म पितामह भी कहते हैं। दोस्तों,

मुकेश और तलत महमूद जैसे महान गायक कलाकारों को ब्रेक देने वाले अनिल विश्वास ही थे। भारतीय सिनेमा के पथ प्रदर्शक, महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम की पुण्यतिथि भी 31 मई यानी आज ही के दिन होती है। 1990 में उनका निधन हुआ था। उन्होंने दो आँखें, 12 हाथ, नवरंग और पिंजरा जैसी कला कालजयी और संदेश परक फिल्में बनाई थी। कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी मशहूर पार्श्व गायक के का निधन भी 31 मई यानी आज के दिन 2022 को कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के ठीक बाद हार्ट अटैक होने से हुआ था। उनके गाए गाने जैसे यारों, पल और तड़प तड़प के आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां मेहरुन्निसा का जन्म भी इतिहास में 31 मई यानी 1577 में हुआ था। भारत के दिग्गज और मशहूर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर पंकज राय का जन्म 31 मई 1928 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक राज घोसला का जन्म भी आज ही के दिन 1925 को हुआ था। उनकी फिल्में थीं सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते जैसे यादगार और सदाबहार फिल्में थीं। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और स्वतंत्रता सेनानी सैयद हैदर रजा का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, आज के इतिहास में बहुत सी चीज़ें हैं शामिल, जिसमें कि आपको बता दें 31 मई को हर साल देश भर में मनाई जाती है अहिल्याबाई होलकर का की जयंती। 2008 में जमैका के महान धावक उसैन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़ को महज 9.72 सेकंड में पूरा करके अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1759 में अमेरिका के उत्तर पूर्वी प्रांत पेंसिल्वेनिया में थिएटर के सभी कार्यक्रमों को पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज यानी झंडे को संशोधित और स्वीकृत

महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज यानी झंडे को संशोधित और स्वीकृत में शरण दी गई थी। ये था आज का इतिहास और अब सुनिए कुछ संदेश।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दोस्तों, हम बात करते हैं आज की लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती पर। भारत की एक महान दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासिका थी अहिल्याबाई होलकर। मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन साहस, संपन्न समर्पण, कुशल प्रशासन और महिला सशक्तिकरण का एक बेजोड़ उदाहरण है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी गांव में हुआ था। आज के दिन हर साल देशभर में उनकी जयंती बेहद श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। उन्हें उनके लोक कल्याणकारी कार्यों और प्रजा के प्रति मातृत्व भाव के कारण ही लोकमाता की उपाधि दी गई थी। अहिल्याबाई का शासनकाल 1767 से 1795 मालवा के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में सत्ता संभाली और अपनी प्रशासनिक कुशलता का लोहा मनवाया। अहिल्याबाई होलकर देश को देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को पुनर्निर्माण करवाया था। वो स्वयं रोजाना अदालत लगाकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुनती थीं। उन्होंने अपने राज्य में कर की दरों को बेहद व्यवहारिक बनाया और किसानों व्यापारियों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की। उन्होंने महेश्वर को एक प्रमुख सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र बनाया। आज देश दुनिया में प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियाँ और वहाँ के बुनकर उद्योग की शुरुआत महारानी अहिल्याबाई ने ही की थी। उस दौर में जब महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, दोस्तों, उन्होंने न केवल शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली बल्कि युद्ध के मैदान में अपनी सेना का नेतृत्व भी किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए भी कार्य किया। उनके प्रेरक विचार थे, ये सारा धन और सत्ता ईश्वर की थाती है, यानी अमानत है। मैं प्रजा की सेवक हूँ और मुझे पाई पाई का हिसाब उस ईश्वर को देना है। दोस्तों, उनका जीवन सिखाता है कि नेतृत्व का असली अर्थ सत्ता का उपभोग करना नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़ी व्यक्ति की सेवा करना है। इस वर्ष उनकी जयंती पर हम देश के सभी उनके गौरव को सहेजने वाली इस महान वीरांगना को कोटि कोटि नमन करते हैं। और दोस्तों, सुनते हैं ये गीत जो एक महिला की उड़ान पर मबनी है।

दोस्तों, अगर महिलाएं चाहें तो आगे बढ़ सकती हैं, हौसलों के साथ में अपने उन कांटों से आंचल को खींचकर बहारों के चमन में आ सकती हैं। बस ज़रूरत है अपने आप पर भरोसा करने की, अपनी हिम्मत को, अपनी पहचान को पहचानने के लिए, यानी अपने अंदर की उस ताकत को पहचानने की, शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है और हौसले के साथ आगे बढ़ने की। दोस्तों, आज मनाया जा रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी आज 31 मई है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है दोस्तों। ये न केवल इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसके धुएं से आसपास के लोगों को भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तंबाकू का सेवन बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम या सिगार के ज़रिए भी किया जा सकता है। ये सारे जो नशे हैं, ये धूम्रपान के अंदर आते हैं। चबाने या बिना धुएं वाले रूप में भी होते हैं, जैसे कि गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला, मंजन या गुल। तंबाकू में निकोटीन नाम का अत्यधिक लत लगाने वाला पदार्थ और सैकड़ों जहरीले रसायन जैसे टार, कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक पाए जाते हैं। दोस्तों, तंबाकू का सेवन मुंह, गले, फेफड़े, भोजन नली, पेट और मूत्राशय के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। भारत में मुंह के कैंसर के मामलों में गुटखा और खैनी का बहुत बड़ा हाथ है। धूम्रपान से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और न जाने कितनी बीमारियां सांस से संबंधित पैदा हो जाती हैं। निकोटीन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और दिल की धड़कन तेज़ करता है। इससे धमनियों में ब्लॉकेज होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी ख़तरा बढ़ जाता है। दांतों का पीला या काला होना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना और धीरे धीरे मुंह का खुलना कम होना इसके आम लक्षण हैं। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू के सेवन या धूम्रपान के धुएं से के संपर्क में रहने से गर्भपात, समय से पहले प्रसव या बच्चे का वजन कम होने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। दोस्तों, किसी भी सूरत में तंबाकू का सेवन अच्छा नहीं है, नुकसानदेह ही है। और जहां तक हो, कोशिश करें कि लोगों को जागरूक करें कि तंबाकू से बचें। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ खुशियों और आराम का नाम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से दुख, दर्द, उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि लगने लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया और इंसान हार मान लेता है, तनाव और टेंशन में रहता है। अपनी इस हालत को डाइवर्ट करने और टेंशन से बचने के लिए सहारा लेता है किसी न किसी नशे या तंबाकू का। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, पाइप या और अन्य नशीले पदार्थ जैसे गांजा, हशीश और चरस वगैरह, ये सब दोस्तों सिर्फ एक दिल का बहलावा है। कोई भी चीज़ टेंशन को कम नहीं करती, तनाव को ख़त्म नहीं करती, बजाय इसके धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है इंसान को। धूम्रपान सिर्फ पीने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आसपास के लोगों को भी उस धुएं के संपर्क में आने से सांस की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को भी बराबर का नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, हमें और आपको भी चाहिए कि हम आसपास के अपने साथियों को, पड़ोसियों को और मिलने वालों को जागरूक करें, तंबाकू के सेवन से बचाएं, और सरकार भी इसके लिए मुहिम चला रही है और बहुत सारी कोशिशें कर रही है। आज 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसानों, बीमारियों और मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, साथ ही उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, हर साल इस दिन के लिए एक विशेष थीम भी रखी जाती है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जो वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता है।
दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, ज़िंदगी कैसी भी गुजरे, चाहे सुख हो या दुख, उसे स्वीकार करना और उसे उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने गमों को धुएं में उड़ा दीजिए और चलते रहिए ज़िंदगी का साथ निभाते हुए।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनाया जा रहा है आकाशवाणी का 90 साल का जश्न, तो अब अगला सेगमेंट आकाशवाणी के 90 साल। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर बीबी तबस्सुम, प्रोफेसर रजा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बात है।

नमस्कार। आकाशवाणी रामपुर के स्थापना दिवस तथा आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में प्रोफेसर बेबी तबसुम गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर की तरफ से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो केवल एक संचार माध्यम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, संस्कृति, ज्ञान, सूचना और जन जागरण का सशक्त सेतु है। बदलते समय के साथ अनेक तकनीकें आईं और गईं, लेकिन रेडियो ने अपनी विश्वसनीयता और आत्मीयता को सदैव बनाए रखा। यही कारण है कि आज भी जब कोई परिचित स्वर हमारे कानों में पड़ता है तो एक अपनापन और विश्वास स्वतः ही जागृत हो जाता है। आकाशवाणी की यात्रा भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा रही है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अपने मूल उद्देश्य को लेकर आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक

0: आकाशवाणी ने प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय क्षण की साक्षी बनकर जनमानस को जोड़े रखा है। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तब ये अवसर केवल अतीत को स्मरण करने का नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को पहचानने का भी है। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने समय के साथ स्वयं को लगातार परिवर्तित और विकसित किया है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम नवाचारों की बात करें तो आकाशवाणी ने पारंपरिक रेडियो प्रसारण से आगे बढ़कर डिजिटल मंचों को अपनाया है। अब कार्यक्रम केवल रेडियो सेट तक सीमित नहीं है बल्कि मोबाइल ऐप, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में सुने जा सकते हैं। इससे श्रोताओं का दायरा पहले की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत हुआ है। तकनीकी नवाचारों के साथ साथ कार्यक्रमों की विषय वस्तु में भी निरंतर परिवर्तन आया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा रोजगार जैसे विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने समाज को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्थानीयता है। ये स्थानीय संस्कृति, भाषा, लोक कला और जनजीवन को राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। भारत की विविधता को संरक्षित और प्रसारित करने में इसकी भूमिका अतुलनीय है। इसी संदर्भ में आकाशवाणी रामपुर का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। रामपुर की सांस्कृतिक, साहित्यिक और संगीत परंपरा को देश भर में पहुंचाने का कार्य इस केंद्र ने निरंतर किया है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बेबी तबस्सुम को। इसी के साथ फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न करने की अपनी दोस्त इरम फातिमा को दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत।

0: होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nau Sena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defense Minister

0: Forecast heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लेंग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरूने मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
2: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लेंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کی ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات پر نظر ثانی کی ہے۔ اس قدم کا مقصد مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے جاری غیر یقینی

कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स में पहला गीत आप सुनिए, फिल्म जंगली से आवाज़ है जुबीन नौटियाल की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अगला गीत फिल्म द ट्रेन से आवाज है केके की।

102.9 मॉर्निंग हिट्स का अगला गीत फिल्म फन्निकान से सुनिए, सुनिधि चौहान और दिव्या की आवाज़ों में।

फिल्म लव यात्री में अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। अगला गीत केके की आवाज में, फिल्म का नाम है लाइफ इन मेट्रो।

खूबसूरत गीत के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए। आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा चाहती है यहाँ से अनुमति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स, मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नश्र किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं, जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पे, जैसे मैंने कहा कोविड-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी, उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी हमेशा, भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है, जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह की बातें आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं, उसमें AI का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि AI से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेश स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का GDP कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से AI को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे न केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
2: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के, आपने एआई की बात की, पढ़ाई को लेकर के, ये क्या क्या चेंजेस हुए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं। एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की। किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है मुंबई में, दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में। जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
3: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है और वो इकोसिस्टम ना केवल आपकी, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेसवेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेसवेज बल्कि जो टर्शरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो एनएचआई बना रहा है, अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा, एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में एआई को लेके भारत की जो कंपनियां, अग्रणी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम हो।
2: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है। और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं। हर घर जल की अगर बात करें 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो पीएम आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की, युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला।
3: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट, सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है, खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है एमएसएमई को लेके कि कोलैटरल फ्री लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है। क्योंकि की महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य है, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
2: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
4: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के। आज सुनिए लोकमान्य तिलक के जीवन से

चिहुक उठा महाराष्ट्र प्रांत का लोकमान्य निर्भय सेनानी, दया न अंग्रेजों की चाही, जगा दिया हर हिंदुस्तानी, स्वतंत्रता अधिकार हमारा जन्मसिद्ध बतलाते हैं, अपने जीवन की ज्योति जगा जीवन ज्योतित कर जाते हैं। क्रांति की चिंगारी को ज्वाला में परिवर्तित करने वालों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रिम पंक्ति के देशभक्तों में लिया जाता है। तिलक के बचपन का नाम केशव दास था। इनका जन्म 22 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। पिता गंगाधर राव शिक्षक थे। आप पर पिता के देश प्रेम आदि गुणों का बहुत प्रभाव पड़ा। मराठा और केसरी में अपने विचार खुलकर लिखते थे। तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1887 में प्लेग को रोकने के लिए रेंट की नियुक्ति हुई। रेंट ने विपरीत कार्य किया, जिस पर नवयुवकों ने क्रुद्ध होकर रेंट को मार गिराया। इस हत्या में गणेश सावरकर, चाफेकर बंधु और तिलक को 7 वर्ष के काले पानी की सजा हुई। कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन पर गीता पर व्याख्यान के पश्चात मानपत्र दिया गया। तभी से आप लोकमान्य के नाम से विख्यात हुए। 18 जुलाई 1920 को भारत के इस महान सपूत नेता का निधन हो गया। आप सदैव दीप स्तंभ की तरह भारतीय युवकों को प्रेरणा एवं प्रकाश देती रहेंगे।

गौरव भारत देश की कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लोकमान्य तिलक की गौरव गाथा। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी फैमिली को, तमाम सामईन को जो कि इस फैमिली का खूबसूरत सा हिस्सा है, और उन्हीं के हौसला अफजाई से हम सब मिलकर ये खूबसूरत प्रोग्राम नशर करते हैं यहाँ से, तो उन सबको मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद कि इतना खूबसूरत सा एक सफर उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, और आगे के लिए दुआएं भी और ये उम्मीद भी कि ये सफर ऐसे ही जारी सारी रहेगा, बल्कि और खूबसूरत और दिलकश बनकर अपना 7 साल सफर भी बहुत खूबसूरती के साथ ये मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा। इसी उम्मीद, इसी पैगाम और इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ये कहते ये दुआई कलमात कि तुझे मुड़ के देखें गुलाब भी, तुझे चाहते वो नसीब हो, तुझे मुड़ के देखें गुलाब भी, तुझे चाहते वो नसीब हो, करे रश्क तुझ पे ये आसमां, तुझे रफ़अते वो नसीब हो।
1: समीन, जिस वक्त हमारे पास मालूमात हासिल करने के ज़राए महदूद थे, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेडियो ही एक ऐसा ज़रिया था कि जिससे हम खबरों से लेकर अतफाल या और भी प्रोग्राम जो उस वक्त नशर किए जाते थे उससे अपना वक्त गुजारा करते थे। और ये सिलसिला मैं भी अपने बचपन से देखती चली आई, और मुझे भी रेडियो से दिलचस्पी होती गई, और मुझे ये शौक़ आज यहाँ ले आया। 90 साल का ये तवील सफ़र जिसने हालात को हर मुमकिन अपने अंदर इस तरह समोया कि एक तारीख़ी हैसियत आज ऑल इंडिया रेडियो के तौर पर हमारे सामने है। समीन, रेडियो महज दिल बहलाने का कोई ज़रिया नहीं, इससे हमारे जज्बात की वाबस्तगी है। समीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का ये पूरा प्रोग्राम रेडियो पर ही मबनी है, चूँकि रेडियो को 90 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और इस लंबे सफ़र में कई लोग शरीक थे और आगे भी शरीक हैं, तो हमारे उर्दू प्रोग्राम भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है जो दिल से दिल को जोड़ता है। जी हाँ सामईन, रेडियो की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ आवाज़ें गूंजती हैं और आवाज़ों से ही हमारी पहचान हुआ करती है। इस कारवां में शामिल यूँ तो कई नाम हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं फरीदुल्ला खान साहब, जो मेरे भाई हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रबाब अंजुम साहिबा। जब इन्होंने यहाँ कदम रखा तो शायद हम में से कोई नहीं था, पहली फ़र्द आप ही थी, और मैं आपसे जानना चाहूँगी रेडियो प्रोग्राम में आने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ।
2: बहुत बहुत शुक्रिया शिबा साहिबा, आपने हम सबको इस प्रोग्राम में शामिल किया, क्योंकि हम सब का रेडियो से एक अटूट रिश्ता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आवाज़ों का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, हमारी आवाज़ें ही हमारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। मैं यहाँ 2002 से लगातार उर्दू प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, लेकिन रेडियो से मेरा रिश्ता बहुत दैरीना है। जब हमने आँख खोली और समझ आई तो अपने कानों में रेडियो की आवाज़ सुनी। वालिदे ग्रामी हर वक्त अपने सरहाने रेडियो रखते थे और तमाम स्टेशन से खबरें सुना करते थे, बेहतरीन प्रोग्राम सुना करते थे, और जो ऐसे प्रोग्राम होते थे मालूमात अफजा, वो ख़ासकर हमें भी बैठकर सुनवाया करते थे। बीबीसी लंदन से एक प्रोग्राम आता था शाहीन क्लब बच्चों का, और एक आता था साइंस क्लब, मालूमाती प्रोग्राम, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी कि हफ्ते के उस दिन हमें बैठकर वो कज़न सुनना है। उसके अलावा ख़बरें हमें सुनवाई जाती थी। फिर जब थोड़ा बड़े हुए तो रामपुर रेडियो मरकज़ से एक प्रोग्राम बच्चों का आया करता था, कलियाँ, जो आज तक जारी है। वो प्रोग्राम पहले हमने सुना, फिर उसमें हिस्सा लेने का शर्फ हासिल हुआ। उस वक्त में उसकी मेज़बान होती थी रजनी दीदी और चीकू भैया। रजनी दीदी और चीकू भैया के साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में कलियाँ में हिस्सा लिया, और मुझे याद आता है वो वक्त कि उस प्रोग्राम में एक मुकाबला कराया गया था, तकरीरी मुकाबला, जिसका उन्वान था मम्मी अच्छी के पापा। हमने भी उस मुकाबले में हिस्सा लिया था, और शायद वो ज़िंदगी का पहला मुकाबला था और मैं उसमें फर्स्ट आई थी,
1: माशाल्लाह।
2: तो उसके बाद से फिर जो ये अटूट रिश्ता बंधा, वहाँ से कन्या प्रोग्राम के बाद अगला स्टेशन था युवाणी, बहुत सारे प्रोग्राम उसमें भी दिए। उसके बाद हम उर्दू प्रोग्राम में बहसे टॉकर आया करते थे। जब 2002 में हमें पता चला कि हाँ उर्दू प्रोग्राम के लिए कंपेयर की वैकेंसी निकली है, तो हमने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसमें तकरर हुआ। तब से लेकर आज तक रेडियो का और मेरा, सामीन का और मेरा एक ऐसा रिश्ता बन गया कि जो शायद कभी ना टूटे जब तक आवाज और जिस्म में रूह सलामत है।
1: बहुत बढ़िया।
2: और ये सफ़र इतना खूबसूरत रहा शिबा
1: जी,
2: कि इसमें हमें इतने बेहतरीन लोगों से मुलाकात हुई, शायद अगर हम रेडियो से नहीं जुड़ते तो ऐसी शख्सियात से हम नहीं मिल सकते थे। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जनाब वसीम बरेलवी साहब और ऐसी दीगर बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू लिए, उसके अलावा मोहम्मद अली मौज साहब के साथ हमने गुफ्तगू की। उसके बाद मोहम्मद अली मौज साहब स्टेशन डायरेक्टर होकर आए और उन्होंने वो शफ़क़त का मुजाहरा किया, इतने मुशफिक और मुखलिस शख्सियत थे कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बताया रेडियो के बारे में और हमें काबिल किया कि हम पूरे एतमाद के साथ माइक्रोफोन पर आने लगे।
1: बहुत खूब।
2: उसके बाद मंदीप मैम का साथ रहा, सरवत उस्मानी साहब का साथ रहा, ये ऐसी शख्सियात थी जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़ुबैर रिज़वी साहब हमारे ज़माने में जा चुके थे यहाँ से, लेकिन फ़ोन पर उनसे रابطہ हुआ, एक आध बार उनके बारे में कुछ बातचीत भी उनसे की। गरज ये कि जब से आज तक का ये सफ़र इसी तरह जारी है और बहुत यादगार ये लम्हे हैं हमेशा के लिए। बहुत अच्छा। अब आप सबका साथ है शिबा,
1: बिल्कुल,
2: फरीद
1: बिल्कुल
2: भाई हैं, आप हैं, शमामा साहिबा हैं और दीगर बहुत सारे साथी हैं, आयशा हैं, असीम सर, राजेश्वरी सर, इन सब के साथ हमने काम किया और सब के साथ अलग अलग तजुर्बे हुए, बहुत अच्छा वक्त।
1: तो फरीद भाई, मेरा सवाल आपसे है कि आपको भी एक तवील अरसा हो चुका है रबाबा जी के बाद, शायद आप ही ने दस्तक दी और आज माशाल्लाह उर्दू प्रोग्राम आप बाखूबी संभाल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए उस वक्त में और आज के वक्त में क्या कुछ बदला?
3: बहुत शुक्रिया शिबा, क्योंकि ये 90 साल का अरसा तो खैर हमने नहीं देखा है और 2003 से मुसलसल 2026 तक अभी चल रहा है, 2026 इसमें हम मौजूद हैं। जब 2003 में हम यहाँ पर आए और हमें रेडियो तो शौक़ था घर में, हमारे भाई का बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा याराना कहें मोहम्मद अली मौज साहब से, क्योंकि उनका घर का बिल्कुल ताल्लुक़ था, मौज साहब घर पर आया करते थे और हमारे भाई उनके घर जाया करते थे, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे
2: और बहुत अच्छे शायर थे।
3: बिल्कुल, और बहुत अच्छे शायर थे, क्या शायराना अंदाज में अपनी बात कहते थे और क्या उनका तरन्नुम था।
2: फरीद भाई, उनका एक शेर बड़ा याद आता है
3: जी,
2: आप तो रात
3: सो लिए साहिब,
2: हमने तकिए भिगो लिए।
3: बेशक बेशक शीबा, उनकी जब बात चल रही है मोहम्मद अली मौज साहब की, तो उनकी किताब जो कुल्लियात मौज आई
1: जी,
3: उनके इंतकाल के बाद वो किताब शाया कराई थी मंदीप कौर जी ने, तो
1: जी,
3: उसको ट्रांसलेट जो किया था वो मैंने और शमामा मसूद साहिबा ने किया था हिंदी में, यानी उर्दू की हिंदी में ट्रांसलेट
1: अच्छा।
3: होना थी, तो वो सारी चीजें जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे तो मौज साहब के पास हम घर पे जब गए तो हमने उनको दिखाया लिख के ये चीज करी है हमने, तो थोड़ी सी लाइन आड़ी हो गई थी कहीं, वो ब्लैंक पेज पे लिखना बहुत कर्रा होता है, सादा पेज होता है और उस पर जब चलती है लाइन, तो बोले ये लिख के लाया हो, देखो जरा ये लिखाई है, जरा लिखाई देखो।
1: काबिल लोगों की यही होती है कि वो अपनी तहरीर वो सतर पकड़ लिया करते
3: पकड़
1: हैं।
3: अब वो मंदीप कौर भी वहाँ मौजूद, वहाँ सुखराम जी भी मौजूद, वहाँ हमारे भाई साहब भी मौजूद, वहाँ यदुवंशी जी भी मौजूद उनके घर पे, और हमारी क्लास लग रही है और हम उसको बिल्कुल, क्योंकि हम सुधरना चाहते थे उनकी, हम अपनी इस्लाह करना चाहते थे कि वाकई में जो हमारी कमी है वो कैसे दूर हो, और कमी ऐसे ही दूर होती है कि अगर हमें ऐसा उस्ताद मिल जाता तो वाकई में हम कहां पर
1: करने
3: होते
1: वाले लोग
3: बिल्कुल
1: कम है आजकल।
3: खैर, हम अगली बार जब लेकर गए लिखकर तो मैं भी था और शमामा भी साथ में थी, तो बोले मजा नहीं आया। अभी जब मनदीप जी ने देखा, मनदीप जी बोली कान में उनके, कहा कि ये तो बहुत अच्छा लिख के लाया है अभी, अरे बोले और सुधरेंगे, अभी अभी क्या सुधारा है, अभी तो और सुधारेंगे, ये मेरे बच्चे हैं, जब बच्चे कहा तो हमारे आंखों से आंसू जारी हो गए कि मतलब वाकई में ये सरपरस्त होते हैं, ऐसे होते हैं कि देखें आपके सुधारने वाली चीजें कितनी अच्छी। खैर, वो काम चलता रहा। यहाँ पर सुखराम जी थे, उनके पास सेक्शन इंचार्ज थे वो,
2: जी
3: और यदुवंशी जी भी थे उस दौर
2: जी
3: में,
2: जी
3: और दुबे सर भी थे हमारे,
2: जी
3: और रामचंद्र जी भी थे।
2: जी
3: एक
2: जी
3: भरा हुआ यहाँ पर पूरा
2: इन सब
3: स्टेशन
2: के
3: होता
2: अंदर मैंने
3: था,
2: भी काम किया,
3: और बहुत अच्छा लगता था ये
2: बहुत
3: आकाशवाणी
2: बहुत
3: उस
2: अच्छा।
3: वक्त में। जब सेक्शन कोई रिकॉर्डिंग होती थी तो सुखराम जी ये कहा करते थे, जाओ ये, हाँ एक टॉपिक दिया हमें लिख करके, इस पे लिखो कुछ।
2: अच्छा
3: वो खैर हम लिख कर लेकर आए, हमने कोई बोले लगभग 150 अल्फाज होने चाहिए और कम से कम इतना ही, दो दो तीन पेज हो ये हो। खैर हम निबंध जैसे लिखते हैं इस टाइप से, उनको लिख कर दिखाया हिंदी में अल्फाज, और उसमें बोले हिंदी भी हो उसमें, इंग्लिश भी हो और उर्दू
2: और
3: भी हो,
2: उर्दू भी हो।
3: तो ये तुम्हारी बोले देखा जाएगा, तुम्हें परखा जाएगा। खैर हमने लिख के दिखाया उनको, तो बोले हाँ सही है, मजा सही है, अच्छा पढ़ो जाके। अब पहली मर्तबा हमारे सामने ये माइक आया, तो हमने जब स्कूल में टीचिंग किया करते थे तो असेंबली में तो खैर होता था
2: जी
3: माइक,
2: जी
3: लेकिन वो माइक में और इस माइक में बहुत ज़मीन आसमान का
2: तो कुछ
3: फर्क,
2: घबराए आप क्या?
3: क्योंकि हाँ घबराहट तो बिल्कुल होती है फर्स्ट टाइम पे, एक
2: जी
3: हेजिटेशन होता है, झिझक होती है इंसान को, और फिर
2: यकीनन
3: सामने हमारे मौजूद
2: बड़ी
3: अधिकारी,
2: बड़ी
3: हमारे
2: हस्तियां।
3: जो मोहम्मद अली मौज साहब या मनदीप कौर जी हों या फिर सुखराम जी हों,
2: जी
3: तो वो लोग सब मौजूद वहां पर, और उस चीज को वो, अच्छा वो दौर था कंप्यूटर का दौर नहीं था, वो
2: जी
3: स्पूल
2: जी
3: का दौर और रिबिन वाले वो होता था कैसेट,
2: जी
3: उस पे रिकॉर्डिंग हुआ करती
2: उस
3: थी
2: पर
3: वो।
2: होती थी।
3: वो खैर हमारी आवाज उस टाइम तो ये लोग नहीं थे मौजूद, हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके हमने कहा सुन लिया इनके, सुनवाया उनको, तो सुखराम जी बोले हाँ हाँ चलो सुधार आ जाएगा अभी, बहुत अभी टाइम पड़ा,
2: जी
3: अभी तो ट्रेनिंग लोग है ये है वो है। हमारे साथ रबाब बाजी 1 साल पहले कर चुकी थी, क्योंकि सीनियर थी हमारी ये,
2: जी
3: तो थोड़ा बहुत हमने इनका भी देखते थे। अच्छा रेडियो, ये कहते थे मौज साहब कि रेडियो सुना करो,
2: जी जी
3: और ये सब सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि
2: बिल्कुल
3: क्या होगा। उन्होंने उन्हीं के लिखी हुई जो स्क्रिप्ट थी उसी से इंटरव्यू लिया था हमें, हमने बहुत कुछ उसमें रटा, बहुत कुछ रटा
2: जी
3: सीखा
2: जी
3: उसमें, शायरी के अंदाज में भी, खबरों के अंदाज में भी। अच्छा हमें बताया करते थे हमारे भाई कि देखो खबरें जैसे आती हैं उसी अंदाज में पढ़ना खबरें, क्योंकि एक लाइन उसमें दो चार अल्फाज दिए हुए थे कि
2: जी
3: खबरों के
2: मुझे भी
3: अंदाज में
2: याद है
3: पढ़ो,
2: वो
3: आपको भी दी
2: स्क्रिप्ट।
3: होगी यहाँ
2: जी
3: पे,
2: बिल्कुल याद है
3: वो
2: मुझे।
3: तो अपने हमें वैसी
2: जी
3: प्रैक्टिस के तौर पे हमें
2: जी
3: बताया
2: जी
3: गया। खैर वो हमने यहाँ पर आए और हमने वो इंटरव्यू दिया और उसमें पास भी हो गए, लिखित में भी पास हो गए। जो मौजूद मनदीप जी और सुखराम जी और यदुवंशी जी, अलग अलग बढ़ता रहा और
2: जी
3: सेक्शन कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास आता रहा, और यूं आने जाने के सिलसिले में हमने जो कमियां थी वो भी हमारी
2: दूर
3: सुधार
2: हो गई।
3: आता गया और हम सीखते गए, और
2: जी
3: सीखते सीखते ये नौबत आई कि
2: बिल्कुल
3: हमारे साथ सुनेंद्र राजेश्वरी जी
2: जी
3: एक यहाँ की शख्सियत ही थे उस टाइम पर,
2: बिल्कुल
3: और आज भी वो लखनऊ से जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता
2: दिल
3: है,
2: पर
3: बहुत
2: असर
3: अच्छा
2: करती है
3: लगता है।
2: उनकी आवाज।
3: दूसरी असीम सक्सेना जी, एक
2: अरे क्या
3: मानवीय
2: कहना,
3: शख्सियत उनकी आवाज़ में, उनकी अल्फाजों में, जब वो
2: बहुत
3: प्रोग्राम का
2: मुखलिस
3: यहाँ पे
2: इंसान
3: निजामत करते हैं कोई,
2: बिल्कुल।
3: तो सुनते रहो और
2: फरीद भाई
3: देखते
2: ये
3: रहो।
2: वो शख्सियत हैं जिनके लिए कहना बेजा नहीं है कि इनकी आवाज ही इनकी पहचान।
3: बिल्कुल
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल।
2: बिल्कुल
3: प्लस हमारे साथ मनदीप कौर जी जो यहाँ की
2: क्या
3: पैक्स थी उस
2: यादगार
3: टाइम
2: लम्हे
3: पर,
2: हैं वो।
3: और हमें सिखाने के लिए मतलब बताने के लिए हर हर जगह खड़ी होती थी, हर हर चीज़, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं। उस चीज़ को ड्रामे में भी, ड्रामा होता था ये, रबाब बाजी और फायज़ा, अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, फायज़ा का नाम भी लूंगा क्योंकि फायज़ा
2: जी
3: ज़ुबैर से भी
2: बिल्कुल
3: बहुत अल्फाजों को मतलब सीखा है कि वाकई में बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी
2: बहुत
3: शायरी
2: मोहब्बत
3: करती
2: करने
3: हैं
2: वाली
3: और बहुत
2: शख्सियत
3: अच्छे
2: है।
3: अच्छी शख्सियत की
2: बिल्कुल
3: मालिक हैं।
2: बिल्कुल
3: रबाब बाजी जब बोलती थी तो वाकई में उस टाइम पे उनकी आवाज़ एक था जलवा आवाज़ में, और आज भी है वो आवाज़ में जलवा, लेकिन जब फीचर पेश किया करती थी तो वाकई में वो फीचर काबिल तारीफ होते थे, और उसकी
2: हकीकत में
3: तारीफ
2: फरीद
3: आती
2: भाई
3: थी
2: उन
3: वहां से बाहर
2: फीचर्स के
3: से।
2: लिए हमने कितनी मेहनत की है कि हमसे राजेश्वरी सर कहते कि सुबह ही आना।
3: जी बिल्कुल
2: सुबह 6 बजे आते थे हम और एक-एक सेंटेंस को बोलते
3: बिल्कुल
2: थे कितनी कितनी बार, नहीं अभी मजा नहीं आया।
3: यही
2: मनदीप
3: बात,
2: मैम कहती थी नहीं इसमें मजा नहीं आया, दोबारा बोलो।
3: दोबारा बोलो, वही चीज होती है कि इंसान को सीखना पड़ता है और वक्त देना पड़ता है। मुझे याद आती है मोहम्मद अली मौज साहब की वो बातें कि वाकई में जो बात उन्होंने कही थी कि ऐसे बनो कि आकाशवाणी को तुम्हारी जरूरत हो, यहां से फोन जाए तुम्हारे पास में,
2: जी ये
3: और
2: बात क्या
3: वाकई
2: कही।
3: में ये बात, जब फोन यहां से जाता है तो मेरे कानों में उनकी आवाज वो गूंजती है, और ये कहते थे कि जब यहां आओगे तो 6 बज रहे होंगे और जब निकलोगे तो शाम को 6 बजे ही निकल रहे होगे तुम, घड़ी की सुइयां मतलब दोनों टाइम पे, और वो
1: यकीनन
3: जब
1: यहाँ
3: मैं
1: वक्त का
3: यहाँ
1: पता
3: पर
1: नहीं है।
3: काम करता था उस टाइम पे जब बहुत काम हुआ करता था, तो जब हम यहाँ 12 बजे आते थे तो कभी कभी 8 भी बज जाया करते थे, कभी कभी 10 भी
1: जी
3: बज जाया
1: जी
3: करते थे। इतनी लगन, इतनी चाहत रेडियो से कि मत पूछिए,
1: बिल्कुल।
3: और वो चाहत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि
2: आए हम लोग थे यहाँ पर सिर्फ उर्दू कंपेयर बनकर,
1: जी,
2: लेकिन यहाँ रहकर ही हमने फीचर लिखना, फीचर बनाना
3: बिल्कुल
2: सीखा,
3: यही बात,
2: बिल्कुल हमने ड्रामे करना सीखा, यहाँ बहुत से ड्रामों में अपनी आवाज दी,
3: बिल्कुल
2: और वो भी एक फन है
3: बिल्कुल।
1: बिल्कुल, जो हमें यहाँ आकर ही बेहतरीन तरीके
3: और
1: से पेश
3: यहाँ
2: करने
3: के
2: का
3: देखिए
2: मौका मिला।
3: रबाबा जी, अफसरान में अगर बात करें राम कुमार सक्सेना जी की, बेइंतहा अच्छी शख्सियत के मालिक, कितना अच्छा उनका लहजा बोलने का।
1: बिल्कुल,
3: अब गंगवार सर की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी आदत और अखलाक के आदमी, बहुत अच्छे।
2: राजेश जी,
3: राजेश
2: रामचंद्र
3: जी
2: जी,
3: बिल्कुल यही बात है, राम
2: बहुत अच्छी शख्सियत
3: यदुवंशी,
2: थी।
3: कितनी अच्छी आदत उनकी कि कभी भी कोई काम को हमने कहा तो फौरन के फौरन कर दिया उन्होंने, किसी को हमें कभी सख्ती नहीं करी। मंजुला नेगी जी आई, शोभित जी
2: जी,
3: आए हमारे लिए, तो ये तो जो अधिकारी
2: विनय
3: आए,
2: सर,
3: विनय सर देखें, और एक आए थे जैन सर आए थे वहां से आगरे से, वो भी मतलब उर्दू उनके पास कुछ दिन
2: एक
3: रहा।
2: दुबे सर आए थे,
3: दुबे सर की तो आदत का
2: वो भी बहुत
3: आज
2: अच्छे।
3: भी उनके मैसेजेस जो
2: जी
3: हमारे पास
2: हाँ,
3: आते हैं। और उसके बाद आए सरवत उस्मानी सर, सरवत उस्मानी सर जब आए तो वो भी बहुत अच्छे मतलब
2: बिल्कुल
3: मालिक हैं, मिजाह के मालिक हैं, समझ लिए,
2: जी,
3: बात कहते हैं अपनी और हंसी मजाक में ही पूरी बात कह देते हैं इंसान, बात की बात हो जाती है और काम का काम हो जाता है।
2: बिल्कुल
3: उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर तो वो टैलेंट है कि तुम कलाकार बनो, और नाटक में क्यों नहीं लेते तुम, ड्रामे में क्यों नहीं करते उसमें। खैर
2: अच्छा,
3: हाँ, मैंने कहा चलो करे लेते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। हमने जब उसके लिए गए ऑडिशन के लिए ड्रामे के, तो वहां पर एक अपर्णा अनाउंसर हैं और
1: अनाउंसर
3: एक
2: कृष्ण,
3: गोपाल कृष्ण जी हैं, वो दोनों वहां पर अंदर मौजूद थे, और पर्दे के
2: क्या
3: उस
2: बात,
3: पार यानी शीशे के उस पार पे मंदीप जी और सरवत उस्मानी
1: वो
3: सर,
1: पर्दा लगा हुआ
3: पर्दा
1: करता
3: लगा
1: था
3: होता था
1: शीशे
3: उसमें,
1: पर,
3: और
1: सिर्फ
3: उसके
1: आवाजें
3: पीछे
1: आया करती थी।
3: राजेश्वरी जी और जितने यहाँ के अफसरान थे वो सब मौजूद थे। अब हमारे हाथ में जो पर्चा दिया गया था उसके मुताबिक वहां से अंदर से कोई सवाल नहीं हो रहा था। एकदम सवाल दिया मुझे, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, कि ये बताओ अगर तुम्हारी शादी, अपनी शादी के लिए किस अंदाज में कहोगे, गुस्से के अंदाज में कहो, प्यार के अंदाज में भी कहो, बनाना उस टाइम पे बात को कि किस अंदाज में
1: बिल्कुल
3: कहेगा एकदम। खैर वो अंदर अंदर आता रहा और हम बोलते रहे, और जब बोलते रहे तो हमारे, हम देख रहे हैं कि ये लोग जो है ना पीछे से एकदम यूं उठा रहा है कि तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, इस तरह से ऐसा एरो दे रहे हैं कि यानी कि तुम पास हो गए उसमें जो तुमसे सवाल हो रहे हैं। अब उन्होंने ये सवाल कहा कि घर वाले तुम्हारी शादी को मना कर रहे हैं, तो तुम कैसे
2: अच्छा,
3: मनाओगे, अब प्यार से मनाओ तुम। हमने उस अंदाज में प्यार से मनाया कि हमारे भाई हैं, हमारी माँ हैं, वालिद का तो इंतकाल हो चुका था,
1: जी जितने बुजुर्ग
3: क्यों
1: हैं
3: हाँ
1: आपके,
3: सारे जो भी हमारे बड़े थे, हमने उस अंदाज में ही उनको बताया। हंसी की आवाज आ रही है, हमने कहा अब हम यहाँ से कट गए, अब नहीं कुछ नहीं होगा। खैर अब उन्होंने जो हमें पर्चा था, अब उसके डायलॉग कि शाहरुख खान का डायलॉग बोलो, अमिताभ के अंदाज में डायलॉग
1: अच्छा
3: बोलो, एकदम दिमाग में समा बना हुआ है कि इसका जो स्क्रिप्ट दी हुई है उसके मुताबिक ही तो सवालात के जवाब
1: बिल्कुल,
3: होंगे। अब अचानक
1: उसके
3: अचानक आ रहा है,
1: बरक्स पूछ
3: खैर
1: लिया जाए।
3: एक अच्छा बोले शाहरुख खान का डायलॉग बताओ जो बहुत फेमस है, अच्छा अमिताभ का बताओ, हमने डॉन का बताया और शाहरुख खान का बताया। खैर वो उसमें जो था वो टिक लगता गया, हमारे पीछे जो थी ये लोग खड़े थे,
1: जी
3: इसको ये टिक मारते गए यानी इसमें पास हो रहा हो तुम सारी चीजों
1: हाँ,
3: में। वो सब हो गया सारा सब, जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें रिजल्ट में भी हम पास हो गए उसमें। अब जब ये लोग मिले तो मैंने कहा और कोई सवाल नहीं थे आपके पास इसमें के लोग थे, और वाकई में आज भी मनदीप जी हमारी, मनदीप कौर साहिबा हैं, बड़ी बहन की जगह है हमें, और हमें इस
1: बिल्कुल
3: तरह से प्यार करती हैं जैसे छोटा हमारा भाई बिल्कुल, और हमें बताई हैं हर हर चीज़ बताना, हर हर नसीहत करना। आज भी हम सुरेंद्र राजेश्वरी जी को याद करते हैं, असीम सक्सेना जी हैं, और सुधांशु नंदन जी यहाँ से रिटायर्ड होकर चले गए हैं, वो भी बहुत अच्छी
1: बहुत
3: आदत के थे
1: बहुत
3: और था। और
1: जी,
3: बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने सबने साथ में बैठकर फीचर बनाए हैं, अच्छा लगता था उस टाइम पे। और आज भी हमारे साथ में जो हमारे अफसरान हैं, मान
1: बिल्कुल
3: लो
1: बिल्कुल
3: विक्रांत जी हैं और अवधेश जी हैं, या अपने
2: सक्सेना,
3: राजीव कुमार सक्सेना जी हैं, बेहिसाब अच्छी आदतों के मालिक हैं ये, और उनको हमेशा हम याद
1: बिल्कुल,
3: रखेंगे और याद रहेंगे हमारी यादों में। ये लोग अभी तो मौजूद हैं
1: और
3: यहाँ
1: फिर
3: पर
1: ये लोग वो हैं जो हमारी कदम कदम पर रहनुमाई किया
3: बिल्कुल
1: करते
3: बिल्कुल,
1: हैं।
3: और यही दुआ है अपने सामीन के लिए भी, और اپنے جو یہاں کے ہمارے افسران ہیں ان کے لیے بھی، جو اسٹاف ہے ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اپنے سامعین کو بھی صحت و عافیت دے.
2: ہمارا ریڈیو کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے،
3: بالکل
2: بالکل
3: بالکل،
2: اور ہمارے سامعین کے دلوں کا رشتہ، آوازوں کا رشتہ
3: بالکل.
1: سامعین، ابھی جیسا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں سے بات چیت کی ریڈیو کے حوالے سے، تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجیو سکسینہ صاحب، جنہوں نے بڑے بھائی کی طرح ہماری شفقت کی اور ہمارے لیے بہت کچھ

0: किया। आप यहाँ आए तो हम आपसे और आप हमसे अनजान थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता आपसे मुलाकात हुई और लगा कि जैसे कोई बड़ा भाई हमारे साथ मौजूद है। आपने कदम कदम पर हमारी सरपरस्ती की है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रेडियो को 90 साल हो चुके हैं और आपको यहाँ आकर कैसा लगा?
1: आकाशवाणी रामपुर का जो उर्दू कार्यक्रम है
0: जी सर,
1: वो अपने आप में पूरे उत्तरी भारत का एक पॉपुलर प्रोग्राम रहा है, और रामपुर ने ना सिर्फ अच्छे अच्छे शायरों को आप तक पहुंचाया, बल्कि संगीतकारों और कहानी और तमाम तरह की विधाओं को अपने श्रोताओं तक पहुंचाया
0: जी।
1: है। उर्दू की जानी मानी शख्सियत इस शहर में एक नहीं है जिसका नाम लूं।
0: जी सर,
1: तमाम शायर हैं, तमाम जो नामचीन नाम हुए हैं रोहिलखंड की धरती से। तो रामपुर आकाशवाणी के लिए काम करना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है।
0: जी सर,
1: और मैं समझता हूं कि रामपुर में काम करने वाले का जितना कद इस स्टेशन कर रहा है उसका भी उतना ही कद बढ़ता है।
0: जी बिल्कुल। और सर, मैं भी कहना चाहूँगी, शायद आप ना होते तो शायद पॉसिबल नहीं होता। आपने हम लोगों के लिए बहुत काम किए। आपने उन अदीबों को यहाँ मधु किया, यहाँ उन शायरों को मधु किया कि जिनका यहाँ आना कम हुआ करता था। वो सब लोग भी आपको कहीं ना कहीं याद करेंगे और हम भी आपकी इस कमी को बहुत मुश्किल से पूरा कर पाएंगे।
1: संस्कृति भारत की इस तरह की है कि यहाँ हर तरह के इंसान को एक जगह चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: आकाशवाणी एक मंच है, हर तरह के आदमी को लिखने पढ़ने और बोलने की स्वतंत्रता है,
0: जी
1: और वो
0: सर,
1: चाहता है कि हमें भी कोई सुने तो सुनने का एक मंच देता है आकाशवाणी।
0: जी
1: तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो घरों में बैठकर लिख रहे हैं
0: जी
1: या जिन्हें लिखने का शौक है, जिन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने का भी शौक है, तो क्या है कि हम चाहते थे कि जो नामचीन नाम है वो
0: जी
1: तो लोग सुने ही, उन्हें अपना आदर्श बनाए।
0: जी बिल्कुल
1: लेकिन जो लोग नया लिखना शुरू कर रहे हैं, जो नए
0: जी,
1: नए शायर हैं,
0: आपने उन्हें
1: पिछले
0: भी मौका
1: एक
0: दिया।
1: वर्ष में, पिछले 2 वर्षों में हमने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म ओपन कर दीजिए
0: जी बिल्कुल
1: सभी के लिए। अब जो लोग भी लिख रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि हमें
0: जी
1: भी ये मंच मिल रहा है। बहुत बार बात चली कि सीनियरिटी और जूनियरिटी, हमने कहा सीनियरिटी जूनियरिटी तो तब होगी
0: जी
1: जब किसी को हम सुन के जानेंगे। कोई
0: जी
1: कम उम्र
0: बिल्कुल
1: में बहुत कुछ कर जाता है उसे सीनियर कहेंगे
0: जी,
1: या जूनियर
0: यकीनन
1: कहेंगे। तो इसलिए ये जो हमने उर्दू कार्यक्रम का जो फोरम खोला, सभी को
0: जी
1: मौका
0: जी
1: मिला, और उम्मीद है रामपुर हमेशा लोगों के लिए तहे दिल से खुला रहेगा ये
0: जी
1: मंच।
0: बिल्कुल। आप भी हमें यूं ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।
1: जी बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया कि आप आकाशवाणी रामपुर के साथ जुड़े हैं,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: हमेशा की तरह आपने अपने जीवन में इससे जो मोहब्बत की है, एक एक रेडियो और एक आप। कहा
0: जी
1: जाता है कि गणित में 1 और 1 11 भी होते हैं और 1 1 2 भी होते हैं, लेकिन
0: जी
1: मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसमें 1 और 1 1 ही होता है।
0: जी सर,
1: तो इस एक हो जाने की परंपरा को निभाए रखिएगा, रेडियो को दूर मत
0: बिल्कुल।
1: कीजिएगा, और हमेशा अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना कर रखिएगा।
0: समय इस रेडियो स्टेशन में हमें वो अपनापन मिला किस चीज़ के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। समीन, आपका और हमारा जो रिश्ता है उसे शायद लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते, और वो आवाज़ों के ज़रिए दिल तक पहुंचता है, और ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। समीन, इस मुख्तसर वक्त में जितना भी हो सका हमने उन नामों के हवाले से बात की कि जिनकी शफ़क़त, मोहब्बत और अपनेपन की तारीख़ी दास्तान है। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को फ़रोग़ देने में हर मुमकिन कोशिश की। चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी ज़बान हो, आप तक एक खूबसूरत अंदाज में पहुंचाया। और सामईन, इसी के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है कि आपसे रुख्सत हुआ जाए इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया तो।
2: समय ने भी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 10 बजे हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रोताओं से प्राप्त ईमेल और पत्रों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: श्रोताओं, शुक्रिया भी, नमस्कार भी, स्वागत भी, अभिनंदन भी। आपके ढेर सारे खतों के साथ, आपके भेजे गए ईमेल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम आपकी ही इस महफिल में। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में सुनील के साथ।
1: असीम जी, आपको नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल इस हफ्ते हमारे पास हैं, हर हफ्ते की तरह। तो सुनील, बिना किसी देर के हम सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताकि समय का अभाव हमारे पास ना रहे।
1: बिल्कुल। गांधी समाधि रोड रामपुर के हमारे श्रोता हैं हाजी गफ्फार खान, राजिया खान और सिमरन खान। आप लिखते हैं, 24 मई आपका पत्र मिला कि महफिल सजाई काफ़ी दिनों बाद अवधेश कुमार गौतम जी और सुनील सक्सेना जी ने। बेहतरीन अंदाज में पत्र पढ़े अवधेश कुमार जी ने, शानदार अंदाज में पत्रों के जवाब दिए, अच्छा लगा। झलकी हंसी मजाक से भरपूर थी, जिंदगी के आईने में बेहद पसंद आ रही है। सुनील सक्सेना जी ने मनभावन गीत आपके नाम शानदार किए। बच्चों का कलिया प्रोग्राम सुनहरा दौर आसपास बेहद पसंद आया। 25 मई का इन्होंने जिक्र किया है, अंकुर राजपूत का आपके अनुरोध पर अच्छा लगा, आंचल भी पसंद आया। मैडम दीपिका का हेलो रामपुर बेहतरीन लगा। 26 मई सुनील सक्सेना जी का अनुरोध गीत अच्छा लगा। शाजिया परवीन का शब्दावलियों का मनभावन प्रोग्राम इन्हें बेहद पसंद आया। परिवार जगत, कानून और हम में अवधेश कुमार गौतम जी की अजय कुमार पाठक जी से बातचीत पसंद आई। कवि गोष्ठी में मैडम आकांक्षा सक्सेना का गीतांजलि पसंद आया। 27 मई स्वास्थ्य संदेश तरन्नुम का अमृत कलश उर्दू प्रोग्राम, रेनू तिवारी जी का आपके अनुरोध पर सुरेंद्र कौर का गीत आपके नाम कुमकुम, ये कार्यक्रम इनको अच्छे लगे। आकांक्षा सक्सेना ने दिल ढूंढता है शानदार पेश किया, लेकिन असीम सक्सेना जी को दिल ढूंढता ही रहा। मोहन सिंह रावत जी की चिट्ठी काबिले तारीफ थी। 28 मई को अखिलेश सक्सेना जी का आपके अनुरोध पर रेनू तिवारी का शब्दावलियों का मनभावन धरोहर के अंतर्गत पानी की तहरीक, अंकुर राजपूत जी का गीत गाता चल नाटक, ये इनको अच्छे लगे। 29 मई का जवेरिया ने आपके अनुरोध पर बेहतरीन पेश किया। सुरेंद्र कौर ने गीत आपके नाम अच्छा पेश किया। नाते कव्वाली का प्रोग्राम भी इनको अच्छा लगा है। अवधेश कुमार गौतम जी का स्पोर्ट्स राउंडअप बेहद पसंद आया। रेनू तिवारी जी ने हेलो रामपुर शानदार पेश किया। 30 मई का शैजी आगा और मनोज कुमार जी ने गीत आपके नाम हेलो फरमाई शानदार पेश किए। श्रोता मंच में असीम सक्सेना जी की राजवीर सिंह जी से बातचीत इनको बेहद पसंद आई है। इसी दिन का इनको गीत गाता चल भी अच्छा लगा है।
0: सुनील, हमारे बहुत सारे प्रस्तुतकर्ताओं के इन्होंने नाम लिखे हैं। आप सभी का नाम रिपीट करना संभव नहीं है क्योंकि सबकी तरफ से हम आपको एक साथ बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि उनकी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी। और सुनील, पिछली बार के पत्र मिला कार्यक्रम के लिए, मनभावन के लिए इन्होंने जो तारीफ लिखी है वो वास्तव में बढ़िया कार्यक्रम रहे, और अन्य चिट्ठियों में भी इन कार्यक्रमों का जिक्र है। कार्यक्रम जो श्रोताओं को पसंद आते हैं वो दिल से खुलकर तारीफ करते हैं, और हम इसके लिए खुले दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गफ्फार खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे हफ्ते कार्यक्रमों को सुनने के लिए, कार्यक्रमों को आपने पसंद किया। हमारा प्रयास यही रहता है कि ऐसे कार्यक्रम हों जो श्रोताओं के दिल को कहीं ना कहीं से छू कर गुजरे। खत भेजने के लिए एक बार फिर से आभार।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, साथ में हैं लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अवरार हुसैन अंसारी। आप लिखते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में जो कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, खासकर सुबह सवेरे कार्यक्रम में श्रोताओं की बात, उनके विचार बहुत अच्छे लग रहे हैं। 23 तारीख का आपका पत्र मिला कार्यक्रम अवधेश गौतम जी और सुनील सक्सेना जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। सभी खतों के जवाब प्यारपूर्वक दिए गए। इसी दिन झलकी भी सुनी दामाद यूनियन, झलकी बहुत अच्छी थी, मनोरंजन से भरपूर थी। 24 तारीख को गीत आपके नाम कार्यक्रम में 3 गीतों की फरमाइश पड़ी, उसके बाद ये कह दिया गया कि मेल नहीं मिल रहे और सिर्फ गाने ही सुनाए गए। आकाशवाणी रामपुर में फरमाइश या मेल की कमी तो हो ही नहीं सकती, ऐसे हमें यकीन है।

0: 27 तारीख का दिल ढूंढता है कार्यक्रम अगर किसी को अच्छा लगा हो तो अच्छाई की वजह ज़रूर लिखें, हमें ये कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा। इतना बोर कार्यक्रम पहले कभी नहीं सुना, एक ही श्रोता की तहरीर में लगभग 20 मिनट से अधिक का समय और कोई ख़ास बात नहीं। खैर आप मालिक हैं कार्यक्रम को जैसा आप परोसेंगे हमें तो सुनना ही है। नाते कव्वाली का समय अगर पहले की तरह 1:30 पर कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, या फिर 2:30 कर दें। झलकी है जैसे फटा नोट, रोज़ रेज़गारी, मेहमान भगाने की मशीन, ये झलकी भी समय निकाल कर सुनवा दें तो मेहरबानी होगी।
1: लाल मोहम्मद साहब, पहले तो शुक्रिया आपकी इस चिट्ठी के लिए, आपकी इन भावनाओं के लिए। जो झलकियों की फरमाइश आपने की है, जब भी संभव होगा यथाशीघ्र हम आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक परिवर्तन की बात है ना तो कव्वाली के कार्यक्रम में, फिलहाल शुक्रवार को ये कार्यक्रम दिन में 1:15 से 1:30 तक प्रसारित हो रहा है। कुछ कार्यक्रमों का समय बदला गया था, कुमकुम कार्यक्रम 1:30 पर लाया गया, इसकी वजह से इस कार्यक्रम में कटौती हुई, लेकिन इस कार्यक्रम में बढ़ोतरी भी हुई है। रात्रिकालीन सभा में जो चार बैत के साथ माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को कार्यक्रम होता था, उसमें नात कव्वाली का भी समावेश किया गया है। उसमें नात कव्वाली आपको आधा घंटे की सुनने को ज़रूर मिल रही होंगी। फिर भी आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमने नोट कर लिया है। भविष्य में जब भी परिवर्तन होंगे तो इस पर ज़रूर विचार किया जाएगा और श्रोताओं की जो भी राय बनती है उसी के हिसाब से कार्यक्रम तय होंगे। जहाँ तक मेल की बात है कि सिर्फ 3 ही गाने सुनवाए गए और 3 गानों पर ही मेल पढ़ा गया, तो हो सकता है उस दिन कोई दिक्कत रही हो। वैसे हमारे यहाँ ईमेल के कार्यक्रम में आपने खुद लिखा है कि कमी नहीं होती है, और वास्तव में कमी नहीं होती है। कुछ इत्तेफाक रहा होगा, कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा जो इस तरह की बात हुई होगी कार्यक्रम में। फिलहाल हम पता करने की कोशिश करेंगे, जो भी उस दिन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे उनसे बात की जाएगी और फिर आपकी बात का समुचित जवाब भी दिया जाएगा। पत्र मिला कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, सुनील तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और 90 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आकाशवाणी का ये सफ़र तय हुआ है, अनेक कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर ने प्रसारित किए हैं और अनेक कार्यक्रम प्रसारित करने की, आयोजित करने की योजना भी है। हमारे साथ बने रहिए, कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हम अन्य कार्यक्रम भी आपके लिए तैयार करते रहेंगे। और हाँ, शिकायत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल ढूंढता है कार्यक्रम में श्रोताओं की चिट्ठियाँ कम आई थी और यही वजह रही होगी कि कार्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया गया होगा, लेकिन अन्य श्रोताओं ने किस तरह की प्रतिक्रिया लिखी है इसके बारे में आपको कार्यक्रम में ही पता चलेगा।
0: इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल के हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत जी। आप लिखते हैं, 24 मई का आपका पत्र मिला, श्री सुनील सक्सेना और अवधेश जी के संयोजन में सुना, बहुत दिनों बाद आपको साथ सुनकर अच्छा लगा। सुनील जी की ये बात विशेष रूप से ध्यान खींचती है कि वो पत्र शब्दांशा पूरा पढ़ते हैं, मेरा पत्र विस्तृत होते हैं, शायद इसी वजह से कुछ उद्घोषक साथी पत्र को संपादित कर पढ़ते हैं तो लगता है कि पत्र को विस्तार से लिखने में बेकार की मेहनत की, वही बात एक दो लाइन में लिख दी जाती तो अच्छा होता। इसी कार्यक्रम से ज्ञात हुआ कि अवधेश जी की प्रस्तुति और सुनील सक्सेना जी के शोध, आलेख और वाचन में आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर 20 मई को रात्रि 10 बजे आकाशवाणी आवाज़ में बसी यादें शीर्षक से विशेष कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, जिसमें आकाशवाणी रामपुर से जुड़े रहे लोकप्रिय पूर्व प्रेजेंटर्स की आवाज़ उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के अंश सुनवाए गए थे। लेकिन अफसोस कि कार्यक्रम की जानकारी न होने के कारण मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नहीं सुन सका, जबकि आकाशवाणी के 90 साल के अंतर्गत प्रसारित हो रहे विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस तरह के कार्यक्रम तैयार कर सुनवाने का अनुरोध मैंने आपका पत्र मिला कार्यक्रम में किया था। कई बार कार्यक्रम विवरण सुन पाना संभव नहीं होता, अतः मेरा पुनः निवेदन है कि आप जब भी आपको कोई विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करें तो जानकारी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ज़रूर दे दिया करें। इसी दिन सुनील सक्सेना जी द्वारा प्रस्तुत मन भावन अच्छा लगा, उनकी प्रस्तुति से कोई भी श्रोता निराश नहीं होता, वे कार्यक्रम के अंतिम मिनट तक आने वाली सभी शब्दावलियों को स्थान देते हैं। गीत आपके नाम में उन्होंने 90 के दशक के कुछ उदास नगमे सुनवाए, प्रयोग के तौर पर अच्छा था लेकिन मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग के लिए शाम या रात का समय अधिक मुफीद है। 27 मई को आकांक्षा जी द्वारा दिल ढूंढता है पेशकश कार्यक्रम रहे, बहुत लाजवाब रहा, जब प्रेजेंटर श्रोताओं के एहसासात से जुड़कर पूरे मन में डूबकर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित ही कार्यक्रम यादगार बन जाता है। आकांक्षा जी ने कार्यक्रम में असीम जी की कमी महसूस नहीं होने दी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि श्रोताओं की पर्याप्त भागीदारी के अभाव में कार्यक्रम 15-20 मिनट पहले ही खत्म करना पड़ा। मेरा अंजुम भाई, गंगा सिंह रावत, देवेंद्र कन्हैया और सतेंद्र चंचोलिया, जयवंत्री केवट जी आदि की कलम के धनी श्रोताओं के इस कार्यक्रम में जुड़ने का अनुरोध है। आकांक्षा जी ने आकाशवाणी रामपुर से जुड़े अनुभवों पर आधारित मेरी 10 मिनट की तहरीर को कार्यक्रम में शब्दांश शामिल किया, इसके लिए उनका विशेष आभार। 28 मई को अखिलेश सक्सेना जी ने सुबह सवेरे पुण्यतिथि पर भारतीय सिनेमा के अग्रणी निर्माता निर्देशक महमूद खान साहब को याद किया, अच्छा लगा। 30 मई को उन्होंने गीत गाता चल में मौसम के मिजाज के अनुसार बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनवाए। गर्मी के मौसम के बाहर बारिश में ये गाने इनको अच्छे लगे। इसके बाद इन्होंने लिखा है, 90 के दशक के बेहद खड़गड़ीय गीत भी इन्होंने 29 तारीख को सुनवाए, ये भी पसंद आए हैं। 30 मई को सुबह सवेरे में शेजी आगा ने हिंदी पत्रकारिता दिवस और स्थापना दिवस के मौके पर गोवा के बारे में अच्छी जानकारी दी। उनका बार बार गोवा शहर को संबोधित करना अखरा, जबकि गोवा पूर्ण राज्य है। इस तरह की छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी दिन दोपहर की सभा में बहुत दिनों बाद मनोज कुमार जी को सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने मनभावन गीतमाला के अंतर्गत इंतज़ार शीर्षक से बेहद गीत खूबसूरत गीत सुनवाए। शाम की सभा में श्रोता मंच के अंतर्गत असीम जी की साथी चौधरी राजवीर सिंह से उनकी आकाशवाणी से जुड़ाव पर बातचीत अच्छी लगी। चौधरी साहब को हम सकारात्मक आलोचना के लिए जानते हैं, वे उन कमियों की ओर ध्यान दिलाते हैं जब अन्य श्रोता का ध्यान नहीं जाता। निश्चित ही इससे कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर बनाने उन्हें निखारने में मदद मिलती होगी। इस बार के लिए इतना ही, शेष फिर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मोहन सिंह रावत जी आपका। राजवीर सिंह जी हमारे जागरूक श्रोता हैं, आप ही की तरह वो भी सकारात्मक प्रतिक्रिया, निष्पक्ष प्रतिक्रिया हमें भेजते हैं। जो अच्छा लगता है वो भी बताते हैं, जहाँ कुछ कमी रह जाती है वो भी बताते हैं। कार्यक्रम आपको पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील, आपके लिए इन्होंने जो कुछ लिखा है उसका जवाब तो अगर आप मौजूद हैं कार्यक्रम में आज तो आप ही देंगे। कार्यक्रम और भी हमारे प्रेजेंटर्स ने प्रस्तुत किए, जिसमें मनभावन है या फिर सुबह सवेरे है, और कई कार्यक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है। उन सब के प्रस्तुतकर्ताओं की तरफ से, जिनके नाम अभी सुनील ने पढ़े हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। उनको भी अच्छा लगता है जब कोई उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की तारीफ करता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई उनकी कमी को बताता है, ताकि आगे आने वाले कार्यक्रमों में उस गलती को दोहराया ना जाए। जैसा कि आपने आज गोवा के बारे में लिखा है कि गोवा को शहर संबोधित करना अखरा, बिल्कुल सही बात है। गोवा एक राज्य है और राज्य को राज्य ही कहा जाना चाहिए था। इस कमी की तरफ हम ज़रूर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से आगे इस तरह की गलती नहीं होगी। और मौसम के मिजाज से गीत सुनाना आकाशवाणी रामपुर की खासियत है, और हमारे श्रोता भी उसी तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं। सुनील, जहाँ तक उदास नगमों की बात है, तो जब भी ये दिल उदास होता है,
0: वही मेरी भी कहना था आपने जवाब दे दिया,
1: जाने कौन आस पास होता है जी, जी। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, और इसी वजह से, खैर गीतों का तो कोई वक्त नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि रात में हम गीत प्रसारित नहीं कर पाते तो गीत दिन में भी सुनने पड़ते हैं, और कभी कभी मूड चेंज करना भी ज़रूरी हो जाता है। हर रोज़ एक तरह के गीत सुनने के बाद टेस्ट चेंज करना थोड़ा अच्छा लगता है। खैर यही शायद आपकी कोशिश रही होगी, और बाकी कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं, आप विस्तार से लिखते हैं। दिल ढूंढता है के बारे में लाल मोहम्मद साहब की चिट्ठी का जवाब आपने स्वयं दे ही दिया है, अब हमें कुछ कहने की गुंजाइश है नहीं। लेकिन कार्यक्रमों के बारे में जहाँ तक बात है, 90 साल के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं आकाशवाणी के, उन कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण अब हम धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत करने जा रहे हैं 1 तारीख से 8 तारीख के बीच। तो जो कार्यक्रम इस सिलसिले में, ऐसे कार्यक्रम हैं जो श्रोताओं से जुड़े हुए हैं, श्रोताओं को पसंद आए हैं, उनका पुनः प्रसारण धरोहर के अंतर्गत 1 से 8 जून तक किया जाना है। और ज़रूर धरोहर कार्यक्रम में हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं, कार्यक्रम विवरण में भी आपको बताया जाएगा, और संभव हुआ तो फेसबुक पर भी इसकी पोस्ट डाली जाएगी। तो ज़रूर इन कार्यक्रमों को सुनिएगा, क्योंकि पुनः प्रसारण है उन कार्यक्रमों का जो आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी रामपुर ने विशेष तौर पर तैयार किए हैं। कार्यक्रम सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील ने शब्दशः ये पत्र पढ़ा है और कोशिश भी यही रहती है, पिछले कुछ कार्यक्रमों में श्रोताओं की शिकायत थी कि पत्र पूरे नहीं पढ़े जाते, लेकिन ऐसा तभी होता है जब पत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, और हमारा प्रयास रहता है कि अगर खत भेजा है किसी श्रोता ने तो उसको निराशा ना हो, कम से कम उसकी खास बातें हम तक पहुँच जाएँ, लेकिन समय है तो पत्र पूरा पढ़ा जाएगा और पढ़ा जाता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह रावत जी, अपना ये स्नेह यूं ही बरकरार रखिएगा।
0: कभी कभी जब समय कम हो जाता है तब भी हमारे साथ थोड़ी सी ये विनम्रता रहती है। ये तहसील सुहार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी के हमारे श्रोता हैं त्रिलोकीनाथ राठौर, साथ में अजय, विजय, विकास, विनय राठौर, विकास राठौर, आकाश राठौर, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर। आप लिखते हैं 24 तारीख का आपका पत्र मिला, सुना सुनील जी ने पत्र पढ़े और अवधेश जी ने पत्रों के जवाब दिए। आपका पत्र मिला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे पूरे सप्ताह के प्रोग्राम की जानकारी मिल जाती है, कौन सा प्रोग्राम कब आया। हम श्रोता को आपका पत्र मिला प्रोग्राम सुनना चाहिए, फिर पत्र भी लिखना चाहिए। इसके बाद इन्होंने 25 तारीख का जिक्र किया है, गीत आपके नाम इरम फातिमा जी ने पेश किया, अच्छा लगा। 27 का दिल ढूंढता है कार्यक्रम आकांक्षा जी ने अपने अंदाज में बेहतरीन पेश किया, बहुत अच्छा लगा। दिल ढूंढता है के लिए श्रोताओं के पत्र की कुछ कम थे, आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि दिल ढूंढता प्रोग्राम की महफिल सजाएं रखें, प्रोग्राम को सूना ना होने दें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दिल ढूंढता है और असीम जी को इस प्रोग्राम में जैसे चार चांद ही लगा देते हैं, उनकी मधुर आवाज़ बहुत प्यारी है। 29 को गीत आपके नाम तरुण जी ने शानदार पेश किया, गीतों का चयन बहुत अच्छा था। 29 को हेलो रामपुर रेनू तिवारी जी ने पेश किया, हमारी कॉल भी लग गई, हेलो रामपुर में बहुत दिनों बाद हम भी शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। 30 का गीत आपके नाम हेलो फरमाइश मनोज कुमार जी ने लाजवाब पेश किए, प्रोग्राम अच्छे रहे। 30 तारीख के गीत गाता चल अखिलेश सक्सेना जी ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया, गीतों का चयन बहुत प्यारा लगा। इसी दिन काफ़ी दिनों बाद उनको प्रोग्राम सुने, अच्छे चल रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि आपका पत्र मिला प्रोग्राम का वक्त पुराना ही कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, इतनी जल्दी 10 बजे प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलता है। 2 सप्ताह पहले भी पत्र मिला प्रोग्राम में ये बात रखी थी हमने, पर प्रोग्राम नहीं सुन सके, हमारे पत्र का जवाब पता नहीं मिला या नहीं मिला, शामिल हुआ भी या नहीं हुआ। पत्र मेहनत से लिखा जाए और फिर सुनने को भी ना मिले तो साहब दुख तो होता ही है। आज बस इतना ही,
1: लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम आपका जैसे ही खत मिले तुरंत प्रोग्राम का समय बदल दें। एक नीतिगत निर्णय होता है, कोई भी कार्यक्रम हम अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करते, जो भी परिवर्तन हम करते हैं उसकी अनुमति के लिए, उसके अनुमोदन के लिए महानिदेशालय को पत्र भेजा जाता है, और फिर जब उनकी सहमति मिल जाती है, उनकी आज्ञा मिल जाती है, तभी कार्यक्रम में परिवर्तन होता है। और ऐसा आकाशवाणी केंद्रों पर साल में 2 बार होता है, 1-2 अक्टूबर में परिवर्तन होता है और फिर अप्रैल में होता है। तो अब जब परिवर्तन होगा तभी कार्यक्रम के समय पर परिवर्तन पर विचार करना संभव होगा, तब तक के लिए तो आपको 10 बजे ही कार्यक्रम सुनना पड़ेगा। आपने पहला कार्यक्रम सुना था, दूसरा आप अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं सुन पाए, तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए इतने भी कि अब तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पर मोबाइल के जरिए ऐप पर हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, और जब परिवर्तन होगा तो आपके सुझाव पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और जिनकी प्रस्तुति की आपने सराहना भेजी है उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल ढूंढता है कार्यक्रम के लिए हम बार बार अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि खत ज़रूर भेजिए, थोड़ा ही लिखकर भेजिए लेकिन भेजिए ज़रूर, लेकिन देखिए श्रोता कब तक हमारी बात मानने को तैयार होते हैं।
0: ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद के हमारे श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। आप लिखते हैं आकाशवाणी रामपुर केंद्र से सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। 30 मई का कार्यक्रम गीत आपके नाम और हेलो फरमाइश सुना, जिसे पेश किया था मनोज कुमार ने, प्रोग्राम सुन करके अच्छा लगा, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बधाई। 29 मई का सुबह सवेरे सुना, इनको पसंद आया। 28 मई का आपके अनुरोध पर सुना, ये भी अच्छा लगा। 27 का गीत गाता चल सुना, ये भी इनको पसंद आया। और भी प्रोग्राम सुने जैसे हेलो रामपुर, परिवार जगत, गीतांजलि, कृषि जगत, उर्दू प्रोग्राम, श्रोता मंच, मन भावन, आपका पत्र मिला आदि, सारी ही हमें प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, सभी का प्रस्तुतिकरण हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
1: सुनील, हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं तौफीक अहमद, अतीक अहमद और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी साहब, हमारे कार्यक्रम इनको पसंद भी आते हैं, इसके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं और एक अनुरोध भी करते हैं इनसे कि आगे भी इसी तरह से हमारे कार्यक्रम ये सुनते रहेंगे, और सुनने के बाद संक्षेप में ही सही अपना खत ज़रूर हमें भेजेंगे। और अब अगली चिट्ठी बड़ी
0: जी
1: मन से लिखी हुई लग रही है, किसकी है?
0: ये हमारे श्रोता हैं सिंधौली मीरगंज बरेली के जीशान वारसी, इमरान शेख और करूला मुरादाबाद के हैं यूब खान, इरम गुड़िया, शेब खान और नावेद खान। आप लिखते हैं, अल्फाज जब दिल से निकलते हैं

0: अक्सर छोड़ जाते हैं, रेडियो की मधुर तरंगों पर सफ़र छोड़ जाते हैं, कुछ गीत मुस्कान बनकर होठों पर खिल जाते हैं, कुछ यादों के दीप बनकर मन में जल जाते हैं। 24 मई से 30 मई तक प्रसारित आकाशवाणी रामपुर के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लिया। 24 मई का आपका पत्र मिला, पेश किया पत्र पढ़े उद्घोषक सुनील सक्सेना जी ने और सभी के सुझावों शिकायतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। आदरणीय श्री अवधेश गौतम जी ने इसके बाद छूट गया है, मेरे ख्याल से यही होगा सर कि अवधेश गौतम जी ने पत्रों के जवाब लाजवाब अंदाज में दिए। मैं पूरी कर देता हूँ। 24 मई का गीत गाता चल उद्घोषिका दीपिका जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मधुर गीतों में मन मोह लिया। 25 मई का गीत आपके नाम इरम फातिमा ने कार्यक्रम को शानदार अंदाज में पेश किया, उन्होंने भी श्रोताओं का दिल जीत लिया। 26 मई के सुबह सवेरे में मौसम के मिजाज के अनुरूप सुनवाए गए गीत बेहद सुकूनदायक रहे, कार्यक्रम प्रस्तुत किया था सुनील सक्सेना जी ने। इसी दिन गीत गाता चल में गीतांजलि आकांक्षा जी ने प्रस्तुत गीतों के कार्यक्रम और भी यादगार बना दिया। 27 मई को रेणु तिवारी द्वारा प्रस्तुत आपके अनुरोध पर कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रहा। वहीं मनभावन कार्यक्रम में सुरेंद्र कौर जी ने महान संगीतकार एआर रहमान के जीवन और संगीत यात्रा पर अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी, सुनकर मन प्रसन्न हो गया। 30 मई को मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत गीत आपके नाम, अखिलेश सक्सेना जी द्वारा प्रस्तुत गीत गाता चल, दोनों कार्यक्रम सुनवाए गए। गीतों का चयन अत्यंत शानदार रहा, सभी प्रस्तुतकर्ताओं की मधुर वाणी, सुंदर प्रस्तुति और मधुर बेहतरीन गीतों के लिए पूरे सप्ताह को संगीत से सराबोर कर दिया। आकाशवाणी रामपुर की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि आगे भी ऐसे ही मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और यादगार कार्यक्रम सुनने को मिलते रहेंगे।
1: सबसे अच्छी बात इनकी चिट्ठी में है कि इन्होंने आकाशवाणी रामपुर को एक टीम कहा है, और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं कि आकाशवाणी की कार्य पद्धति पूरी तरह से टीम वर्क पर आधारित है। कार्यक्रमों को दिशा देना, तैयार करना, निर्देशित करना, फिर प्रेजेंट करना और फिर श्रोताओं तक पहुँचाना, एक टीम इसके पीछे इन्वॉल्व रहती है और उस टीम में हमारे सभी साथी शामिल रहते हैं, चाहे वो कार्यक्रम के हों, चाहे वो हमारे तकनीकी अनुभाग के साथी हों, चाहे वो हमारे प्रशासनिक अनुभाग के साथी हों। ये तीनों विंग्स जब मिलकर एक समन्वय के साथ श्रोताओं तक पहुंचती हैं, तब कार्यक्रम लोकप्रियता के शिखर पर पहुँचा है या फिर कहाँ क्या कमी रह गई है, ये सफर तय होता है। पूरी टीम की तरफ से हमारे तमाम श्रोताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि उन्हीं के लिए हमने ये कार्यक्रम तैयार किया और उन तक उसी रूप में पहुंचे जिस मन के साथ हमने उन तक पहुंचाने चाहे। तो सभी प्रस्तुतकर्ताओं की ओर से, जिन जिन के नाम आपने शामिल किए हैं अपनी इस चिट्ठी में, उनकी तरफ से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हीं की तरफ से एक वादा आपसे ये भी करते हैं कि आगे भी इसी तरह के और बेहतरीन कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे। क्यों सुनील, कुछ और कहना है?
0: बिल्कुल, आपने तो सभी कुछ कह दिया। सही।
1: और अब अगली चिट्ठी आई है हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े, 24 तारीख का आपका पत्र मिला, कार्यक्रम मनोज कुमार जी और सुनील सक्सेना जी की मिठास भरी आवाज़ में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा संशोधन कर दें, यहाँ मनोज कुमार जी के स्थान पर थे अवधेश कुमार गौतम जी। दोनों को दिल से बधाई। इसी दिन गीत गाता चल में सुनील सक्सेना जी को सुना बहुत अच्छा लगा। 26 तारीख को आपके अनुरोध पर सुनील सक्सेना जी को सुना बहुत पसंद आया। 25 तारीख को आपके अनुरोध पर अंकुर राजपूत जी को सुना लाजवाब लगा। 27 तारीख को आपके अनुरोध पर रेणु तिवारी जी को सुना बहुत ही अच्छा लगा। 30 तारीख को गीत आपके नाम में आदरणीय मनोज कुमार जी को सुना दिल खुश हो गया। 30 तारीख को गीत गाता चल में अखिलेश सक्सेना जी को सुना बहुत पसंद आया। इस सप्ताह में लगभग सभी कार्यक्रम सुने, सभी अच्छे लगे और सभी प्रेजेंटर्स की मेहनत को दिल से सलाम।
1: हम सलाम करते हैं आपकी समातों को, क्योंकि जिस मन के साथ आप हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को सुनते हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हर केंद्र श्रोता के पास उपलब्ध है और हर केंद्र के वो अपने कार्यक्रमों को सुनते हैं। उनके बीच में से आप आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों के लिए इतना वक्त निकालते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम, तो सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम कार्यक्रम आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसका विशेष प्रयास भी हमारी ओर से जारी रहेगा कि अच्छे कार्यक्रम हमारे श्रोताओं तक पहुँचें और उनको किसी भी तरह की कोई निराशा ना हो हमारे कार्यक्रमों से। जो अपेक्षाएं हैं उनकी, हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरें, पूरा उतरें और अच्छे अच्छे कार्यक्रम अपने श्रोताओं तक हम पहुँचाते रहें। जिस मन के साथ श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं, वैसे ही कार्यक्रम उन तक पहुँचें। खत भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी दूर से आपका ये ख़त आया है, और सभी प्रेजेंटर्स की तरफ से भी आपको दिल से हम सलाम कहते हैं।
0: अनूपपुर मध्य प्रदेश के हमारी श्रोता हैं जयवंत्री केवट। आप लिखते हैं, कार्यक्रम आपका पत्र मिला में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछले अंक में 24 मई को खतों के जवाब के साथ श्री अवधेश कुमार गौतम जी श्रोताओं की बातों को इतनी सादगी से उन्होंने उत्तर दिए कि मन बहुत खुश हो गया। सुनील सक्सेना जी ने बहुत सारे खतों को शामिल किया। इसी दिन झलकी सुनी दामाद यूनियन, इसे सुनकर दिल खुशनुमा हो गया। वैसे रामपुर से हमने बहुत सी झलकी सुनी हैं और सुनते भी आ रहे हैं। गीत आपके नाम कार्यक्रम की आवाज़, वही सुनील सर ने अपनी चंद लाइनों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सुनहरा दौर 1950 के गीतों को चुनकर लाए जो बहुत ही कर्ण प्रिय रहा, जिसमें शमशाद बेगम, गीता दत्त के गाए गीत भी शामिल थे। 30 मई की दोपहर की सभा का आनंद मनोज कुमार जी के साथ गीत आपके नाम और सुनहरा दौर के भी कार्यक्रम आपकी बेहद प्रस्तुति सराहनीय रही। कार्यक्रम आज शाम भी सुना, जिसमें मतलबी दुनिया में आजकल के स्वार्थी लोगों के बारे में बहुत सी सारगर्भित बातें दिल को छू गई। आप सभी की प्रस्तुति के लिए बधाई, शुभकामनाएं।
1: जयमंत्री केवट जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और वास्तव में मतलबी दुनिया में स्वार्थी लोगों के बारे में बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में हुई थी, और सच भी है कि क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आया, असली सूरज छिपी रहे। आजकल ऐसे ही लोगों की भरमार है, दुनिया में पहचानना मुश्किल है कि कौन अपना है, कौन हमारे साथ नहीं है, हमारे ही खिलाफ है। तो कोशिश थी कि इस बिंदु की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान गीतों के माध्यम से आकर्षित किया जाए। कार्यक्रमों का उद्देश्य भी यही रहता है कि कोई भी गीत हो, कोई भी कार्यक्रम हो, एक सकारात्मक संदेश के साथ हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और झलकी का भी यही उद्देश्य रहता है कि हंसी हंसी में, मनोरंजन के साथ कोई ऐसी बात हो जो जिंदगी में काम आने वाली हो, जिससे हम कुछ आगे बेहतर करने की सीख ले सकें। तो यही प्रयास रहता है आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का, और गीत हम वही सुनवाते हैं जो हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, कोशिश तो यही रहती है। खैर, आपने हमें चिट्ठी भेजी, कार्यक्रमों को पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली चिट्ठी
0: मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोता हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान, और साथ में ही इनके नगमा नाज मंसूरी। आप लिखते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेशकर्ताओं को हमारा प्यार भरा सलाम। आकाशवाणी रामपुर के हम नियमित श्रोता हैं, सभी कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस सप्ताह काफ़ी कार्यक्रम हमने सुने, दोस्तों ने जो हमारे पेश किए अच्छे लगे। पिछले सप्ताह रविवार सुनील सक्सेना जी ने आपका पत्र मिला में पत्र बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े, और असीम भाई ने जवाब भी अच्छे तरीके से दिए। कार्यक्रम हमें लाजवाब लगा। उसी दिन का मन भावन कार्यक्रम सुना, वो भी इनको पसंद आया। अनुरोध है, फरमाइशी मैसेज के जो कार्यक्रम हैं, मैसेज भेजने के समय रखें, उस समय के सिवा आए हुए मैसेज भेज सकने, और आपको भी परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसा होता है सभी श्रोता मैसेज करते हैं, मैसेज तो सब ओके शामिल होते हैं, सभी लोगों के शामिल होते हैं, लेकिन चिंता होती है कि पता नहीं हमारा SMS शामिल होगा भी या नहीं। इसलिए होता बार बार यही है कि मैसेज करते हैं, जिसकी वजह से 15 मैसेज एक छोटा कर देता है। मैसेज भेजने के समय सीमा अगर होगी तो उसी समय पर श्रोता मैसेज कर देंगे और आपको भी परेशानी नहीं होगी। कार्यक्रम भी अच्छा है, हम तक पहुंचेगा। बस आज तक कार्यक्रम में इतना ही अल्फाज।
1: रफत भाई, जो भी कार्यक्रम शुरू किया जाता है एक उद्देश्य के साथ शुरू किया जाता है। हमारे केंद्र से ईमेल पर आधारित कोई कार्यक्रम नहीं था, तो इसलिए ईमेल पर आधारित ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शुरू हुआ। कोशिश ये रही कि हमारे श्रोता पहले से ही मैसेज भेजते, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आप अगर हमारे पत्र मिला कार्यक्रम की बात करें, तो हम कितनी बार आग्रह कर चुके हैं श्रोताओं से कि आप अगर पहले से ही चिट्ठी हमें भेज देंगे तो पढ़ने में भी सुविधा होगी, और आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उनके समाधान भी हम पहले से ही ढूंढकर आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन श्रोता, आखिरी टाइम तक, जब तक कार्यक्रम का समय समाप्त नहीं हो जा रहा होता है, तब तक वो अपने पत्र भेजते हैं, और यही स्थिति ईमेल वाले कार्यक्रम के लिए भी है। लगातार ईमेल उनके हमें मिलते रहते हैं, जिससे श्रोताओं की तरफ से भी है कि उनको ये लगता है कि उनका ईमेल शामिल होगा या नहीं, वो बराबर लगातार सिलसिला जारी रखते हैं। खैर आपने बहुत अच्छे बिंदु की तरफ ध्यान दिलाया है कि अगर हम एक समय सीमा निर्धारित कर दें कि इतने बजे

0: बचें और ना भेजें। अगर आप इस तरह से लगातार हमें ईमेल भेजते रहेंगे तो हम, अब तो इतनी परख हो ही गई है कि कौन श्रोता का कहाँ से ईमेल है, हम बाकी के जो भी नाम आप लिखकर भेजेंगे उसको ना पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, आप हमारे लिए भी थोड़ी सी सुविधा सोचिए, क्योंकि फ्लो में तो सारे नाम पढ़ ही दिए जाते हैं। दिक्कत तब होती है जब बाद में अफसोस होता है कि ये नाम तो
1: छूट गया
0: छूट गया या फिर ये नाम तो गलत है।
1: जी।
0: तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे श्रोताओं ने अपने और साथ और नाम भी जोड़ लिए हैं और वो भी
1: गलत तरीके
0: गलत नाम उनको बिगाड़ कर। तो ऐसा ना करें, इससे कार्यक्रम की गुणवत्ता प्रभावित होती है, केंद्र की छवि पर भी असर पड़ता है और फिर कार्यक्रम पर भी इसका प्रभाव पड़ता ही है। तो ऐसा कुछ मत कीजिए, ईमेल भेजिए, ईमेल में नाम संक्षेप में भेजिए, सिर्फ अपने और अपने परिजनों के नाम भेजिए।
1: एक इसमें बात और ऐड कर दी जाए, वो श्रोता जिनका ईमेल शामिल हो चुका है वो
0: कम
1: दोबारा
0: से
1: से
0: कम वो
1: आए
0: दोबारा ना
1: जी
0: करें, कम से कम वो दोबारा ना करें। और रफत साहब, अगर आपका ईमेल एक बार शामिल हो गया है तो प्लीज़ दोबारा ना करें, क्योंकि अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि आपका ईमेल पहुंच गया। इसी तरह की बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बात हम अपने
1: सारे
0: सभी
1: श्रोताओं के
0: श्रोताओं
1: लिए
0: के लिए कह रहे हैं। आपका तो एक एग्जाम्पल हो
1: जी।
0: गया।
1: शाहबाजपुर कला कस्बा पाकवाड़ा ज़िला मुरादाबाद के हमारे श्रोता हैं मज़ाहिर हुसैन अंसारी बेगम, रईसा नाज बेटा, मुजक्किर बाबू, मज़र आसिम बेटी, सुमैया महक। आप लिखते हैं, पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा आदाब। आकाशवाणी रामपुर भारत का सबसे लोकप्रिय रेडियो स्टेशन है। हम आपके यहाँ के सारे ही प्रोग्राम बड़ी पाबंदी और लगन से सुनते हैं। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आप झलकी सुनवा दीजिए गोरख धंधा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप हमारे ईमेल को इस प्रोग्राम के शामिल करके रौनक बढ़ाइए।
0: रौनक बढ़ गई आपके ईमेल की और कार्यक्रम की भी रौनक आपके इस ईमेल से बढ़ी है, क्योंकि श्रोता जो भी लिखते हैं वो ख़ास होता है हमारे लिए। आपने कार्यक्रमों को सुना है, पसंद किया है और झलकी की फरमाइश की है, हमने नोट कर लिया झलकी, और आने वाले समय में ज़रूर जब भी संभव होगा आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। ख़त भेजने के लिए मज़ाहिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मोहल्ला हलवाईवान शेरकोट ज़िला बिजनौर के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, साथ में हैं मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर। आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप असीम जी, विक्रांत जी और अवधेश जी? आपका पत्र मिला पेश करने वालों को भी इन्होंने सलाम लिखा है। हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं। हमें 30 मई का आपके अनुरोध पर जो शेजी आगा जी ने पेश किया था बहुत पसंद आया। गीत गाता चल भी अखिलेश सक्सेना जी ने जो पेश किया वो भी इनको बेहद पसंद आया है। इसके अलावा 29 मई का आपके अनुरोध पर जवेरिया जी ने जो पेश किया वो भी अच्छा लगा। गीत गाता चल जो रेणु तिवारी जी ने पेश किया अच्छा लगा। 28 मई का आपके अनुरोध पर जो अखिलेश सक्सेना जी ने पेश किया बहुत पसंद आया। 27 मई का आपके अनुरोध पर जो रेणु तिवारी जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। गीत आपके नाम सुरेंद्र कौर जी ने पेश किया बहुत पसंद आया। 26 मई का आपके अनुरोध पर सुनील सक्सेना जी ने पेश किया बेहद पसंद आया। गीत गाता चल आकांक्षा जी ने पसंद पेश किया वो इनको पसंद आया। इसके अलावा हम मन भावन, दिल ढूंढता है, हेलो रामपुर, हेलो फरमाइश, आपका पत्र मिला आदि प्रोग्राम भी अच्छे चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वकार साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आकाशवाणी रामपुर से जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, और उन सब की तरफ से आपका विशेष आभार जिनकी प्रस्तुति की सराहना आपने अपने इस ईमेल में हमें लिखकर भेजी है। कार्यक्रम आप ही के लिए हैं, कार्यक्रम आपको ही ध्यान में रखकर तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सिलसिला आकाशवाणी रामपुर से हमेशा से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आप हमारे कार्यक्रम ज़रूर सुनते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा कि कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगे हैं, और जो कार्यक्रम पसंद ना आ रहे हों, कहीं कोई कमी लग रही हो, प्रस्तुतिकरण में किसी तरह की कोई चूक हुई हो, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि आप ही हैं वो आईना जो असली शक्ल हमें दिखाते हैं।
1: गांव खावरी से हमारे श्रोता हैं चौधरी राजवीर सिंह। आप लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने श्रोता मंच कार्यक्रम को सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना और पसंद भी किया। कल अखिलेश सक्सेना द्वारा प्रस्तुत गीत गाता चल प्रोग्राम बाकी लाजवाब रहा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था, उनके गानों का चुनाव बड़ा लाजवाब था। दूसरी बात कि

0: मीडियम वेव आकाशवाणी रामपुर जो है वो पूरी तरीके से ये लिख रहे हैं कि ठप चल रहा है, ऐसा क्यों है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि कतई भी आपके प्रोग्राम मीडियम वेव पर सुनने को हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, कृपया कष्ट करके बताने का कष्ट करें FM न्यू ट्रांसमीटर कब चालू हो रहा है।
1: आपके प्रश्न को हम अपने तकनीकी अनुभाग तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर आपका ये ईमेल जो 10:25 पर हमें मिला है, अगर 9:25 पर मिला होता तो हम पहले से ही पता करके रखते, अब ये मजबूरी है। हम अगले कार्यक्रम में आपकी बात तकनीकी अनुभाग से पता करके उनसे जानकारी लेकर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि प्रसारण बेहतर ढंग से पहुंचाना हमारा मकसद है और हम इस काम के लिए जुटे हुए भी हैं। पूरा तकनीकी अनुभाग इसके लिए हर संभव सेवाएं देने को तैयार है। कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिस पर अपना बस नहीं रहता, क्योंकि मीडियम वेव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पुरानी हो चुकी है। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो स्पेयर पार्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इस वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है समस्या को दूर होने में। लेकिन FM पर और ऐप पर प्रसारण निर्बाध रूप से हम जारी रख पाएँ, हर संभव प्रयास यही रहता है। पता करेंगे फिर बताएंगे। खत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक बात इन्होंने और पूछी है कि FM का जो न्यू ट्रांसमीटर है वो कब तक चालू होगा।
1: प्रयास जारी है
0: जी,
1: और जैसे ही निर्देश मिलेंगे, क्योंकि कोई भी केंद्र बिना निर्देश के किसी भी कार्यक्रम की ना तो शुरुआत कर सकता है ना उसका प्रसारण कर सकता है, तो हम जैसे ही हमें आदेश होगा ये FM ट्रांसमीटर शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगने की संभावना ज़्यादा है।
0: एकता क्लब सिंधौली मीरगंज जिला बरेली के हमारे श्रोता हैं इमरान शेख, जीशान वारसी, अयूब खान और
1: एक चिट्ठी तो शामिल हो चुकी थी ना सुनील
0: जी जी,
1: ये दूसरा
0: पत्र है, लेकिन इसमें इमरान शेख साहब का नाम ऊपर है।
1: अच्छा
0: जी, और ये चिट्ठी जो है इन्होंने विस्तार से लिख करके पूरी भेजी है,
1: मतलब जिसका नाम ऊपर होगा उसकी तरफ से ये चिट्ठी है। ये समझा जाए है?
0: अकाउंट होल्डर में भी यही होता है
1: जो फर्स्ट नेम है वो जी। चलिए,
0: ये लिखा है इन्होंने, बशीर बद्र साहब की कुछ लाइनें लिखी हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, हर धड़कन पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में।
1: बिल्कुल सही बात है, बशीर साहब ने अभी चंद रोज पहले ही इस दुनियाए फानी को अलविदा कहा है। हम उनकी याद अपने मन के भीतर समेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे शेर उन्होंने दिए हैं कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आपने बशीर साहब को याद किया, हम आपके इस जज्बे की सराहना करते हैं और हम भी शामिल होते हैं आपके साथ उनको खिराज अकीदत पेश करने में।
0: आगे लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वाले सभी अधिकारियों उद्घोषकों को हमारा प्यार भरा सलाम, हम सभी कार्यक्रम बड़े ध्यान और दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। आकाशवाणी रामपुर के सभी अधिकारी उद्घोषक और उद्घोषिकाएं अपने शानदार अंदाज, मधुर आवाज़ और बेहतरीन प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बना देते हैं। आप सभी की मेहनत और समर्पण ही आकाशवाणी को श्रोताओं को दिल से जोड़े हुए। आपका पत्र मिला कार्यक्रम श्रोताओं के बीच विशेष पहचान बना चुका है। हमें इस कार्यक्रम से कोई भी शिकायत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा सुझाव देना चाहते हैं कि आदरणीय असीम सक्सेना सर को भी इस कार्यक्रम में समय समय पर शामिल किया जाए। उनकी प्रस्तुति और आवाज़ कार्यक्रम की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हालांकि आदरणीय अवधेश गौतम जी श्रोताओं के पत्रों के जवाब बेहद शानदार और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, उनकी प्रस्तुति की जितनी सराहना की जाए उतनी भी कम है। फिर भी यदि असीम सक्सेना सर को भी इस कार्यक्रम में स्थान मिले तो कार्यक्रम को और भी यादगार बनाया जाएगा। युवाणी कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसमें युवाओं के रोजगार, शिक्षा, कैरियर, समाज और देश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नई दिशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। साथ ही किसान भाइयों का कार्यक्रम भी बेहद सराहनीय लगता है, जिसमें वैज्ञानिक विधियों से खेती करने की जानकारी दी जाती है। निश्चित रूप से हजारों नहीं बल्कि लाखों किसान आकाशवाणी रामपुर सुनकर के लाभान्वित होते होंगे। हाल ही में आदरणीय आकांक्षा शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत दिल ढूंढता है कार्यक्रम बेहद शानदार और दिल को छू जाने वाला रहा। ये शर्मा की जगह सक्सेना होगा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पूरे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। उनकी मधुर आवाज़, स्पष्ट उच्चारण और शब्दों को पेश करने का तरीका श्रोताओं को दिलों को छू गया। आकांक्षा जी की प्रस्तुति में एक अपना ही अपनापन और मिठास महसूस होता है, जो श्रोताओं के कार्यक्रम को अंत तक जोड़े रखता है। उनके द्वारा चुने गए गीत और प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत ही काबिल तारीफ है। उनकी आवाज़ की खनक और शानदार प्रस्तुति सचमुच श्रोताओं का दिल जीत लिया। आगे लिखा है, 27 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आधारित चर्चा सुनी जो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी। ऐसे कार्यक्रम युवाओं के इतिहास और देश के महान व्यक्तित्व को जोड़ने का कार्य करते हैं। 26 तारीख का युवा सेगमेंट भारत के गलियारे से वह शानदार लगा। 20 तारीख को प्रसारित आवाज़ों में बसी यादें कार्यक्रम आदरणीय सुनील सक्सेना जी एवं अवधेश गौतम जी के निर्देशन में सुना, जो बेहद शानदार और दिल को छू जाने वाली प्रस्तुति रही। रोजगार पर संदेश, जो युवा शिक्षित जागरूक और आत्मनिर्भर बनता है तभी देश की तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। एक सुझाव और ये देना चाहते हैं कि आकाशवाणी रामपुर अपने सामान्य कार्यक्रमों की सूची भी फेसबुक पर अगर साझा करे तो अच्छा रहेगा, जैसे युवाणी कार्यक्रम की जानकारी साझा की जाती है।
1: आपने लिखा है कि इससे श्रोताओं को कार्यक्रम सुनने में सुविधा होगी और अधिक लोग आकाशवाणी से जुड़ पाएंगे। ज़रूर ऐसा प्रयास समय समय पर किया भी जाता है, नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से फेसबुक पेज पर हम अपनी वो जानकारी साझा कर पाएँ जो हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हैं। युवाणी में ये सिलसिला सुचारू रूप से जारी है और आगे भी ये सिलसिला हम और कार्यक्रमों के लिए शुरू करेंगे। आपका सुझाव अच्छा है और इस पर अमल करना भी इतना मुश्किल नहीं है, बस एक शुरुआत की देर है जी। कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, आकांक्षा की आपने बहुत तारीफ लिखी है, आकांक्षा ज़रूर खुश हो रही होंगी। और अब हम माइक्रोफोन के माध्यम से उनसे कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ की मिठास हमारे श्रोताओं को महसूस हुई है और उस मिठास को अब सभी महसूस करना चाहेंगे। कार्यक्रम आपको पसंद आए इमरान शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही जारी रहेगी, आगे भी अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुँचें। जिस उद्देश्य के साथ आकाशवाणी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, 90 साल का सफ़र तय हुआ है, ये सफ़र आगे भी उसी सफलता के साथ बल्कि और ऊंचाइयों के साथ जारी रहेगा अगर आप सभी श्रोताओं का इसी तरह से हमें सहयोग मिलता रहा, साथ मिलता रहा, क्योंकि बिना आपके अधूरे हैं हम और आप ही के लिए सारे कार्यक्रम हैं। आपका साथ अगर रहेगा, आपका विश्वास अगर रहेगा, तो हमारा प्रयास भी निश्चित रूप से सफल होगा। और अब सुनील, आज एक महत्वपूर्ण प्रसारण भी होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी, इसलिए कार्यक्रम को समय से समाप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलने के वादे के साथ असीम को अब आपका पत्र मिला कार्यक्रम से आज्ञा दीजिए, क्योंकि सुनील को अभी आपके साथ लंबे समय तक रहना है। नमस्कार।

आपका पत्र मिला। अभी श्रोता सुन रहे थे अपना ये साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं झलकी कल और आज।

0: रीना, ओ रीना, पता नहीं कहाँ चली गई, लगी होगी पाउडर लिपस्टिक में। हाय, मेरी तो काम करते करते कमर टूटी जा रही है, और ये है कि फैशन से ही फुर्सत नहीं। अरे ओ रीना, कहाँ मर गई थी?
1: आती हूँ माँ।
2: क्या बात है?
0: हाय, तू अभी तक ऐसे ही बैठी है? अरे भूल गई क्या, आज नीना अपने देवर को लेकर आ रही है, एकदम हीरा लड़का है, वो तुझे पसंद कर ले तो समझ ले तेरे भाग जग गए। जा जल्दी से तैयार हो जा बेटा, और सुन, एक लंबी चोटी कर लेना ताकि तेरे बालों की लंबाई नजर आए, और हाँ, ये जोकरों जैसे बेल बॉट कपड़ों को बदल कर नीना की गुलाबी साड़ी पहन ले, और सुन, माथे पे छोटी सी एक बिंदी जरूर लगा लेना, तेरा रंग गुलाबी साड़ी में खूब निखरेगा। जाचा बेटा जल्दी कर, पता नहीं कब तक वे लोग आ जाएं।
2: तैयार तो हूँ माँ, और क्या तैयार होना है, ये कोई कपड़े बुरे हैं? मेरी सहेली रीता है ना माँ,

0: वो बंबई से लेटेस्ट फैशन की जो बिल बॉटम सिलवा के लाई थी ना, उसी को देख के तो मैंने सिलवाए हैं। अरे माँ, दीदी के देवर तो क्या, हर मॉडर्न लड़के को बस यही पोशाक पसंद है।
1: ऐ चुप रह, इन कपड़ों में अगर अरविंद ने तुझे देख लिया तो हम सबकी नाक कट जाएगी। ये मर्दाने कपड़े क्या शरीफ घर की लड़कियों की पोशाक है? ए, मुझे तो खुद तेरी तरफ आंख उठाकर देखने में शर्म लगे है। बेशरम कहीं की, जा बदल डाल इन्हें, वरना जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी बैठी रहेगी।
0: जैसे अरविंद ही तो एक लड़का रह गया है इस दुनिया में।
1: ए, तो तू क्या सोचती है कि तेरे दोस्तों में से कोई तुझे ब्याहने के लिए तैयार हो जाएगा? अरे बेटी, अभी भी होश में आ जा, दोस्त चाहे लाख हो पर पति एक ही होवे है, वो ही जीवन भर साथ निभाए है।
0: अरे माँ, तुम भी किस 18वीं सदी की बातें करती हो। अरे आजकल की औरतें तो चांद पर जा रही हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक ला रही हैं। कौन सा ऐसा काम है जो औरतों से ना हो? वो जमाना और था जब नारी पुरुष की छत्र छाया में रहती थी। देखो माँ, अगर दीदी के देवर मेरी जांच परख करेंगे तो मैं भी उसकी जांच करूंगी, और जब वो मेरे इम्तिहान में पास हो जाएगा तभी शादी होगी, वरना नहीं, इतना समझ लो माँ।
1: हाय हाय, क्या जमाना आ गया है, इन लड़कियों ने तो लाशरम सब बेच खाई है। क्या दिन वे, वो भी जब रीना के बाबू मुझे देखने आए थे, अरे तो मैंने आंख उठाकर उनका चेहरा तक नहीं देखा था, और अब मेरी बेटी कहती है कि अपने मंगेतर की जांच करेगी। हाय हाय, मैं कहां चली जाऊं, घोर कलजुग आ गया है, घोर कलजुग। तभी कहती थी नीना के बाबू से कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं है, पर मेरी सुनता ही कौन है? ए, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, मूर्ख हूं।
2: क्या हुआ माँ, बाबू को क्यों कोस रही हो? रीना कहाँ है?
3: नीना, अरविंद आ गया क्या बेटा?
2: नहीं, मुझे छोड़कर मिठाई लाने किया है, बाजार में थोड़ा काम भी है, आधे घंटे में आ जाएगा। रीना नहीं दिखाई पड़ रही है, कहीं गई है क्या?
1: जाएगी कहाँ, कमरे में बैठी होगी, उसी का तो रोना रात दिन चला करता है। पता नहीं किस मनहूस खड़ी में पैदा हुई थी जो आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है, उसके पहनावे उसकी बातचीत से तो मैं तंग आ गई हूँ।
2: अरे हुआ क्या माँ, कुछ बताओ भी तो।
1: कुछ ना पूछ, अब तुझसे क्या छुपाना, लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, रात को देर से लौटती है, सखी सहेलियों में बैठी गप्पे लगाया करती है, और कपड़े बिल्कुल छोकरों जैसे पहनने लगी है। राम राम, कुछ कहो तो नेताओं जैसे लेक्चर बघारने लगती है। स्त्री स्वाधीनता, मर्दों जैसा अधिकार, पता नहीं क्या क्या बकी है, हे मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़े।
2: तो इसमें परेशानी की क्या बात है माँ, इस उम्र में सभी लड़कियां फैशन करती हैं। वैसे मेरा देवर तो हीरा है हीरा, उससे शादी हो गई ना तो रीना उसी में खोई रहेगी।
1: हे, शादी हो जाए तब ना, पर रीना तो कहती है कि वो अरविंद की जांच परख करेगी, और फिर पसंद आ गया तो शादी के लिए तैयार होगी, वरना नहीं।
2: जांच परख माँ, तुम परेशान मत हो, नई उम्र में जोश में ऐसी बातें सभी लड़कियां करती हैं, पर मन ही मन हर एक लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लाल जोड़ा पहनकर ससुराल जाने के सपने देखती है। तुम सब मेरे भरोसे छोड़ दो माँ, मैं रीना को संभाल लूंगी।
1: अब हमारी इज्जत तो तेरे ही हाथों में है बेटा, रीना का ये रिश्ता अगर टूट गया तो फिर राम जाने क्या होगा।
2: रीना, ओ रीना।
0: आई दीदी। हाय दीदी, कैसी हो?
2: मैं तो ठीक हूँ। हाँ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है, बैठ।
0: बोलो दीदी।
2: सुन, मेरी शादी में तेरी जो सहेली गुलाबी साड़ी पहनकर आई थी ना,
0: हाँ,
2: उसका नाम शायद पुष्पा था ना?
0: हाँ।
2: एक लंबी चोटी की थी, एकदम सीधी सी थी।
0: हाँ, पर क्यों?
2: अरे बात दरअसल ये है कि वो लड़की अरविंद को बेहद पसंद है, कहता है भाभी क्या लंबी बाल है, कितनी सादगी है उसके भोले भाले बिना मेकअप के चेहरे पर। तो मैंने सोचा अगर तू से पसंद ना आई तो पुष्पा से उसका रिश्ता तय कर दूं। कहाँ रहती है वो?
0: तो क्या तेरे देवर को मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं है?
2: अरे पसंद क्यों नहीं, पर वो कहता है कि आधुनिक लड़कियां दोस्ती के लिए ठीक है, पर शादी उन्हीं से की जा सकती है जो घर को सादगी से स्वर्ग बना दे। खैर अभी आता ही होगा, उसी से उसके विचार पूछ लेना।
3: क्यों मीना, ये पुष्पा वाली बात क्या सच है?
2: नहीं माँ, अरविंद तो कभी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं, और फिर उसकी नजरों में तो रीना ही रीना छाई है।
3: फिर तूने ऐसा क्यों कहा बेटा?
2: मेरी बात का प्रभाव रीना पर क्या पड़ा यही देखकर तुम समझ जाओगी कि वो अरविंद से शादी करना चाहती है या नहीं। अरविंद आ गया। रीना जल्दी आ, अरविंद आ गया है।
4: नमस्ते माँ जी।
3: नमस्ते नमस्ते, जीते रहो बेटा। आओ आओ इधर इस कुर्सी पर बैठो। नीना तू अरविंद के पास बैठ, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ।
4: नहीं नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, आप मेरे लिए परेशान न हो।
2: अरे लल्ला, अब तो तुम इस घर के चीफ गेस्ट बनोगे, चीफ गेस्ट। लो बैठो बैठो, अरे शर्मा क्यों रहे हो?
4: भाभी ये अपनी मिठाई संभालो।
2: लाओ। ओ रीना अंदर क्या कर रही है, बाहर आना, अरविंद आया है।
0: आई दीदी। नमस्ते।
4: नमस्ते।
2: अरे वाह रीना, ये गुलाबी साड़ी, ये लंबी चोटी में तो बिल्कुल स्वर्ग की परी लग रही है। ओ फैंटास्टिक, क्यों लल्ला पसंद आई ना?
4: भला आपकी बहन को कहीं ना पसंद किया जा सकता है?
2: तब तो मुझे पुष्पा को देखने नहीं जाना पड़ेगा।
4: पुष्पा? पुष्पा कौन?
2: अरे कोई नहीं, मैं तो अपनी बहन को बुद्धू बना रही थी। क्यों रीना, अरविंद पसंद आया या अभी भी जांच परख करोगी?
0: जाइए दीदी, हम नहीं बोलते।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 10:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम,
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई,
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को

0: बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदरवीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर

0: आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदरवीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए,

धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले

नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरी हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे
बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल

0: सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। सभी सुनने वालों को सुनील सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी फरमाइश ईमेल के जरिए लेते हैं। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारे ईमेल नंबर पर, जो कि गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com पर भेज सकते हैं। अब बगैर किसी देर के हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास फरमाइश बहुत आ चुकी हैं और आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हमारी उन सभी श्रोताओं से यह अपील है कि अगर आपकी फरमाइश एक बार शामिल हो जाए तो कृपया दोबारा हमें मेल मत करिए और गलत नामों से हमें ईमेल मत करिए। हम ये आपसे बार बार इस प्रोग्राम के जरिए भी और आपका पत्र मिला कार्यक्रम में भी अपील कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फरमाइश आई है वो हमारे श्रोता हैं

मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत, अंकिता भटकर और इनके बहुत सारे साथी, ये अगली फरमाइश हमें मिली है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हिरणमाई शेण जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडाने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक शर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और यहीं से ही सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। कार्यक्रम में अगली शब्दावली हमारे पास भेजी है वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज बरेली के। हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, निरम गुड़िया और शेब खान। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। नमस्कार के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। समडील नवाब पारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। ये हमारे पास आया है रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहानी, मिसेस सुनीता सहानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप मक्कड़। नरहन स्ट्रीट समस्तीपुर बिहार से विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन, छोटू, लल्लन मिश्रा और इनके बहुत सारे साथी। गंज आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही, जावेद अख्तर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, रूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक, अली मुजफ्फर अली और इनके परिवार के सभी सदस्य। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गीत आपके नाम कार्यक्रम प्रस्तुत करने को नमस्कार के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता ग्राम व पोस्ट मुंगी सापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया। इनके साथ में हैं उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, साथ में इनकी पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, उनके बहुत सारे साथी। ये हमारे पास पत्र के माध्यम से इन्होंने हमें ईमेल खींच करके दिया है। पतई खालसा से पतई खालसा नई बस्ती ज़िला अमरोहा से मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान और अनाविया सिद्दीकी। ताज महल मोहम्मद भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू, राहुल साहू और चंपा साहू। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है तड़ीपार। जब से मेरा दिल तेरे इश्क में गिरफ्तार हुआ है, सरेआम मेरा नजरा मिलाना भी बहुत दुश्वार हुआ है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम, ये फरमाइश हमारे पास आई है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुश सिंह पाठक और इनके परिवार के सभी सदस्य, ये आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां और इनके बहुत सारे साथी, गांव व डाकघर निम्ना जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके परिवार के सभी सदस्य, नमस्कार के साथ हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। भटिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद और इनके बहुत सारे साथी, भोड़ागाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, गांव फ्रांसी से राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार डुडी, पुष्पेंद्र कुमार डुडी और समस्त डुडी परिवार, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजन वर्मा और मुरली खूबचंद वर्मा। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, ये गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोकले, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके परिवार के सभी सदस्य, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास वंसोडे, रेखा वंसोडे, आदित्य वंसोडे और वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य, ये फरमाइश हमारे पास आई है भोपालगढ़ राजस्थान के हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र और इनके बहुत सारे साथी, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्ण और पीहू स्वर्णकार, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फिरोज़ा रोस्टी, शाइना काजल, असद भाई, बहन फिरोज़ा मुस्कान और साथ में हैं इनके नगमा नाज मंसूरी, संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोहाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी,
आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है कभी कभी। ठानी थी दिल में कि अब ना मिलेंगे किसी, ठानी थी दिल में कि अब ना मिलेंगे, पर क्या करें जी से हो गए लाचार हम।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। मलयान सरदना मेरठ से अनिल जैन साथ में हैं, इनके साथ इनके ही परिवार के सदस्य जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, भाई दिग्दर्शन जी और इनके बहुत सारे साथी। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है मंदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हमारे पास कार्यक्रम में गीत सुनना चाहते हैं हमारे बहुत पड़ोस के श्रोता हैं, पड़ोस ईदगाह गेट मुरादाबाद के शफी अहमद अंसारी और साथ में हैं इनके रईस दुल्ला अंसारी। सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़, यहीं से ही साईं गायकवाड़ और इनके परिवार के सभी सदस्य। जलरमराबाद गोविंदपुर खुर्द से राजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, मोहम्मद रियाज, राजिया, ये हमारे पास आया है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रामपट्टी राजनगर से कपिलेश्वर प्रसाद गुप्ता और क्रांति गुप्ता। हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है चंद्रनगर सहारनपुर के हमारे श्रोता हैं, इनका नाम हम पहले शामिल कर चुके हैं। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। नमस्कार के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संग्राम छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमुरिया, अजय देव तमुरिया, तुषार देव तमुरिया, डॉली बेबी पूजा तमुरिया, राधिका प्रभा देवी तमुरिया और मास्टर अल कबीर। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है बीड शहर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं नंद किशोर घाटे, संगीता घाटे, साक्षी घंटे, जयश्री महत्रे, अंजलि कारवा और बाबा साहब कारवा। नेहरू चौक पेठर से डॉक्टर सुरेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, साथ में हैं इनके सुरेश जाधव। ग्रामबा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रामपट्टी राजनगर से इनके बहुत सारे श्रोता हैं कपिलेश्वर और इनके परिवार के सभी सदस्य। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं जसपुर रोड दूलापुर ज़िला मुरादाबाद के हमारे श्रोता हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अलशिफा परवीन। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर

कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है अवतार। इन बोझे लाखों को अब भी तेरा बरसों से इंतजार है, घुटी घुटी सांसों में भी बसा सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार है।

0: कार्यक्रम का अगला गीत इस छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में

0: मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। दुर्गा चौक जूनापानी सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बडोले, सीताराम, हीरालाल बडोले, साहिल, सुमन बडोले, विशाल, हरिओम, भावना और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान। ये हमारे पास फरमाइश आई है। ज़िला अस्पताल के पास रामपुर से गज्जन खां, शमा परवीन, शमशाद अली अज़म, गुलफशा, शहनाज बाबू अंसारी, राजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी और इनके बहुत सारे साथी। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मारहारा दरवाज़ा ईटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, रसीद बारशी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन और इनके बहुत सारे साथी। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और इनके बहुत सारे साथी। ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनके बहुत सारे साथी। ये मेल हमारे पास आया है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, इनके साथ में हैं ओमकार विद्यार्थी, गुरजेश कुमार विद्यार्थी, प्रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल पलों की वाली और यौस के बहुत सारे साथी। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है मंदी चौक भागलपुर बिहार के हमारे श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण, प्रवीण, मुनीश, राहुल और इनके बहुत सारे साथी। जमानिया मध्य प्रदेश से मनीष रावत, लीलू रावत और रोहन रोशन। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ शामिल हो रहे हैं हम आपसे बार बार इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिनके नाम हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, एक बार उनकी फरमाइश पूरी हो चुकी है, कृपया करके दोबारा से नाम अपने ना भेजें। खुर्जा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार को, फिल्म का नाम है वो सात दिन। कब तक अरमानों को हम सीने में दफन करते रहेंगे, मेरे दिल के करीब आने को तो तेरा भी मन करता होगा। इश्क में अगर ठान लो तुम तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है, दिलों के फासले मिटाने को तेरा मन भी करता होगा, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता साथ में हैं। इनके बहुत सारे साथी ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। कार्यक्रम में अपनी अगली फरमाइश लेकर के हमारे पास आए हैं नूर नगर गंज डुंडवारा से उजमा शेख, शिफा शेख, साथ में हैं इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है गणेशपुर एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीर, उनके बहुत सारे साथी। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शाविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ये जाकिर जी, हमारी आपसे कोई ज़ाती तौर पर कोई भी इस तरीके की बात नहीं है, ना कोई दुश्मनी है, ना आपसे कोई बात है। यकीन मानिए, मेल इतने आते हैं कि हो सकता है आपका पढ़ने से छूट गया हो, लेकिन जैसे ही देखिए हमारा मेल, आपका मेल हमारे पास आया, हमने तुरंत इसको शामिल किया। आपसे हमारी कोई भी इस तरीके की बात नहीं है, ना कोई नाराज़गी है। कार्यक्रम में अगले हमारे श्रोता हैं परीमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम खान। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान की। अगले हमारे श्रोता पालदा नाका इंदौर मध्य प्रदेश के हैं हसीना बी मंसूरी, आमिना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और हिसना बी, साथ में हैं इनके हुसना बी। सनावत मध्य प्रदेश से खुशी, खुशबू, खुशमरीत, खुशमिता, खुशदीप, एकांश, इमली, वंदना बाडोले और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये नेहरू चौक पेठड़ के हमारे श्रोता हैं, कहते हैं कि आपने मेरा नाम सर अधूरा पढ़ा। ऐसी बात नहीं है, आपका ईमेल उस समय हमारे पास अधूरा ही आया था, अब आपका पूरा प्राप्त हुआ है। सुरेश यादव, अनीता यादव, सोनल प्रसाद यादव और जॉन यादव परिवार के समस्त सदस्य। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, सोना मदीवा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और अमित कुमार को, फिल्म का नाम है हम पाँच।

गुवाहाटी असम के हमारे श्रोता हैं हरीन पांड्या, नरीन पांड्या और वीरेन पांड्या। आप देखते हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है और लाइव भी हम आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।

ग्राम लोहित जिला महुआ बुंदेलखंड के हमारे श्रोता हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना इनके साथ में हैं, रोनिका यादव और इनके बहुत सारे साथी।

इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे मुंबई के श्रोता हैं अनुबार जाटिया, शमशुल खान और अनुराज बोगरा, साथ में ही इनके परिवार के सभी सदस्य।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
6: ब्रो, ये फटा है।
7: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
8: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
6: वाओ, नया नोट मिलेगा?
7: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
8: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
9: कूल रहो।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और शाम दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। समय याद रखिएगा, आज रात 10 बजे दिल्ली से ही रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अनुगूंज। अब से थोड़ी देर बाद यानी 1:15 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम होगा कलियां। इसमें आज चर्चा के अलावा मोहम्मद नईम की वार्ता का विषय रहेगा मानसून के पीछे का रहस्य। बच्चों के मनोरंजन के लिए बाल गीत भी सुनवाया जाएगा और नन्हे बोल कार्यक्रम भी आप तक पहुंचेगा। समय याद रखिएगा, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:15 पर। 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे 50 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। शाम दूसरी सभा हमारी आरंभ होगी 5:00। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कंपेयर कार्यक्रम आज शाम। पांच बजकर 15 पर युवा दोस्तों का दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत। 6:20 पर किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसमें आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इस विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। साथ ही पशुओं में बांझपन समस्या, कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार से की गई भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। भेंट करेंगे जसमेंद्र। किसान साथियों के मनोरंजन के लिए लोकगीत भी सुनवाया जाएगा और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी होगा। मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। शाम 7:00 आप सुनेंगे क्षेत्रीय गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। 7:31 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे चित्रा सिंह। इनकी आवाज में हम आपको सुनवाएंगे चंद गजलें। गीत गाता चल। व्हाट्सएप पर फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और शाम दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कलियां में। बच्चों, कलियां यह मंच है जहां छोटे छोटे बच्चे अपनी बड़ी बड़ी प्रतिभाओं के साथ सामने आते हैं। उनकी मीठी आवाज़ें, प्यारी प्यारी कविताएं और मासूम बातें आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। तो आइए आज के इस खास सफ़र को मिलकर शुरू करते हैं, जिसमें आपका साथ देने के लिए हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी साथी प्रियंका दीदी।
1: और मैं प्रीति दीदी भी बच्चों आपके साथ इस सफ़र में साथ देने के लिए हाजिर हो गई हूँ। तो बच्चों आज हमारे साथ यूं ही बनी रहिए।
0: बच्चों, जैसे कि आज माह का अंतिम रविवार है और इस संडे भी कलियां कार्यक्रम के सुहाने सफर में चर्चाओं का एक बड़ा सा पिटाकर लेकर आ गए हैं मैं और आपकी प्रीति दीदी। तो आइए प्रीति, जल्दी से खोलते हैं आज का ये पिटारा।
1: जी प्रियंका, और देखिए इस पिटारे से निकली है हमारी आज की पहली चर्चा, राष्ट्रमंडल दिवस।
0: प्रीति, ये राष्ट्रमंडल दिवस क्या है?
1: बच्चों राष्ट्रमंडल यानी ऐसे देशों का समूह जो एक दूसरे के साथ मिलकर शांति, विकास और सहयोग के लिए काम करते हैं।
0: जी हाँ प्रीति, और बच्चों आपको पता है इस समूह में दुनिया के कई देश शामिल हैं, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देश। बच्चों, हमारा देश भारत भी इस संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
1: बच्चों राष्ट्रमंडल दिवस हमने 24 मई को भारत में मनाया। बच्चों इसकी शुरुआत देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हुई थी।
0: बच्चों, राष्ट्रमंडल दिवस हमें सिखाता है कि हमें अलग अलग भाषा, संस्कृति या परंपराओं के बावजूद भी हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।
1: बच्चों आज के समय में जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में राष्ट्रमंडल जैसे संगठन हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही यह दिन हमारे लिए यह भी सिखाता है कि मिलकर काम करने से ही हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
0: जी हाँ प्रीति, और आइए पिटारे में से निकालते हैं हमारी अगली चर्चा।
1: लाइए प्रियंका, मैं निकालती हूँ। बच्चों ये चर्चा निकली है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, जो हम 31 मई को मना रहे हैं, यानी कि आज।
0: अरे इतना बड़ा नाम, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बच्चों आइए इस दिवस को आसान भाषा में समझते हैं। बच्चों, तंबाकू निषेध दिवस का मतलब होता है तंबाकू को ना कहने का दिन।
1: प्रियंका ये तंबाकू होता क्या है, बच्चों को जरा आसान शब्दों में बताइए।
0: बच्चों, तंबाकू एक पौधे की पत्ती है जिससे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी जैसे पदार्थ बनते हैं। बच्चों कुछ लोग इसे मजे के लिए खाते और पीते हैं, पर यह हमारे शरीर के लिए एक जहर के समान है।
1: बिल्कुल सही बताया प्रियंका जी आपने। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू हमारे शरीर को कैसे नुकसान करता है। बच्चों इसे ऐसे समझे, तंबाकू से हमारे फेफड़े काले हो जाते हैं, सिगरेट का धुआं फेफड़ों में जाकर उन्हें काला और कमज़ोर कर देता है, फिर दौड़ने पर हमारी सांस फूलती है।
0: बच्चों तंबाकू से हमारे दांत गंदे और मुँह में छाले हो जाते हैं। गुटखा खैनी से दांत लाल काले हो जाते हैं और मुँह में खतरनाक बीमारी यानी कैंसर तक हो सकता है। बच्चों तंबाकू से दिल कमजोर हो जाता है, तंबाकू दिल की नली को बंद कर देता है जिससे कि हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हो जाते हैं, और तंबाकू हमारे दिमाग को धीमा कर देता है जिससे कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता और यहाँ तक कि हमारी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है।
1: इसलिए बच्चों हमेशा से इन बुरी आदतों से आपको दूर रहना है। बच्चों कई बार हम पैसिव स्मोकिंग के भी शिकार हो जाते हैं।
0: प्रीति, ये पैसिव स्मोकिंग क्या है, ये भी बच्चों को बताइए।
1: बच्चों मान लीजिए कि अगर कोई अंकल सिगरेट पी रहे हैं और आप पास बैठे हैं, तो वो धुआं आपके अंदर भी आ जाता है। इसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। इससे बच्चों आपको खांसी, दमा और निमोनिया भी हो सकता है।
0: जी हाँ बच्चों, तो ध्यान रखिए कभी भी अगर ऐसा हो तो क्या कहना है, कहना है अंकल प्लीज़ यहाँ पर सिगरेट मत पीजिए और इस गंदी आदत को भी आप छोड़ दीजिए।
1: बच्चों आप आज ही से ये वादा करिए कि आप जीवन में कभी भी तंबाकू को नहीं खाएंगे और ना ही अपने दोस्तों और परिवार को भी खाने देंगे। हेल्दी रहिए और मस्त रहिए।
0: जी हाँ, और प्रीति अब फिर से समय हो चला है इस पिटारे को अपनी ओर खींचने का और एक नई चर्चा निकालने का। तो अगली चर्चा निकालते हैं।
1: हाँ प्रियंका, और ये चर्चा निकली है विश्व दुग्ध दिवस की, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे।
0: वाह बच्चों, यानी कि आज हम दूध की सुपर पावर की बात करने वाले हैं।
1: जी हाँ बच्चों, कल 1 जून को हम सभी विश्व दुग्ध दिवस मनाएंगे। इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया था ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि दूध पीना कितना ज़रूरी है।
0: जी हाँ बच्चों, दूध सिर्फ सफ़ेद पानी नहीं है, यह तो जादुई लिक्विड है जो कि हमें सेहतमंद बनाता है। तो बच्चों आइए जानते हैं दूध पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
1: बच्चों दूध पीने से हमारी हड्डियाँ, दांत मजबूत तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ दूध में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। बच्चों, अगर आप रोज एक ग्लास दूध पियेंगे तो कभी भी फ्रैक्चर नहीं होगा और दांत हमेशा चमकते रहेंगे।
0: जी हाँ, और बच्चों, दूध पीने से हमारी लंबाई भी बढ़ती है। दूध में प्रोटीन होता है जो कि लंबा होने में मदद करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहलवान और खिलाड़ी सबसे ज्यादा दूध पीते हैं।
1: और तो और बच्चों, दूध पीने से हमारा दिमाग तेज होता है। दूध में विटामिन B12 होता है जिससे पढ़ाई जल्दी याद हो जाती है और दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है।
0: वाह बच्चों, और रुकिए, इतना ही नहीं, दूध हमें हर बीमारी से बचाए भी रखता है। दूध में विटामिन A और D होता है जो आंखों की रोशनी बनाए रखता है और हमें सर्दी जुकाम से भी बचाता है। तो बच्चों, समझे ना आप, मतलब एक गिलास दूध = हड्डी + दिमाग + ताकत, तीनों का पैकेज है।
1: बिल्कुल प्रियंका, मुझे लगता है कि बच्चों को अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक गिलास दूध की ताकत क्या होती है। तो बच्चों, अब आप वादा कीजिए कि रोज एक गिलास दूध पियोगे और जो आपके दोस्त हैं जो दूध नहीं पीते हैं उनको भी पिलाएंगे, क्योंकि दूध पीने वाले हमेशा से तगड़े और मजबूत होते हैं। ये तो थी बच्चों दूध की बात, और आइए बढ़ चलते हैं चर्चा में आगे और अगले विषय की तरफ बात करते हैं, जो कि खास तौर से प्रियंका बच्चों से जुड़ा है।
0: जी हाँ, बच्चों से तो जुड़ा ही है, और बच्चों को जो डर का माहौल होता है जब वो अपने को आपको बेबस और अनसेफ महसूस करते हैं ना, उससे भी जुड़ा है।
1: जी हाँ बच्चों, आप सभी समाज के आईने माने जाते हैं, लेकिन क्या भी जानते हैं आप कि इस धरती पे लाखों मासूम ऐसे भी हैं जिनका बचपन खेलने कूदने में नहीं बल्कि डर, हिंसा और आक्रामकता के साय में बीतता है, कभी युद्ध की वजह से तो कभी किसी और वजह से।
0: जी हाँ बच्चों, इस संवेदनशीलता में आने वाले दिनों 4 जून को पूरी दुनिया में हिंसा का शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही इसकी शुरुआत भी की थी।
1: बच्चों, जिसका मकसद उन बच्चों के दर्द को महसूस करना है जो युद्ध, घरेलू हिंसा या मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कभी समाज के कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बच्चों को उतनी सुविधाएं या फिर उतने अधिकार नहीं मिल पाते जितने की वो हकदार होते हैं।
0: तो बच्चों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे सीमा पर तनाव हो, समाज में कुरीतियां हो या फिर घर की चार दीवारी के अंदर का गुस्सा,
1: इन सब का सबसे बुरा असर उन मासूम कंधों पर पड़ता है जो अभी ठीक से खड़े होना भी नहीं सीखे हैं। हिंसा सिर्फ शरीर पर चोट नहीं देती बल्कि वह बच्चे के मन, उसकी आत्मा और उनके सुनहरे भविष्य को हमेशा के लिए जख्मी कर देती है।
0: और बच्चों, बचपन के ये कड़वे एहसास उनके भविष्य के लिए काली परछाई बनकर उनके साथ रह जाते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है।
1: कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सभी मिलकर ये अपील करते हैं कि अपने आसपास के बच्चों को हम नोटिस करेंगे और उन्हें एक सुरक्षित माहौल, प्यार भरा वातावरण देने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं किसी बच्चे के साथ बच्चों कहीं गलत हो रहा है तो केवल दर्शक ना बने रहें, आगे बढ़ें, उसको मॉरल देने की कोशिश करें।
0: बच्चों, इसमें आप भी भागीदारी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि कभी अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा आपको लगे किसी हिंसा का शिकार हो रहा है तो आप जरूर कोशिश कर रहे हैं उसे रोकने की।
1: बच्चों, स्कूल्स में या फिर पार्क में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को बुली करते हैं, या शायद आपने भी कभी किया होगा।
0: बच्चों, जब कोई बच्चा मेंटल या फिजिकल टॉर्चर होता है तो उसका मन मुरझा जाता है, जैसे उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। आपकी छोटी सी गलती किसी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल तोड़ देती है।
1: जी हाँ, उसकी स्ट्रांगनेस मानो उससे छीन गई हो, आप भूल जाएं मगर वो बच्चा हमेशा के लिए कुछ खो देता है।
0: याद रखें, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त उदास है या फिर उसे कोई परेशान कर रहा है तो आपको तुरंत अपने टीचर्स या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए।
1: बच्चों, सभी बच्चों को प्यार भरी छांव चाहिए ताकि वे जीवन के सुंदर बगीचे में फूलों की तरह खिले और महके।
0: बगीचा, फूल, वाह क्या बात है प्रीति। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय, विश्व पर्यावरण दिवस।
1: भाई, हरा भरा समाज होगा प्रियंका, तभी तो हम अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी 5 जून को मनाते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा।
0: जी हाँ बच्चों, पर्यावरण को समझना भी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी पर्यावरण को तिल तिल करके ख़त्म करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि आज वो भयानक परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं।
1: कभी बाढ़ बनकर, कभी सूखा बनकर, तो कभी नदियों का लुप्त होना देखकर, मगर हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पर सोचना होगा।
0: बस जो जंगलों को लगातार काटना, पहाड़ों को काटकर वहाँ पर डेवलपमेंट करना, खनन का लगातार करना, ये सभी हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं और अब समय आ गया है पर्यावरण की रक्षा करने का।
1: आज के इस डिजिटल एज में हम सभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कैसे मनाते हैं? शायद प्रियंका स्टेटस लगाकर, है ना?
0: पहले हमें अपनी धरती का स्टेटस इम्प्रूव करना होगा बच्चों। वो कैसे होगा? एक पेड़ नहीं, अनगिनत पेड़ लगाकर, नदियों में कचरा ना डालकर, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर, पानी की बचत कर और बिजली बचाकर और कचरे का सही मैनेजमेंट करना, ये सभी ही स्टेप हैं जिससे हम अपनी धरती का स्टेटस सही कर सकते हैं।
1: और बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बनना, तो आप कागज़ की बर्बादी ना करें। ज़रूरी हो यूज़ करें, दोबारा उसे यूज़ करने की कोशिश करें, पेपर को दोनों तरफ लिखने की।
0: बच्चों, अपने आसपास उगाए हुए मौसमी फल सब्जियां ही खरीदें जो कि हेल्दी तो हैं ही, साथ साथ हमारे नेचुरल सोर्सेज के सीमित उपयोग से पैदा होती हैं। और हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल में लाएं ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है 3R। प्रीति, या बच्चे सोच रहे होंगे 3R क्या है? तो बच्चों, 3R है रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल। इन सब पर अमल करें ताकि हमारी धरती सिर्फ स्टेटस पे ही नहीं बल्कि सच में ही साफ और सुरक्षित हो।
1: पर्यावरण की बात हो रही है तो बता दें बच्चों कि मानसून भी हमारे पर्यावरण का ही एक फिनोमेना है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि मानसून क्यों आता है, कैसे आता है? आइए इस पर एक वार्ता सुनते हैं। वार्ताकार है मोहम्मद नईम।
2: बच्चों, इस वक्त बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। धरती पर बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? बारिश के इस सीजन को हम मानसून कहते हैं। भारत में मानसून कब आता है और किस क्षेत्र से मानसून की शुरुआत होती है? तो बच्चों, आज हम मानसून के वैज्ञानिक परिदृश्य पर बात करते हैं। बच्चों, इस बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 18 अप्रैल को दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान जारी किया गया था। देश में मानसून का सीजन 4 महीने का होता है। मानसून जून में शुरू होता है और सितंबर तक सक्रिय रहता है। पूर्वानुमान के दौरान मौसम विभाग कई पैमानों का इस्तेमाल कर इन 4 महीनों के दौरान होने वाली मानसूनी बारिश की मात्रा को लेकर संभावना जारी करता है। इससे कृषि और अन्य क्षेत्रों को अपनी ज़रूरी तैयारियाँ करने में मदद मिलती है। बच्चों, मानसून कृषि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आधी से ज़्यादा खेती बाड़ी मानसूनी बारिश पर ही निर्भर करती है। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहां भी मानसूनी बारिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश नहीं होगी तो नदियां झीलें भी सूख जाएंगी। ये सभी स्रोत कृषि की सिंचाई के लिए होते हैं। बच्चों, मानसून का अर्थ अरबी भाषा मौसम से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है हवाओं का मिजाज। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। उधर ग्रीष्म ऋतु में हवाएं उसके विपरीत दिशा में बहती हैं जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है। चूंकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक हवाएँ भी या ट्रेड विंड भी कहा जाता है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तो मानसून का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में समुद्र की सतह गर्म होने लगती है और उसका तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि इस दौरान धरती का तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच चुका होता है। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएँ सक्रिय हो जाती हैं। ये हवाएँ एक दूसरे को आपस में काटते हुए विषुवत रेखा पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। विषुवत रेखा पार करके ये हवाएं और बादल बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करते हैं। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक हो जाता है। बच्चों, ऐसी स्थिति में हवाएँ समुद्र से ज़मीन की ओर बहने शुरू हो जाती हैं। ये हवाएँ समुद्र के जल के वाष्पन से उत्पन्न जल वाष्प को सोख लेती हैं और पृथ्वी पर आते ही ऊपर की ओर उठने लगती हैं और वर्षा करते हुए आगे बढ़ती हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचने के बाद ये मानसूनी हवाएं 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। बच्चों, इसमें एक शाखा अरब सागर की तरफ से मुंबई, गुजरात और राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकरा कर गंगीय क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है और इस प्रकार जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में झमाझम पानी बरसने लगता है। बच्चों, मानसून एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका अनुमान लगाना बेहद जटिल है। कारण यह है कि भारत में विभिन्न किस्म के जलवायु जोन और उपजोन हैं। हमारे देश में 127 कृषि जलवायु उपसंभाग हैं और 36 संभाग हैं। मानसून विभाग द्वारा अप्रैल के मध्य में मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसके बाद फिर मध्यम अवधि और लघु अवधि के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से नावकास्ट के माध्यम से मौसम विभाग ने अब कुछ घंटे पहले के मौसम की भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया है। बच्चों, मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में हाल के वर्षों में सुधार देखा गया है। अभी मध्यम अवधि की भविष्यवाणियां जो 15 दिन से एक महीने की होती हैं 70-80% तक सटीक मिलती हैं। हालांकि लघु अवधि की भविष्यवाणियां जो आगामी 24 घंटे के लिए होती हैं करीब 90% तक सही होती हैं। अलबत्ता नाव कास्ट की भविष्यवाणियां करीब करीब 99% सही निकलती हैं। बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के निकट खासकर पेरू वाले क्षेत्र में यदि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द समुद्र की सतह अचानक गर्म होनी शुरू हो जाए तो अलनीनो की स्थिति बनती है। यदि तापमान में ये बढ़ोतरी 0.5 डिग्री से 2.5 डिग्री के बीच हो तो ये मानसून को प्रभावित कर सकती है। इससे मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसका असर ये होता है कि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द चलने वाली ट्रेंड विंड कमजोर पड़ने लगती है। यही हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं जो भारत में बारिश करती हैं। बच्चों, प्रशांत महासागर में उपरोक्त स्थान पर कभी कभी समुद्र की सतह ठंडी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अल नीनो के ठीक विपरीत घटना होती है जिसे ला नीना कहा जाता है। ला नीना बनने से हवा के दबाव में तेजी आती है और ट्रेंड विंड को रफ्तार मिलती है जो भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में मानसून पर अल नीनो के प्रभाव के कारण कम बारिश हुई थी जबकि वर्ष 2010 और 2011 में ला नीना के प्रभाव के कारण अच्छी बारिश हुई थी। बच्चों, बारिश अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है। बच्चों, बारिश अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है वहाँ बारिश होने से अच्छी फसल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं भी तो ऐसे क्षेत्रों में समय पर अच्छी बारिश होने से किसानों को नलकूप चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी और अच्छे उत्पादन से किसानों को फायदा होगा और खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि भी नियंत्रित रहेगी।

0: खेती बाड़ी, जलाशयों, नदियों को पानी से लबालब कर देती है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से तप रहे देश को भी गर्मी से राहत प्रदान करती है। बच्चों, मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है और मई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीपों में दस्तक देता है। इसके पश्चात 1 जून को केरल में इसका आगमन होता है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके मानसून से वंचित रह जाते, क्योंकि मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती हैं और हिमालय से टकराकर वापस लौटते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश करती हैं। बच्चों, देश में मानसून के 4 महीनों में 89 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है। 80% बारिश मानसून के 4 महीनों जून से सितंबर के दौरान होती है। बच्चों, पश्चिम तट और पूर्वोत्तर के राज्यों में 200 से 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जहां मानसूनी बारिश सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर ही होती है।
1: मानसून के पीछे का रहस्य। बच्चों, अभी इस विषय पर हमने ये वार्ता सुनी। वार्ताकार थे मोहम्मद नईम। और प्रीति, देखिए अब कार्यक्रम का समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए बच्चों को सुनवाते हैं श्याम मोहन की आवाज में ये प्यारा प्यारा सा बाल गीत।
2: नमस्कार बच्चों, नन्हे बोल कार्यक्रम के अंतर्गत प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ आकाशवाणी रामपुर के

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना, छोटी सी गुड़िया की नन्ही कहानी। और इस छोटी सी गुड़िया के साथ साथ आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ चलते हैं और सुनते हैं नन्हे नन्हे बच्चों का प्यारा सा सेगमेंट, जिसके अंतर्गत हम बच्चों की मीठी मीठी बातें सुनवाते हैं नन्हे बोल।
1: नमस्कार बच्चों, नन्हे बोल कार्यक्रम के अंतर्गत प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में आ चुके हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो इन संग हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या ये हमें सुनाने वाले हैं।
2: प्रियंका, देखिए इतने सारे जो बच्चे हैं ना, वो एक एक करके इतना मेलोडियस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ना कि कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो बहुत देर से बैठे हुए थे और उनको लग रहा है कि भाई हम एक से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, आज हम कुछ और भी सुनाना चाहते हैं। तो चलिए भाई, बिना देर करे शुरू करते हैं आरोही की एक और प्यारी सी प्रस्तुति।

0: आरोही जी, आपने तो कमाल कर दिया। एक ही करके पहले गजल सुनाई, फिर ये ओल्ड सॉन्ग सुनाया, और ये सॉन्ग मुझे लग रहा है तो पुराना, मगर आज भी जब हम सुनते हैं ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। और सुकून तो तब और ज्यादा मिलता है जब इतनी प्यारी सी और मासूम सी आवाज से ये गाना गाया जाए। आरोही बेटा, बहुत अच्छा लगा, और हमारी विशेष आपके साथ हैं कि इसी तरीके से आप अपने म्यूजिक टीचर का, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और भविष्य में एक सफल गायक बने।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, आप यहाँ आने का और हम सबके साथ अपनी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन शेयर करने का।
1: थैंक यू मैम।
0: प्रियंका, देखिए इतने सारे बच्चे आज स्टूडियो में हमारे आए हुए हैं और बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। और एक एक करके बारी तो आई है, और साथ में एक और बच्चा है जो हमारे साथ

0: बात है, मतलब पढ़ाई तो करी, साथ में एक और अच्छी बात सीखी जो है हॉबी वर्क। और जो आपकी हॉबी है, जैसा कि आपकी बात करके पता चल रहा है कि आपकी हॉबी सिंगिंग है, तो ये बताइए कि आप सिंगिंग सीखते हैं कहीं?
1: यस मैम,
0: किन से सीखते हैं आप?
1: मैं सर से सीखता हूँ।
0: सर से सीखते हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में आज आप हमारे बच्चों को बहुत अच्छी संगीत में प्रस्तुति देने जा रहे हैं ना। मुझे ये बताइए आज क्या लेकर आए हैं?
1: मैं एक सॉन्ग लेके आया हूँ।
0: अच्छा, चलिए तो बिना देर करे शुरू करें।

0: भाई क्या बात है प्रियंका, इनकी जो इतनी मेलोडियस जो परफॉर्मेंस है उससे मुझे लग रहा है पूरा स्टूडियो झूम गया है और सारे जो बच्चे हैं लिसनर्स हैं भाई उनको तो मज़ा आने वाला है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही। भाई भाई आपका गाना सुन के बहुत मज़ा आ गया।
1: थैंक यू मैम।

0: कुछ और भी सुनाना चाहेंगी?
1: नहीं।
0: चलिए, थैंक यू बेटा, आपसे बात करके और आपका प्यारा सा गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपकी आवाज़ है ना, वो मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे भावी सिंगर बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो आपको मिलेंगी। थैंक यू बेटा।
1: थैंक यू मैम।
2: गुड आफ्टरनून दीदी।
3: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कौन बात कर रहे हैं आप?
2: मैं गानिया।
3: जी हाँ, गानिया बात कर रही हैं। और आपकी आवाज़ सुनते ही हम पहचान गए थे कि गानिया ने हमें याद किया है। काफी समय बाद फिर से हमारी मुलाकात गानिया आपके संग हो रही है ना?
2: जी,
3: कैसी हैं आप?
2: मैं आपको बहुत मिस कर रही थी।
3: जी, हम भी आपको मिस कर रहे थे। और
2: मेरा आकाशवाणी रामपुर केंद्र कैसा है?
3: सब बहुत अच्छे हैं गानिया, आप बताइए, आप कैसे हैं, आपके परिवार में सब कैसे हैं?
2: हमारे परिवार में सब बढ़िया है
3: बढ़िया है।
2: दीदी। मैं आपको एक कविता और एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। ओके
3: ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे सुनेंगे कविता। ओके, सुनाइए।
2: बढ़िया वरन है हमारी शान, जिसमें मस्ती हमारी जान, पेड़ बहुत है हमारे गहने, जो देते हैं हमें जीवन में रहने। आओ मिलकर कसम खाएं, पेड़ हम रोज लगाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, हम अपनी धरती को सुंदर बनाएं।
3: क्या बात है, क्या बात है गाने, बहुत ही सुंदर सी आपने और प्रेरणादायक कविता हमें सुनाई, और जिसका विषय था
2: थैंक
3: पर्यावरण, है ना?
2: यू जी।
3: तो पर्यावरण तो वैसे भी गाने हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। अगर पेड़ होते हैं तो पेड़ों से क्या मिलता है हमें?
2: हमें पेड़ खूब लगाना चाहिए क्योंकि उनसे ऑक्सीजन मिलती
3: जी
2: है
3: हाँ, जी हाँ भाई, गानिया तो काफी समझदार हैं। और
2: और उनसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आंखों की रोशनी भी पड़ती है।
3: और हरियाली जो होती है ना, वो हमारी आंखों की तो सुकून भी देती है ना, जब हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है।
2: जी
3: जी हाँ, और साथ ही साथ हमें फल सब्जी यानी कि जितनी भी हम चीजें खाते हैं वो सब भी तो पेड़ों से ही मिलती है ना?
2: जी
3: जी, तो हम तो कहते हैं भाई पेड़ जरूर लगाने चाहिए, क्यों गानिया?
2: हमें जरूर लगाना चाहिए पेड़।
3: जी हाँ, और आपको तो फिर ये भी पता होगा गानिया कि पर्यावरण दिवस भी आने वाला है,
2: जी
3: 5 जून को मनाने वाले हैं हम सभी पर्यावरण दिवस, है ना?
2: जी
3: तो गानिया, इसी विषय पर आपने हमें प्यारी सी कविता सुनाई और हम सबको सीख भी दी और बताया भी कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है। तो गाने, आपकी कविता तो बहुत अच्छी थी, अब बढ़ चलते हैं आपके गाने की तरफ।
2: थैंक यू। बारिश
3: जी, तो गाना कौन सा सुनाएंगी आप?
2: का मौसम था,
3: जी सुनाइए।
2: बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, बुढ़ा खाने दामन

0: गई, ऐसी फिर कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, खांसी हुई, कोल्ड में हालत मेरी हुई ऐसी, आ आ अच्छी आ अच्छी।
1: अरे वाह भाई वाह, आपका भाई सॉन्ग तो बहुत अच्छा था, और सॉन्ग के साथ साथ आपने सॉन्ग में बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल भी दिखाया है ना
0: जी
1: जी। तो बहुत ही मजा आया गाने। और जैसे कि आपने बारिश की बात करी, तो बारिश तो कल शाम हमारे यहाँ हुई भी है ना रामपुर में,
0: जी
1: आंधी तूफान बारिश, कितना बढ़िया मौसम हो गया था।
0: जी
1: क्या किया आपने उस बढ़िया मौसम में?
0: हमने पकौड़ियाँ
1: अच्छा, और भाई अगर बारिश के मौसम में पकौड़ी मिल जाती है तो फिर क्या ही बात है ना, मुझे
0: खाई, और
1: लगता है।
0: कोल्ड ड्रिंक पी, लस्सी पी,
1: अरे भाई क्या बात है, मुझे लग रहा है गान्या की तो बिल्कुल पार्टी हो गई थी कल फिर, है ना।
0: पकौड़े खाए, ब्रेड पकौड़े खाए,
1: क्या बात है गान्या, मजा आ गया होगा फिर तो आपको, है ना।
0: और ईदी भी बहुत हो गई थी।
1: अरे हाँ गान्या, आपने ईद भी तो मनाई होगी, ईद कैसी रही आपकी ये भी बताइए हमें।
0: अच्छी रही
1: अच्छी रही ईद, खूब
0: जी,
1: मजे की है।
0: 2,000 रुपीज हैं
1: क्या बात है भाई, इतने सारे आपको ईदी मिली,
0: जी।
1: क्या बात है, इसका मतलब गाने आपसे बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको इतनी सारी ईदी दी सबने, है ना, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया अपना
0: जी
1: जी। तो बहुत ही अच्छा है। और ईद पर अच्छा ये जानना चाहेंगे गाने, आपको पता है ईद क्यों मनाते हैं?
0: खुशी में
1: जी हाँ, त्योहारों में तो खुशी होती होती है।
0: ईद का त्योहार सबसे प्यारा दिन होता है, सिवैये खाते हैं, छोले खाते हैं, बिरयानी कोरमा खाते हैं
1: हाँ क्या बात है, इतनी सारी चीजें आपने भी खाई होंगी ना फिर तो गानिया।
0: जी।
1: चलिए मुझे तो लगता है गानिया आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आपने इतनी सारी चीजें खाई, आपको ईदी भी ढेर सारी मिली, और उसके बाद फिर कल
0: तुम्हारे
1: जो बारिश का मौसम रहा तब भी आपने
0: आया करिए ईद पर जी,
1: जी बिल्कुल, आप बुला रही हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपसे मिले, और आप भी हमसे जरूर आती रहे, मिलती रहे, और आपके संग बात करके तो गानिया हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: जी। तो गाने आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना।
0: जी, बहुत बहुत से भी ज्यादा अच्छा। थैंक
1: क्या बात है, शुक्रिया, थैंक यू गानिया, फिर
0: यू,
1: बात करेंगे आपसे, बाय बाय
0: बाय, गुड आफ्टरनून दीदी,
1: जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नाम बताइए अपना
0: मोहम्मद शमाइल
1: जी। हाँ शमाइल, कैसे हैं आप?
0: जी। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं जी?
1: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए परिवार
0: मैं
1: में आपके सब कैसे हैं
0: जी, परिवार में भी सब बढ़िया है
1: जी। और आपकी आवाज सुनते शमल, देखिए हम आपको पहचान तो गए थे, बट जो हमारे जो और बच्चे हमारे संग कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको आपसे परिचय कराना जरूरी था, इसलिए हमने आपका
0: जी।
1: नाम पूछा। अच्छा शमल ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है?
0: जी बहुत अच्छी चल रही है
1: अच्छी चल रही है। अच्छा
0: जी
1: अभी तो समर वेकेशन चल रहे होंगे ना शमल आपके, तो
0: जी
1: इन समर वेकेशन में क्या कर रहे हैं आप?
0: मस्ती
1: मस्ती, वाह भाई। और मुझे तो लगता है ना जब पढ़ाई से हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, स्कूल जाने से, ट्यूशन जाने से, तो मस्ती तो करनी चाहिए, है ना। ये दिन भी
0: जी
1: कभी कभी आते हैं, फिर तो दोबारा से हमें पढ़ाई करनी होगी, ट्यूशन पढ़ना होगा, है ना।
0: जी
1: अच्छा आपको हॉलीडे होमवर्क भी तो मिला होगा ना शमाई,
0: जी
1: तो कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रख रहे हैं थोड़ा थोड़ा।
0: जी
1: अच्छा, और इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, कोई आपकी हॉबी वगैरह जो आप करना चाहते हो? क्रिकेट,
0: क्रिकेट
1: क्या बात है, क्रिकेट खेलना पसंद है आपको,
0: जी
1: और आजकल तो आईपीएल भी चल रहे हैं, तो आप
0: जी
1: देखते हैं, तो
0: जी
1: क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल में?
0: आरसीबी
1: आरसीबी। जी हाँ
0: आरसीबी मेरी टीम, मेरी फेवरेट टीम फाइनल में पहुंच गई
1: क्या बात है, क्या बात है, जी हाँ आरसीबी फाइनल में पहुंच चुकी है, और आपकी पसंदीदा टीम है, तो ये तो और भी
0: जी
1: अच्छी बात है, और जैसे कि चांसेस बन भी रहे हैं कि आरसीबी ही जीतेगी, है ना।
0: जी
1: चलिए तो और अच्छी बात है। अच्छा शमाइल अब बढ़ चलते हैं आपकी परफॉर्मेंस की ओर, तो क्या सुनाने वाले हैं आप,
0: कविता,
1: सुनाइए।
0: आओ हम ये कसम खाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं, संदेश ये हम सब तक पहुंचाएं, आओ हम पर्यावरण बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी की हर एक बूंद बचाएं, ये बात हम सबको समझाएं, आओ हम पर्यावरण बचाएं
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी कविता थी आपकी, और आपने सबको संदेश भी दिया कि हमें अपना पर्यावरण बचाना है ना।
0: जी।
1: और कैसे बचा सकते हैं अपना पर्यावरण?
0: पेड़ लगाकर
1: जी हाँ पेड़ लगा के, तो शमाइल आप लगाते हैं पेड़, ऐसा कोशिश करते हैं कहीं आपको दिखता है मिट्टी वगैरह तो आप वहां पे पेड़ लगा दें अपने घर के आसपास।
0: जी
1: चलिए तो अच्छी बात है, क्योंकि पेड़ पौधे जितने रहेंगे उतने हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी,
0: जी लगाना है और पेड़ कटने से बचाना है।
1: जी हाँ, और साथ ही साथ जो लोग पेड़ काटते हैं ना, उनको काटने से रोकना है ना, क्योंकि जब
0: जी
1: अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, वन ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम इंसान भी जिंदा नहीं रह पाएंगे।
0: जी
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने शमाइल। अच्छा शमाइल, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारी थोड़ी देर पहले गानिया से बात हुई, उन्होंने बताया उन्होंने ईद बहुत अच्छे से मनाई, आपकी ईद कैसी रही?
0: मेरी बहुत बढ़िया रही।
1: बढ़िया रही? घूमने गए थे रिश्तेदारों
0: जी
1: के यहाँ?
0: जी
1: आपके यहाँ भी खूब सारे मेहमान आए होंगे।
0: जी
1: अच्छा, और अगर हम ये पूछना चाहें कि आपको ईवी कितनी मिली? क्या
0: 3,000
1: बात है, मतलब आपको गान्या से भी 1,000 एक्स्ट्रा मिली है।
0: जी
1: चलिए अच्छी बात है, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिला और इतने लोग आपको प्यार करते हैं। बच्चों, अभी हम सुन रहे थे बच्चों की मीठी मीठी बातें और बच्चों की प्यारी प्यारी सी प्रस्तुतियां नन्हे बोल कार्यक्रम के अंतर्गत। और देखिए प्रीति, अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर हो चला है, पर जाने से पहले हम बच्चों से ये जरूर जानना चाहेंगे कि बच्चों आपको हमारा आज का कलियां कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। बच्चों, आप बताने के लिए हमें अपने लेटर्स भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, लेटर्स भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कलियां कार्यक्रम द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी रामपुर, पिन 2449-01।
2: इसी के साथ ही बच्चों, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है पत्र मिला airrampur@gmail.com।
1: तो बच्चों, अगले रविवार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपनी दीदी प्रियंका
2: और दीदी प्रीति
1: को दीजिए अनुमति और चलते हुए प्रेम से बोलिए
2: जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कनिया। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकननेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी

0: अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले दो दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरा दौर।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 50 के दशक के कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सुजाता।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दो बीघा ज़मीन।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नागिन।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। फिल्म का नाम है श्री 420।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है काला पानी।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरा दौर। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटरों पर हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होंगे, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव से ये सभा हमें समाप्त करने की आज्ञा दीजिए।
1: किशोरीली धड़कन, आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां 1 महीने में 1 बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो शुरू करते हैं आज का मनचाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी, पहले आप, पहले आप, पहले आप।

0: पहले आप घर से निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहती हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मनचाही गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
1: देसी
3: छोड़ दीजिए ना।
1: अरे अरे सुनो तो।
3: नहीं सुनती।
1: ओफो, अरे बात तो सुनो
3: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
1: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: जी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं, खुश नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी,
0: डेजी व्हाट इज दिस? क्या है?
1: बेनी की पैसे की
0: साड़ी। ओह डेजी।

0: मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार?
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंड़े जी,
0: जी
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसी फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे?
3: हाँ?
0: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
3: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
2: बट दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा, मैं चलता हूं। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी।
2: ओके,
0: अच्छा,
3: बाय डॉक्टर, बाय
2: बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
2: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
2: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त बाहर है। ये
2: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
2: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
2: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
2: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
2: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
2: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा ना?
0: बेनी को यहां क्यों घसीट लाया?
2: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में।

0: घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
0: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
0: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
0: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब याद नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष, बेनी मुझे क्षमा करना, बेनी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
2: ओह डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
2: नहीं।
1: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
2: लॉरेंस को? नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
2: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
2: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
1: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
2: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
2: क्या?
1: लेकिन वास्तव में डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
1: डॉक्टर मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
2: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है, बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
1: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
2: नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है,
1: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया।

0: और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आदम की और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
1: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस?
1: डॉक्टर रामदास,
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
1: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
1: जी,
2: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी की बातें कर रहे हैं।
2: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
3: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
2: नॉट ए मेयर डेथ, इट वॉज ए क्लियर मर्डर।
3: डॉक्टर, नो डॉक्टर,
2: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
3: नो नो, क्यों डॉक्टर?
2: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उड़ होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाथ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
3: डॉक्टर, डॉक्टर
2: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
3: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
2: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
3: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज यह सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
2: नहीं कहूंगा।
3: थैंक यू।
2: नहीं कहूंगा
3: डॉक्टर,
2: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर ऑरेंस, मैं अब चलता हूं।

0: क्या भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे डेजी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
1: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
0: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
0: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
1: लॉरेंस, तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
1: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
1: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ। डेजी सब भूल जाओ।
1: भुला दूंगी।
0: हाँ,
1: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के मैं रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उससे किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे। चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान
0: नहीं नहीं नहीं डेजी, सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रहे।
0: डेजी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: था। डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे अरे, ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है। डेजी डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ओह, ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए?

0: पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो, करो डॉक्टर। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। किन लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छा।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिली मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
2: जी। बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा जी।
3: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
2: जी,
3: रावल जी।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने। और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
2: जी।
3: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
2: अच्छा।
3: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
2: बन गए। थी कौन तो सी अब, सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्होंने
3: किया? कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
2: जी,
3: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
2: बिल्कुल।
3: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
2: जी, एक्टर
3: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
2: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
3: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
2: वाह क्या बात है,
3: हेमंत कुमार,
2: हेमंत कुमार की आवाज में।
3: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
2: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
3: हाँ
2: हाँ जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मित्तल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मित्तल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ।

0: तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
1: जी
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था,
1: हाँ
0: तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी
0: फ्रीडम। हाँ,
1: जी।
0: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: नहीं थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी, वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूं, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूं, तो मैं आग हूं, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूं और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूं कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूं, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूं,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे
0: तो
1: हाँ।
0: उन्होंने बोल दिया वहां पर, मैं शादी कर रहा हूं, हम लोग को कोई यहां पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान, उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए।

0: परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन
1: हाँ
0: था
1: वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक
1: उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह, उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है, तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है, वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा,
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ, और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए, तब वो आए थे मुंबई
0: जी। हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है, वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू
0: जी। क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था, जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
0: बहुत कुछ।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन
0: जी,
1: यही कविता है जो उन्होंने
0: लिखी,
1: उसी वक्त लिखी,
0: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा
1: हुआ
0: और वहाँ से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर

0: जाए।
1: हाँ
0: जी, तो मितुल जी आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: Durango, Durango, Durango, Durango.
1: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
2: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
1: जी।
2: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
1: जी।
2: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशन

0: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात
1: जी
0: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता
0: और
1: है।
0: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
1: जी
0: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
1: कश्ती
0: निकाल
1: निकाल
0: के,
1: के,
0: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
0: सही
1: ये
0: बात है।
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, ये इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी,
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल,
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल, वो
1: एक छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं, आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास।
1: हाँ,
0: आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगे?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।
2: पिंजरे के पंछी।

0: जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था शुरू से। प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत है जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब चा गाना आला साहेब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
0: हाँ।
1: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो,
0: हाँ।
1: मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: निभा के आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रिहाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे ना रे भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ लिखा है तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, शुभ संध्या। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप सुन रहे थे प्रसार भारती के प्रसारण। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम दोनों मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आज शाम।

आज शाम कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए शैसी आका का नमस्कार। तपती धूप, आम की मिठास, ठंडी शिकंजी और खुद को तरोताजा रखने के लिए मस्ती भरे दिन। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियाँ आते ही सबके चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है। ये छुट्टियाँ सिर्फ आराम का नाम नहीं, बल्कि नई यादें बनाने, परिवार के साथ समय बिताने और खुद को तरोताज़ा करने का खूबसूरत मौसम, खूबसूरत मौका होता है। आम, तरबूज और ठंडी हवा हर दिन लगता है नया नया। नानी के घर की मीठी बातें याद दिलाएं बचपन की रातें।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, बात हो रही थी गर्मियों की छुट्टियों की। धूप सुनहरी, मौसम प्यारा, छुट्टियों ने मन को सवारा। नए स्कूल की घंटी का शोर मस्ती करती हर एक भोर। जी हाँ श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होती। पूरा साल पढ़ाई और परीक्षाओं में व्यस्त रहने के बाद जब छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं तो मन खुशी से झूम उठता है। कोई अपनी दादी नानी के घर जाता है तो कोई खेल कूद में समय बिताता है। गर्मियों की छुट्टियां हमें ये भी सिखाती हैं कि आराम के साथ साथ हमें समय का उपयोग करना कितना ज़रूरी है। हमें नई नई चीज़ें सीखना, पेंटिंग, डांस, तैराकी, किताबें पढ़ना, छुट्टियों का हर दिन एंजॉय करना, हर दिन को ख़ास बनाएंगे, हंसी और खुशियों के साथ जीवन सजाएंगे। तो दोस्तों, हम इन छुट्टियों को सिर्फ मस्ती में नहीं बल्कि कुछ नया सीखने और अपनों के साथ खुशियाँ बांटने में बिताएंगे।

देसी गीत के साथ आज शाम कार्यक्रम समाप्त करने की शहजी आगा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कम्पेयर प्रोग्राम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या की 5:15 हो चुके हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और मैं हूं कशिका अग्रवाल। एक बार फिर से हाजिर है एक नए जोश, नई उमंग और ढेर सारी बातों के साथ। तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशियों से भरे और मुस्कान के साथ हमें सुन रहे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आप सबका बेसब्री से इंतजार था, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम आज के सवाल के साथ। हमारा सवाल है, नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में किस भारतीय टीम ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता?
1: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में किस भारतीय टीम ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता? इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पर और आज की अपडेट की गई पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने सही जवाब।
0: सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों का नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
1: श्रीन, कहा जाता है कि अच्छी बातें जीवन को संवारती हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे उसे कमजोर कर देती हैं।
0: बिल्कुल कशिका, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वे व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव डालती हैं।
1: सही कहा आपने। आज भी बहुत से लोग ये जानते हुए कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी इसका सेवन करते हैं।
0: और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तंबाकू में मौजूद निकोटिन व्यक्ति को इसकी लत लगा देती है, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता।
1: और इसके दुष्प्रभाव भी कम गंभीर नहीं है। तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
0: जी हाँ, इतना ही नहीं, इसके धुएं का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करते, जिसे निष्क्रिय धूम्रपान भी कहा जाता है।
1: और आजकल युवाओं में भी तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का चलन बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है।
0: बिल्कुल, कई बार जिज्ञासा, दोस्तों का दबाव या दिखावे की भावना युवाओं को इस ओर आकर्षित कर देती हैं, लेकिन ये छोटी सी शुरुआत आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है।
1: दोस्तों, इसलिए आवश्यक है कि युवाओं को सही समय पर सही जानकारी मिले और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने।
0: परिवार, विद्यालय और समाज भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जागरूकता ही इस समस्या से लड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
1: और जो लोग पहले से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन एक नई शुरुआत का अवसर हो सकता है।
0: बिल्कुल, एक दृढ़ संकल्प न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
1: श्रीन, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया गया हर कदम हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है।
0: बिल्कुल, तो आइए हम सभी अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, हमारी ये बातचीत तो यूं ही चलती रहेगी, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ,
4: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ,
4: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युवाणी में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: दोस्तों, आज का दिन समर्पित है भारत की एक ऐसी महान महिला शासक को जिनका नाम सुनते ही न्याय, सेवा और जन कल्याण की भावना मन में जाग उठती है। आज हम मना रहे हैं मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती।
4: दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ और उस समय समाज में महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी,
3: लेकिन अहिल्याबाई ने अपने साहस, बुद्धिमता और नेतृत्व क्षमता से इस सोच को बदल दिया। विवाह के बाद वह होलकर राजवंश से जुड़ी
4: और जीवन में कई व्यक्तिगत दुखों और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पति और पुत्र के निधन के बाद उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और एक आदर्श शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई।
3: दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर को आज भी उनके न्यायप्रिय शासन के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि उनके दरबार के द्वार आम जनता के लिए हमेशा खुले रहते थे
4: और वे स्वयं लोगों की समस्याएं सुनती थी और निष्पक्ष निर्णय देती थी। यही कारण है कि उन्हें लोकमाता की उपाधि से सम्मानित किया गया।
3: दोस्तों, अहिल्याबाई केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं थी, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म की भी महान संरक्षक थी।
4: उन्होंने पूरे भारत में अनेक मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और कुओं का निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है।
3: इसके अलावा सोमनाथ, उज्जैन, गया, द्वारका और अनेक तीर्थ स्थलों के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
4: और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे सत्ता को सेवा का माध्यम मानती थी। उन्होंने अपने राज्य में व्यापार, कृषि और जन कल्याण को बढ़ावा दिया, जिससे मालवा क्षेत्र समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा।
3: आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें ये संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और सेवा भावना के बल पर कोई भी व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
4: तो आइए उनकी जयंती पर हम भी ये संकल्प लें कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और समाज के विकास में अपना योगदान देंगे। साथियों, हमारा सेगमेंट कुछ खास है।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आज दिन है रविवार और रविवार को रहता है हमारा स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस, जिसका आज है एपिसोड नंबर 29। एपिसोड नंबर 29 में बढ़ने से पहले आपको बता दें एपिसोड नंबर 28 में पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब। तो हमारा पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया था, ये गीत जो आप सुन रहे हैं इसमें बताना है कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है। गीत के बोल हैं वो लड़की है कहाँ और सही जवाब है शान।
3: साथियों, अगला गीत आपने सुना था तुमसे ही, जिसमें आपसे पूछा गया था कि ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म के निर्देशक कौन है और जिसका सही जवाब है इम्तियाज अली।
2: दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा था ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। गीत के बोल हैं नाच मेरी जान और इसका सही जवाब है ट्यूबलाइट।
3: और इस सेगमेंट का अंतिम गीत था एक लड़की भीगी भागी सी, जिसमें आपसे पूछा गया था कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, जिसका सही जवाब है किशोर कुमार। और सही जवाब देने वाले श्रोता साथी के नाम है तनुजा जी, गंगा सिंह रावत, अमित झंगेल और एलेक्स गोयल। साथियों, शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 29 हमारे आज के पहले सब सेगमेंट सितारों की बात से।

0: दोस्तों अब समय हो गए हमारे खास सेगमेंट सितारों की बात का, और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिसने अपने पहले ही कदम से इंडस्ट्री में ऐसा प्रभाव छोड़ा कि लोग उन्हें आज भी प्यार से दबंग गर्ल के नाम से जानते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की, जिनका जन्मदिन हर वर्ष 2 जून को मनाया जाता है। दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को मुंबई में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व अभिनेत्री पूनम सिन्हा की बेटी हैं।
0: फिल्मी माहौल में पली बड़ी सोनाक्षी के लिए फिल्मों तक पहुंचना आसान लग सकता है, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के प्रतिष्ठित संस्थान से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की थी।
1: अभिनय में आने से पहले वे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रही थी और उन्हें फैशन तथा कला में काफी रुचि थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़की कुछ वर्षों बाद बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल होगी।
0: दोस्तों सोनाक्षी की फिल्मी यात्रा शुरू हुई साल 2010 में, जब उन्हें फिल्म दबंग में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला।
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
0: फिल्म में उन्होंने रज्जो का किरदार निभाया। उनकी सादगी, सहज अभिनय और स्क्रीन पर मौजूदगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया।
1: ये फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सोनाक्षी को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। लेकिन दोस्तों सफलता की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रही।
0: इसके बाद सोनाक्षी ने लगातार कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे अकीरा, रैम्बो राजकुमार, सनम सरदार और मिशन मंगल जैसी फिल्मों ने उन्हें व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेत्री बना दिया।
3: आप मुंबई की लगती नहीं।
4: जी नहीं, पटना से आए हैं।
3: पटना से यहाँ शॉपिंग के लिए आई हैं?
4: कजिन की शादी है।
3: वो स्टेशन के पास
4: मलाड में,
3: और लेन चर्च के आगे
4: इनोवेट मॉल के पीछे पारो।
1: दोस्तों सोनाक्षी हमेशा अपने आत्मविश्वास के लिए जानी जाती है। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें उनके बढ़ते वजन को लेकर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी नकारात्मक टिप्पणियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और अपने काम के जरिए लोगों को जवाब भी दिया। यही बात उन्हें आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक भी बनाती है।
0: दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोनाक्षी सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक अच्छी गायिका भी हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी अपनी आवाज दी है। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग और स्केचिंग का शौक है। जब भी उन्हें समय मिलता है वे अपनी रचनात्मकता को कला के माध्यम से व्यक्त करना पसंद करती हैं।
1: सोनाक्षी की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि वे हमेशा अपनी शर्तों पर जीती हैं। चाहे फैशन हो, करियर के चुनाव हो या फिर जीवन के फैसले, उन्होंने हर बार आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपनी बात रखी है।
0: तो दोस्तों 2 जून को जब सोनाक्षी सिन्हा अपना जन्मदिन मनाएंगी, तब हम भी उनकी सफलता, खुशियों और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी वे हमें अपने शानदार अभिनय और अनोखे अंदाज से मनोरंजन करती रहेंगी।
1: इसी के साथ आज के सितारों की बात सेगमेंट में बस इतना ही, और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सोनाक्षी सिन्हा के इस बेहद मशहूर गीत को सुनते हुए। पर उससे पहले आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है।

0: दोस्तों, ये जो गीत अभी आपने सुना, इसमें आपको हमें बताना होगा ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। और चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे हमारे अगले सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा के साथ। आज हमारे फिल्मी पिटारा से निकली है साल 2013 की एक बेहद खूबसूरत, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली फिल्म लुटेरा।
1: दोस्तों, अगर आपको कभी प्यार, बिछड़ने और माफी की कहानी को बेहद खूबसूरती से महसूस करना हो तो लुटेरा जरूर देखिए।
0: दोस्तों, कहानी हमें ले जाती है 1950 के दशक के भारत में। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे में रहती है एक जमींदार की बेटी पाखी, चंचल, जिंदा दिल और सपनों से भरी हुई। एक दिन वहाँ आता है एक युवा पुरातत्वविद वरुण श्रीवास्तव। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर प्यार।
1: और एक दृश्य में पाखी वरुण से कहती है कि आप हर चीज को इतना गौर से क्यों देखते हैं, और वरुण मुस्कुराते हुए जवाब देता है क्योंकि कुछ चीजें दोबारा देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही संवाद पूरी कहानी का सार बन जाएगा।
0: वरुण और पाखी का रिश्ता गहरा होता है, दोनों शादी के सपने देखने लगते हैं, लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है जब पता चलता है
1: कि वरुण वास्तव में एक पुरातत्वविद नहीं बल्कि एक ठग है जो अपने साथी के साथ लोगों को धोखा देता है, और एक रात वह पाखी और उसके पिता को छोड़कर भाग जाता है।
0: पाखी का दिल टूट जाता है। वक्त बीतता है, बीमारी और अकेलेपन में जूझ रही पाखी के जीवन में अचानक फिर से वरुण लौटता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं।
2: तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था वरुण?
3: किया था, बहुत किया था, अब भी करता हूँ। तुम इकलौता मौका था मेरी जिंदगी में जीने का जो मैंने गवा दिया। मेरी जिंदगी में सबने मेरा इस्तेमाल किया, प्यार सब तुमने किया।
0: वरुण एक भगौड़ा है, पुलिस उसके पीछे है और उसके पास अपने अतीत की गलतियों के अलावा कुछ नहीं।
1: और इसके बाद शुरू होती है पश्चाताप, माफी और सच्चे प्रेम की एक ऐसी कहानी जो दर्शकों की आंखें नम कर देती है, और इसके कुछ डायलॉग्स जो आज भी दिलों में जिंदा हैं।
4: मुझे बस पत्तियां बनाने नहीं आती, हमेशा गलत बनाती।
5: पत्तियां? पत्तियां बहुत आसान है,
4: दिखाइए।
5: देखो
0: दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। जैसे लुटेरा फेमस अमेरिकन ऑथर ओ हेनरी की मशहूर कहानी द लास्ट लीव से प्रेरित है। खासकर फिल्म का दूसरा भाग इस कहानी की झलक देता है। इस फिल्म का निर्देशन विक्रम आदित्य ने किया था।

0: जो अपनी संवेदनशील और कलात्मक निर्देशन के लिए जाने जाते हैं।
1: दोस्तों, सोनाक्षी और रणवीर सिंह की जोड़ी पहली बार नजर आई थी। दर्शकों को उनकी केमिस्ट्री बेहद पसंद आई। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के अभिनय को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जाता है। कई समीक्षकों ने माना कि पाखी का किरदार उनके अभिनय जीवन का टर्निंग पॉइंट था।
0: फिल्म के कई दृश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड की वास्तविक लोकेशंस पर शूट किए गए थे, जिससे फिल्म का वातावरण और भी वास्तविक और खूबसूरत बन गया।
1: दोस्तों, लुटेरा उन फिल्मों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि त्याग, पश्चाताप और माफी का भी नाम है।
0: तो अगर आपने अभी तक लुटेरा नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ आज का फिल्मी पिटारा यही बंद करते हैं और अब वक्त है फिल्म लुटेरा के एक बेहद खूबसूरत गीत का, और आपको इसमें बताना है कि ये गीत किस गायक कलाकार के द्वारा गाया गया है।

0: चलते हैं हमारे अगले सब सेगमेंट बॉक्स ऑफिस बस की ओर।
1: दोस्तों अब समय है हमारे आखिरी सब सेगमेंट बॉक्स ऑफिस बस का, जहां हम बात करते हैं आने वाली नई फिल्मों की जो जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। तो शुरुआत करते हैं 4 जून 2026 से, जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी माँ बहन। ये एक डार्क कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और रवि किशन। फिल्म का निर्देशन किया है सुरेश त्रिवेणी ने। कहानी कैसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी उस समय उलझ जाती है।

0: ठाकुर और पूजा हेगड़े। फिल्म का निर्देशन किया है डेविड धवन ने। हंसी मजाक, प्यार और पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को एक हल्का फुल्का सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है।
1: और दोस्तों, इसी दिन यानी 5 जून को सिनेमा घरों में आएगी बंदर। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बॉबी देओल। उनके साथ नजर आएंगी सानिया मल्होत्रा और सबा आजाद। फिल्म का निर्देशन किया है अनुराग कश्यप ने। कहानी एक ऐसे टीवी स्टार की है जिसकी जिंदगी गंभीर आरोपों के बाद अचानक बदल जाती है। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकती है।
0: अब बात करते हैं 11 जून 2026 की, जब रिलीज होगी गवर्नर द साइलेंट सेवियर। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी और अदा शर्मा। फिल्म सत्ता, प्रशासन और महत्वपूर्ण निर्णयों के पीछे छिपी कहानियों को सामने लाने का प्रयास करती है। गंभीर विषय और दमदार अभिनय इस फिल्म की खासियत हो सकते हैं।
1: और दोस्तों, इसी दिन यानी 11 जून पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी तीर सारा और पौंडीचेरी। ये एक हल्की फुल्की ड्रामा और एडवेंचर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी पत्रलेखा, मानवी गगरू और श्वेता सालवे। एक यादगार रोड ट्रिप और जीवन के नए अनुभवों पर आधारित ये फिल्म दोस्ती, सफर और आत्म खोज की कहानी कहती है।
0: दोस्तों, अब आते हैं 12 जून 2026 पर, जब रिलीज होगी बहु प्रतीक्षित फिल्म मैं वापस आऊंगा। ये एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह। फिल्म का निर्देशन किया है इम्तियाज अली ने। भावनाओं, संगीत और रिश्तों की खूबसूरत कहानी से सजी ये फिल्म दर्शकों के दिलों को छूने का प्रयास करेगी।
1: और आखिर में बात करते हैं भारत भाग्य विधाता की, जो 12 जून को ही रिलीज होगी। ये एक राजनीतिक ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं कंगना रनौत। उनके साथ दिखाई देंगी गिरिजा ओक और स्मिता तांबे। फिल्म आम नागरिक की शक्ति और लोकतंत्र में उसकी भूमिका को केंद्र में रखती है। राजनीतिक घटनाक्रम और रोमांच से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को एक अलग अनुभव देने के लिए तैयार है।
0: तो दोस्तों, ये थी आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली कुछ चर्चित फिल्में। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस बज में आज बस इतना ही। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत, और इसमें आपको बताना होगा ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है।

0: दोस्तों, ये गीत जो आपने सुना, इसमें आपको बताना है ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। और अब वक्त है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। दोस्तों, हमारा सवाल था, नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में किस भारतीय टीम ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता? और इसका सही जवाब है फोटोनिक्स ओडेसी। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी।
1: और उन सभी श्रोता साथियों के नाम है सुदर्शन शाह, जॉन डी कैस्ट्रो, आकाश रस्तोगी, दिनेश वर्मा, बजेंद्र विश्वकर्मा, अजीत कसाना, मोहम्मद रफीक पवार, धर्मेंद्र छिपा, प्रवीण चौहान, नानक खन्ना, चौधरी राजवीर सिंह, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजवीर सिंह यादव, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, हीरामणि वर्मा, अरविंद कुमार, सुरेश खुराना, जयपाल यादव, विजय सुरलकर, शाहजी बोटके, सुरेश जायसवाल, मोहम्मद सईद अब्बासी, लाल मोहम्मद अंसारी, मुजफ्फर अली खान, मसरूर हसन, जाकिर मंसूरी, गजानन येले, कमल सिंह, शारून नूर अंसारी, सुनील पाठक, जगदीश धाकड़, नजमूल होडा, फागुराम यादव, यासीन अंजन, राष्ट्रपाल गजबैये, रवि कुमार, बीएल धाकड़, नवी हसन अब्बासी, राधेश्याम पांडे, गुरमीत सिंह मीता, विनोद मुनत, सुरेश गगनेजा, मिसबा शमसी, मोहम्मद फरमान, हाजी गफ्फार खान, देवशंकर तामुरिया, अनोखे लाल, विठल सुरोशे, मोहम्मद जाहिद अली, गंगा सिंह रावत, निसार सलमानी, रामशरण, भगवत चौबे लाडला जी, विजय सिंह, भाई रफत साहब, मुकेश कश्यप, लालगिरी गोस्वामी और संजय ढींगिया।
0: दोस्तों, आप सभी ने दिए हैं इस सवाल के सही जवाब। चलिए सुनवाते हैं आपको आज के सेगमेंट्स का ये आखिरी गीत, जिसमें आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और वो कब रिलीज हुई थी।
2: इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है।

0: और साथियों इस गीत से जुड़ा हमारा सवाल है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और वो कब रिलीज हुई थी। साथियों ये था हमारा सेगमेंट सिने एक्सप्रेस और अभी जो हमने आपको ये गीत सुनवाए हैं इनके सही जवाब आपको हमें बताने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। तो साथियों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाई अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। पिन कोड संख्या है 244901। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। इसी के साथ मैं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
0: और मैं कशिका अग्रवाल
1: को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
4: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
4: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
3: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प भराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं आप सूचना। थाना प्रभारी जनपद संबल से हमें सूचित करते हैं कि गुमशुदा मरियम पुत्री श्री सरफराज निवासी ढेड़दरीबा संबल की निवासी हैं, जो 5 मई 2026 से लापता हैं, जिनका रंग गोरा है, ऊंचाई लगभग 5 फीट, बालों का रंग काला है, उम्र 19 साल है, मेहंदी रंग का सूट पहने हुए हैं जिस पर पीले रंग के फूल पड़े हुए हैं। जिस किसी को इनके बारे में भी कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। सरफराज पुत्र मकसूद निवासी ठेर दरीबा कोतवाली संबल जिला संबल, मोबाइल नंबर है 9917131044। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9917131044। सूचना समाप्त हुई।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ओम शांति ओम, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आपके लिए लेकर आए हैं उदित नारायण और शान की आवाज में।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हो चुके हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान साथियों को आपके भैया जसमिंदर
1: और आपकी बहन ममता की राम
0: राम राम।
1: राम।
0: ममता बहन कैसी हैं आप?
1: हम भैया अच्छे से हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे भैया बहन भी अच्छी तरह से होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरे पूरे जागरूक होंगे।
0: बिल्कुल ममता बहन, देखो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए हमें कई बातों को ध्यान रखने पड़ेगा।
1: हाँ भैया।
0: जैसे हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, और आपने देखी हुई ना, धूम्रपान जो है वो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है।
1: बिल्कुल भैया, देखी जाए जो धूम्रपान है वो हमारे भैया बहन करते हैं लेकिन उससे बहुत नुकसान है।
0: और ममता बहन देखो, बाई उपलक्ष में हम आपको बता दें कि आज है 31 मई, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जसविंदर भैया, और आज को दिन बहुत खास है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक ऐसा भयावह संकट है, याद दिला उनको समय है जो सालाना 80 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेते हैं।
0: बिल्कुल, विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान ही ना है ममता बहन,
1: हाँ भैया,
0: बल्कि जा बात की याद दिलाता है कि तंबाकू को सेवन आज भी दुनिया भर में मृत्यु के सबसे रोके जा सकने वाले कारणों में से एक है।
1: बिल्कुल भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और तंबाकू के सेवन से कम बात करी जाए 15 प्रकार के जो कैंसर हैं, हृदय रोग और विभिन्न फेफड़ों की बीमारियों को खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने ममता बहन। तंबाकू को सेवन कई तरीकों से करो जाता है, जैसे सिगरेट पीनो हेगो, तंबाकू चबानो हेगो, लोग हुक्का और सिगार को प्रयोग करते हैं। और एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, सिगरेट पीनो तंबाकू के सेवन को सबसे आसान तरीका है।
1: बिल्कुल भैया, और हम देख रहे हैं भैया आज ये जो सिगरेट पीने को तरीका है वो बच्चा शौक शौक में पी रहे हैं।
0: लेकिन देखो ममता बहन, शौक चाहे कोई करें लेकिन ऐसे शौक ना करें जो आपकी मृत्यु के कारण बने आगे चल के।
1: और दुनिया भर के 12% धूम्रपान करने वाले लोग जो हैं वे हर साल 10 लाख से अधिक लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं भैया।
0: बिल्कुल सही बात कही। तो ममता बहन, हम अपने किसान साथियों से तो यह कहेंगे कि देखो, एक तो आपकी पैसा की बचत होगी अगर तंबाकू से बचेंगे, और कई और बचते हैं वे भी आपके लिए हो सकती हैं। जैसे देखो ममता बहन, आपने देखी हुई कि धूम्रपान करण के तरीका तो बहुत हैं लेकिन उनसे बचन के तरीका बहुत कम है।
1: कि तलब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके भी उपाय करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, जैसे मान लो अगर आप जो लोग कर रहे हैं पहले से, निकोटीन प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी जगह पर आप कुछ अन्य उपकरण भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे च्युइंगम हो गई, या फिर बिना चीनी वाली जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके भी आप जो तंबाकू है ना, बासा बचन को काम कर सकते हैं। जाके अलावा विश्राम कर सकते हैं, या फिर व्यायाम जो साधारण होते हैं उनको भी कर सकते हैं।
1: हाँ, जसबंदर भैया, तंबाकू की जो तलब है उस पर काबू पाने के लिए खुद को इधर उधर अपना मन है उसको विचलित करना है और धूम्रपान युक्त क्षेत्र से दूर हट जाना है। जहाँ पे कोई
0: बिल्कुल
1: कर रहा हो देख के ज्यादा लत होता है, इसलिए उससे दूर हट जाएं।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने ममता बहन। तो इस तरीका के काम अगर हमारे किसान साथी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जो धूम्रपान है बासा बचन को काम करेंगे। और आपने देखी हुई ना, कई प्रकार की और चीजें जो हैं वो धूम्रपान से प्रभावित होती है, जैसे हमारा पर्यावरण है।
1: बिल्कुल भैया, स्वास्थ्य तो होता है साथ ही हमारा पर्यावरण भी होता है और स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी संबंध गहरा है।
0: बिल्कुल, विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो हर साल तंबाकू की खेती के लिए लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है।
1: और बात करें, हर साल लगभग 45 लाख करोड़ सिगरेट के जो टुकड़ा है वे ठीक से ना फेंके जाते हैं, हमारे भैया बहन इधर उधर फेंक देते हैं,
0: बिल्कुल
1: उससे काफी प्रदूषण फैलता है और वो स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा होता है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। प्रतिवर्ष 80 करोड़ किलोग्राम विषैलो अवशिष्ट उत्पन्न होता है तंबाकू के सेवन से, और हजारों रसायन जो है वो हवा में, पानी में और मिट्टी में छूट जाते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए तो दूषित करते ही हैं, साथ में हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो तो ही कुछ बात धूम्रपान निषेध की ममता बहन, और हम अपने किसान साथियों के लिए बता दें, देखो जब बात नुकसान की चल रही है तो हमारे जो किसान साथी हैं वो रासायनिक दवाओं को, रासायनिक खादन को प्रयोग इतना अंधाधुंध कर रहे हैं कि बासा जो हमारी मिट्टी है ना, उसको भी स्वास्थ्य खराब ही रहो है वो।
1: हाँ भैया, मिट्टी को स्वास्थ्य खराब हो रहा हुआ है, साथ ही जो हम उससे उपज लेते हैं अन्न की वो हम अपने उपयोग में लाते हैं खान के लिए, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ रहा हुआ है।
0: आपने देखी हुई कि आज हर घर में किसी को टीबी है, किसी को रक्तचाप की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर किसी को शुगर की बीमारी है। कई सारी ऐसी अवांछित बीमारियां हैं जो हम ना चाहें कभी अपने घर ले रहे हैं, और बाकी कारण सिर्फ यह है कि हम अत्यधिक रसायन को प्रयोग कर रहे हैं।
1: तो भैया आज इसी से संबंधित हमारे कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता है, बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें, इसका उपयोग और इसका महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रणवीर सिंह और आपसे जानकारी जुटा रहे हैं हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा।
0: तो आप ममता बहन सुनते हैं जय जानकारी।
2: किसान साथियों, हम सभी लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और इस उद्देश्य से कि अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन की बात करें तो उसमें लागत लगानी पड़ती है, कई और चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता अपने खेतों में बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक पर निर्भर रहना पड़ता है, खाद पर निर्भर रहना पड़ता है। गोबर की खाद की कमी दिनों दिन होती जा रही है, ऐसे में वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा उत्पाद है जिसकी आवश्यकता बहुत हो रही है और यही एक इसका उपाय है जिससे हम अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि ये नए जमाने की खाद है, क्या इससे फायदे हैं, कैसे इसे तैयार कर सकते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रणवीर सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, वर्मी कंपोस्ट सभी किसान परिचित हो चुके हैं लेकिन अभी इसका पूरी तरह से उपयोग हमारे किसान नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है और इससे क्या फायदे हैं?
3: देखिए, हरित क्रांति के बाद हमारे देश में किसानों ने रासायनिक खादों का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से करना शुरू कर दिया था। उसमें अधिकांश रूप से किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का ही प्रयोग करते थे, लेकिन पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसमें से 14-15 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। किसान केवल 3 ही पोषक तत्व लगाता है, जबकि प्रत्येक पोषक तत्व का उतना ही महत्व है जितना के सूक्ष्म वाले पोषक तत्वों का है। इस वजह से किसान भाइयों को जो उनके पशुशाला पे, उनके खेतों में जो फसलों के अवशेष हैं, जो भी जैविक कचरा उनके पास स्वयं फार्म पर पैदा होता है, उसका उनको जैविक खाद बनाना अत्यंत आवश्यक है
2: जी।
3: क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो हजारों वर्षों में जो जमीन की उर्वरा थी वो धीरे धीरे बार बार फसल लेने से किसान मात्र जो है 3 ही खादों का प्रयोग कर रहा है, रासायनिक खादों से जो देता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे पशुओं की संख्या भी बहुत तेजी से हमारी कम हो रही है। बैलों का उपयोग तो बहुत ही कम हो गया है, जहां पर हमारे कृषि के जितने भी सस्य क्रियाएं थी बैलों के द्वारा होती थी, अब उनसे भी हमारा जो गोबर पैदा होता था उसकी भी संख्या कम हो गई है। तो यहां पर किसान भाइयों को देखना होगा हम लोग जैविक खाद बनाएं जो कम अवधि में बन जाए, उसकी पोषक तत्व की वैल्यू है वो दूसरे जो पारंपरिक तरीके से जो जैविक खाद बनाते थे उससे अधिक हो। तो ऐसा ही एक हमारा जो तरीका है जो जैविक खाद बनाने का, वो वर्मी कंपोस्ट है। इसमें एक तो मात्र 60 दिन के अंदर जैविक कचरे से जैविक खाद बन जाता है और आप पारंपरागत तरीके से खाद बनाएंगे जैविक कचरे से उसमें 8-10 महीने लगते हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे आसपास देखेंगे कि जैविक कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो वो एक परंपरागत तरीके से खाद बनाने का तरीका है। बहुत ही बड़े लेवल पर उसका किसानों को भी नुकसान है और वातावरण की सुरक्षा के लिए भी नुकसान है। उससे कई तरह की बीमारियां भी वहां के पशुओं में और वहां की मनुष्यों में फैलती हैं और इसका सबसे अच्छा निराकरण है कि हमको जो भी जैविक कचरा है उसका तुरंत हम लोग जैविक केंचुआ खाद बनाएं।
2: डॉक्टर साहब, पहले गोबर की खाद बनती थी, आज वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात चल रही है, दोनों में क्या अंतर है? क्या वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है या सही तरीके से उसका उपयोग होता है जिस वजह से गोबर की खाद की अपेक्षा ये ज्यादा फायदेमंद है?
3: जो वर्मी कंपोस्ट है इसको बनाने के लिए वो जो मुख्य है केंचुआ की प्रजाति, हमारे संस्थान ने जयगोपाल केंचुआ प्रजाति का लंबे समय तक शोध करने के बाद में यह भारतीय केंचुआ की प्रजाति विकसित की है। तो सबसे पहले तो आज के समय में कितनी तेजी से वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है, मेरे जो संस्थान से जयगोपाल वर्मी कल्चर तकनीकी जो ले गए हैं उस बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये जो केंचुआ हमने विकसित किया इसकी विशेषता है कि अधिक से अधिक तापक्रम पर ये सर्वाइव करता है और वहां पर जैविक कचरे से बहुत अच्छा खाद बनाता है। बुंदेलखंड में इसका बहुत ही प्रचार प्रसार है और रोहिलखंड में भी हमारी जो तकनीकी है, जो हमारे संस्थान ने जय गोपाल वर्मी कल्चर तकनीक बनाई है, उसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है केंचुआ जैविक खाद की और परंपरागत तरीके से जो खादों का अंतर बताते हैं। एक तो देखिए जो गोबर की खाद है उसमें नाइट्रोजन 0.5% होता है, उसमें फास्फोरस 0.5% होता है, उसमें पोटास भी 0.5% होता है और उसमें जो है जो लाभदायक जो सूक्ष्म जीवी है जो हमारी भूमि के लिए जरूरत पड़ती है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, तो वो भी उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि वर्मी कंपोस्ट में एक तो सूक्ष्म जीवियों का जो केंचुआ है जय गोपाल जो है उसके घट में जितने भी सूक्ष्म जीवी हमारे भूमि के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जो होते हैं उसकी घट से वर्मी कास्ट में आ जाते हैं। दूसरा इसका जो नाइट्रोजन है जो गोबर की खाद से 3 से 4 गुना ज्यादा होती है, फास्फोरस हमारी 2 से 2.5 गुना ज्यादा होती है और अन्य जैसे हमारे पोषक तत्व हैं, कैल्शियम है, हमारा जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जस्ता है और ये हमारा मोल्डबिडिनम है, सल्फर है और ये जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी हमारे उसमें अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, पौधे जो है उसको तुरंत अवशोषित कर सकते हैं
2: जी।
3: उस तरह से केंचुआ का ये खाद है, ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है, तो इस तरह से किसान भाइयों को एक मात्र 60 दिन में बन जाता है इसकी गोबर खाद से और इसमें ये है उसको जो है 8-10 महीने
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल लगते हैं,
2: उसमें तो समय लगता है
3: जी, जी।
2: साहब यदि कोई किसान इसकी शुरुआत करना चाहे कि अब हम वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना समय लगेगा, कितनी जगह होनी चाहिए, कितना गोबर होना चाहिए और कितना गोबर के साथ साथ आपने बताया जो और वेस्ट मटेरियल होता है वो किस प्रकार से शुरुआत करें।
3: मैं तो सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में अगली पीढ़ी के लिए खाद्य समस्या की समाधान के लिए और अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए टिकाऊ खेती के लिए सभी को जैविक कचरे से जैविक खाद बनाना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों को इसके खाद बनाने के लिए कोई सामान खरीद के बाहर से तो लाना ही नहीं पड़ता है, हमारे देश के प्रत्येक गांव में प्रत्येक किसान के यहाँ पे गोबर की उपलब्धता है, जैविक कचरे की उपलब्धता है, फसलों के अवशेष हैं, तो उनको ऐसे जगह पर हम लोगों को जैविक कचरे को एकत्रित करना चाहिए जहां पर पानी नहीं भरता हो, जो पशुशाला के पास में हो, जहां पर पानी का साधन हो, जो जहां पर जैविक कचरा ले जाने के लिए रास्ता सही हो और जो अपने रहने के आवास से दूर हो, और इस तरह से वहां पर बायोगैस भी लगाई जा सकती है, कंपोस्ट भी बना सकते हैं हम, जो बायोगैस से भी जो सैलरी निकलती है उससे भी हम केंचुआ जैविक खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। इस समय जो है आप देख रहे होंगे गोबर से जो है ग्रीन हमारी जो है एनर्जी बनाने का एक पूरे देश में अभियान चल रहा है, गोबर से हम जो है बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस से सीएनजी बनाते हैं, सीएनजी बनाने के बाद में फिर हम लोग उसको जो है बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके सूक्ष्म जीवियों की पहचान करने ली गई है, जबकि जयगोपाल हमारे जो केंचुआ की प्रजाति है उसके घट में सभी सूक्ष्म जीवी जो लाभदायक हैं वो सब उपलब्ध रहते हैं। जब वो वर्मी कंपोस्ट बनाता है तो सभी उसमें जैसे फॉस्फोरस मोबिलाइजेशन वाला बैक्टीरिया है, सल्फर मोबिलाइजेशन वाला बैक्टीरिया है, ये जितने भी हमारे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उसमें रहते हैं, उससे क्या है किसान को लाभ रहता है। और एक सबसे बड़ी चीज है मैं आपको बताऊं, जब ये केंचुआ जैविक खाद पूरे खेत में छिड़कते हैं तो उस समय नीचे जो मिट्टी खाने वाले जो केंचुआ हैं, जो जमीन के नीचे चले गए हैं रासायनिक खादों की वजह से, कीटनाशकों को ज्यादा छिड़काव की वजह से, उनको जब ऊपर ये सुगंध आती है, उनके अंदर सेंसर होते हैं, उनको पता लग जाता है ऊपर कुछ खाने के लिए चीज है, तो नीचे जो पड़े वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखेंगे वर्षा के दिनों में केंचुआ नीचे से निकल के ऊपर आएगा, एक कैपिलरी सिस्टम बना लेगा और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाएगा और ऊपर के ह्यूमस को नीचे ले जाएगा। इस तरह से उर्वरा शक्ति खेत की बढ़ती है और जैसे वर्षा होती है तो वो पूरा का पूरा खेत का पानी हर खेत में रह जाता है, हार्वेस्टिंग का भी, पानी को संचयन करने का भी केंचुआ का बहुत बड़ा महत्व। तो गाय और केंचुआ को हमारी जो वर्तमान कृषि है या भविष्य की भी कृषि है इससे अलग करना बहुत मुश्किल है। डार्विन ने भी कहा है कि सबसे अधिक यदि किसी का इस खंड में सबसे बड़ा योगदान है तो वह केंचुआ का है जिसने इतनी अच्छी भूमि बनाई है और जो इतना सारा जैविक कचरा है उसको दो तरह के केंचुआ होते हैं, एक तो मिट्टी खाने वाला है, एक जो है जैविक कचरा खाने वाला है। तो हमारे संस्थान ने

0: बर्मी टैंक की आवश्यकता के अनुसार किसान भाई अपना रख सकते हैं। इस बात का किसानों को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये केंचुआ का खाद बनाना एक एरोबिक टेक्नोलॉजी है, इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें जो मुख्य जो कारक है जो खाद बनाने में, देखिए सबसे महत्व है आपने केंचुआ की प्रजाति का चयन, उसमें किसान भाइयों को भारतीय केंचुआ की प्रजाति जो अधिक तापक्रम पर जो अधिक बच्चे देती हो, जिसका खाद सर्वश्रेष्ठ हो, जो विदेशी जो हमारे केंचुआ की प्रजाति है आइसिना फेटिडा यूडुलस यूजिनी, इनके जो केंचुआ का खाद बनता है उनसे सर्वश्रेष्ठ है जयगोपाल केंचुआ की प्रजाति का है। ये हमारे संस्थान से किसान भाई वहां से ये प्राप्त कर सकते हैं, तकनीकी भी ले सकते हैं उद्यम लगाने के लिए और वर्मी कल्चर भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: देख साहब, यदि कोई किसान या फिर युवा जो गांव में रहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट से बनाने के लिए क्या कोई प्रशिक्षण भी आपके यहाँ दिया जाता है ताकि वो सही तरीके से सीख सके और किस तरीके से उसकी बेड बनानी है, कितना समय लगेगा, ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं संस्थान में?
0: जी, हम लोग किसान भाइयों को, ऐसे युवाओं को जो उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जयगोपाल वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी, मतलब स्वयं अपने हाथ से केंचुआ का खाद कैसे बनाएं, इसका हम जो है प्रशिक्षण देते हैं। उनको थ्योरी की क्लासेस भी देते हैं और उनको हम लोग प्रयोग करा के ये खाद का पूरा प्रदर्शन देते हैं, कैसे बनाएंगे, किस तरह की केंचुआ की प्रजातियां होती हैं, किस तरह का बर्मी टैंक का डिजाइन बनाएं, किस तरह से उसमें पानी लगाएं, कैसे हार्वेस्ट करें और किस तरह के जैविक कचराओं का खाद बना सकते हैं, उसकी क्या क्या स्टेप हैं। जैसे मतलब जो है सबसे पहले जैविक कचरा एकत्र करेंगे, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसमें से जो भी पहले है उसमें से जैसे कचरा दूसरा है, प्लास्टिक है, कंकड़ है, पत्थर है, इन सब चीज को हम बाहर अलग कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें हम लोग पानी जो कद कम है उसमें पानी का छिड़काव करेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसोर्टियम है जो जयगोपाल वर्मी कल्चर से मिलता है, जो जयगोपाल केंचुआ की गट में होता है, उसकी पेशड़ी में होता है, तो वहां से उसको बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से इसकी पद्धति है। जाड़ों के मौसम में अलग तरीके से बने जाने का तरीका है, गर्मी के मौसम में अलग तरीका है। जैसे ही नवंबर आता है तो तापक्रम कम होना शुरू हो जाता है, उस समय क्या है बर्मी बेड का उपयुक्त तापक्रम वो जैसे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है। यदि इससे कम होता है तो केंचुआ का खाद का उत्पादन कम हो जाता है और केंचुओं की जो प्रजनन है वो कम होना शुरू हो जाता है। जो किसान भाई हैं या जो इस क्षेत्र में उद्यम लगाना चाहते हैं, एक एक पहलू का बताते हैं और उनको स्वयं जो है अपने हाथ से करके दिखाते हैं, जिससे क्या है कि उनका ये जो उद्यम है सफल हो और वह रोजगार ले सके। आज इसकी आवश्यकता है, देखिए इसमें एक तो बिजली की जरूरत नहीं होती, कोई बिजली की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, खाली उस समय पानी यदि सबमर्सिबल पंप है उसको पानी नीचे से निकालने के लिए जरूरत होती है, बाकी इसमें कोई ऐसी मशीनरी नहीं होती है। जयगोपाल केंचुआ का जो खाद बनाता है उसको तो छानने की भी जरूरत नहीं होती, उसका इतना छोटे छोटे जो बर्मी कास्ट होता है, दूसरे आइसिना फेटिडा और दूसरे जो विदेशी केंचुआ है हमारा यूटिलस यूजिनी, उसमें छानने की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं जरूरत पड़ती है। कई विभाग मतलब जो है उसमें सभी उनके वैज्ञानिक ये सब मिलकर के हमने एक शोध कार्यक्रम चला करके तभी हम लोगों ने संस्तुति किया है कि इसका जो केंचुआ जैविक खाद है जयगोपाल से निर्मित, ये सबसे अन्य जो केंचुआ की प्रजाति प्रचलित थी और उनसे श्रेष्ठ है। इसी वजह से हम कहते हैं कि केवल अब किसान भाइयों को जय गोपाल जो भारतीय केंचुआ की प्रजाति है उसी को वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग करना चाहिए, दूसरों को नहीं करना चाहिए। अब वो यदि चाहते हैं, यदि पहले से कर रहे हैं तो अपने स्वयं वहां पर एक बार करके देख लें, जब उनको सुनिश्चित हो जाए कि ये केंचुआ का प्रजाति अच्छी है तो उसी को बढ़ाएं, उसको छोड़ दें। हर तरह से ये बढ़िया है, उसमें केंचुआ का तरल खाद भी बनाने में, सूक्ष्म जीवी और इनके जो है सभी के जो दूसरी वाली प्रजातियों से श्रेष्ठ है, इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होती है। तो इस तरह से देखिए, कहते हैं ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कचरे से कंचन बनाओ, तो कचरे से कंचन बनाने का ये अपने यहाँ पर ही कोई बिजली की जरूरत नहीं, बस एक प्रशिक्षण की जरूरत है।
1: जी जी, बहुत अच्छी और विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर रणवीर सिंह जी ने कि किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम नए जमाने की खाद कह सकते हैं, कैसे किसान इससे जुड़ सकता है, उत्पादन कर सकता है और उसका रोजगार भी आगे बढ़ा सकता है, साथ ही साथ जो नए मॉडल तैयार

0: किए गए हैं उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद का यह सौदा है और अपने खेतों की उपज बढ़ाएं, साथ ही साथ स्वरोजगार भी स्थापित करें। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: अभी हमारे भैया बहनों ने बर्मी कम्पोस्ट कैसे तैयार करें, इसको उपयोग और महत्व, इस विषय पर भेंट वार्ता सुनी डॉक्टर रणवीर सिंह से। जानकारी जुटा रहे थे हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा।
2: बिल्कुल ममता बहन, जानकारी सुनकर हमारे जो किसान साथी हैं लाभान्वित जरूर भाई होंगे। और अब कार्यक्रम में समय है गीत संगीत को, तो अब अपने किसान साथियों के लिए सुनवाते हैं एक लोकगीत।

0: भैया बहनों, अभी आपने पुदीना हरा दे जाना सोनिका व अमित की आवाज में लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है आपको पसंद आओ होएगो। और अब जसविंदर भैया, समय हो चलो है क्षेत्र संकलित कार्यक्रम को।
1: तो ममता बहन, आप क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत कहाँ पहुंची और किस सफल कृषक से भेंट करी, वो अपने किसान साथियों के लिए सुनवाई दें।
2: भैया जी, आज हमारी आपसे बातचीत हो रही है क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आपको परिचय। भैया,
3: मेरा नाम प्रेम सिंह है
2: जी। ये कौन सा गांव है?
3: ग्राम खुर्शीद नगर
2: जी,
3: ब्लॉक सैद नगर,
2: जनपद रामपुर का गांव है।
3: हाँ, जनपद रामपुर का
2: जी। भैया, तो आप क्या खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं?
3: जी।
2: तो इस समय आपकी खेती में कौन से ऐसे काम है जो कर रहे हैं?
3: इस समय तो जुताई उताई हो गई है, पौध की तैयारी चल रही है, गेहूँ खाली हुए हैं, उसके बाद जो है गर्मी की जुताई की है
2: जी। तो इस जुताई के करने से क्या फायदा है इस समय?
3: जुताई से ये फायदा है कि गहरी जो जुड़ जाती है, जो पीट है, जो लू चलती है, वो खत्म हो जाती है, मर जाती है
2: जी। यानी फायदा है इस जुताई?
3: हाँ, फायदा है, मतलब खेतों को जुते हुए लू लग जाती है तो जल्दी रोग नहीं लगता है फसल को।
2: और भी अभी आप ये पौध डालने वाली बात कर रहे हैं, तो अभी कब तक पौध डालेंगे आप?
3: पौध डालेंगे अभी 1-2 तारीख में।
2: तो भैया, आप नर्सरी डालने की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं अपनी खेत की?
3: नर्सरी देखिए, पहले तो खेत अब जुती गया है, उसमें क्यारी बनाएंगे, छोटी छोटी क्यारी बनाएंगे, पानी भरेंगे, कदर मारेंगे, और उससे पहले पौध तैयार करनी पड़ती है। पौध को पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद वो उसको डब्बा लगा के उसको जो जमानी पड़ती है, उसके बाद वो कैरी जाती है
2: जी। तो भैया, इसमें आप गोबर की खाद वगैरह भी डालते हैं?
3: हाँ, गोबर की खाद भी डालती हूँ।
2: उससे फायदा मिल रहा है आपकी फसल को?
3: हाँ, ये फायदा है कि जो उसकी जो पौध होती है वो उखड़ने में फायदा होती है, उखड़ती सही है।
2: वो ये पौध डालने की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा लगाना चाह रहे हैं आप इसमें धान?
3: इसमें धान तो हम तो 26-26 लगाते हैं।
2: अच्छा, इसकी पैदावार कैसी रहती है भैया?
3: पैदावार सही रहती है, अगर सही है, मौसम सही है, गर्मी पड़ती है तो 5 क्विंटल का बीजे में निकल जाता है, मतलब 40 क्विंटल हेकड़ का, और कम भी बैठ जाता है, 3-8-24 क्विंटल हेकड़ का भी बैठ जाता है।
2: बीज भी अच्छा हो तब जाके पैदावार मिलती है, इसका चयन कहाँ से करते हैं?
3: बीज तो हम वही दुकानों से ले लेते हैं, जो सही दुकान है रिटेल की, वहीं से ले जाते हैं।
2: अच्छा भैया, कभी कभी हमारे किसान भाइयों को दिक्कत आती है कि बीज ले आए, उसका जो है जमाव, उसमें दिक्कत आती है पैदावार?
3: देखिए, इसमें 2 कारण हैं। एक तो कारण है, अगर बीज डाल दिया है जमीन के हिसाब से कम पड़ा है और लू चल रही है, तो उसमें जमौनिया कम होती है, लू में
2: जी
3: गर्मी में कम जमता है,
2: उस समय कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं जिससे जमाव अच्छा हो।
3: ध्यान रखनी पड़ती, ध्यान ये रखनी पड़ती है कि उसमें जो बीज है तो बीज ज्यादा ही पड़ना चाहिए गर्मी के हिसाब से। अगर मौसम सही है, ठंडा है, तो बीज सब जम जाता है, तो वो काफी हो जाती है, और मौसम गर्म है, लू चल रही है, तो बीज कम जमता है, क्योंकि नमी कम रहती है, जल्दी पानी सूख जाता है।
2: तो भैया, अभी आप 2 जून तक डालेंगे, तब तक आप खेत की तैयारी उसकी कर रहे हैं?
3: हाँ।
2: अभी जो और खाली खेत है, जब उसके बाद आप धान की रोपाई करेंगे, उसमें कोई हरी खाद वगैरह भी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं?
3: हाँ, हरी खाद भी तैयारी होती है, जैसे सब खाली जमीन है
2: जी,
3: उसको हम जैसे ढेंचा बो देते हैं तो वो 3-4 फीट जम जाता है, उसको उसी में जितवा देती है, फिर वो हरी खाद बन जाती है।
2: 3-4 फीट की कितने दिन में हो जाती है ढेंचा की फसल?
3: वो हो जाती है 1.5-2 महीने में हो जाती है तैयार।
2: यानी जब तक धान की रोपाई होती है तब तक आप खाद तैयार हो जाती है आपके खेत में?
3: हाँ हाँ हाँ।
2: तो उससे आपके धान की फसल पे असर पड़ता है कुछ?
3: हाँ, सही रहती है।
2: ये खेतीबाड़ी तो कर ही रहे हैं, साथ ही पशुपालन भी कर रहे हैं?
3: पशुपालन नहीं है, पशु पहले से ही अब तो खत्म कर दिया पशुपालन का हमने, इस समय तो नहीं है।
2: अच्छा, इस समय है नहीं। वैसे हाँ, तो हमारे भैया बहनों को जरूरी है खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन करना।
3: हाँ हाँ, पशुपालन हमारे पास नहीं है, लेकिन है, पड़ोस में करती है, पशुपालन भी करती है।
2: तो आपको फिर जो खेत में गोबर की खाद वगैरह है, इसके लिए क्या कहाँ से खरीद के डालनी पड़ती होगी फिर?
3: हाँ, खरीद के डालती।
2: और आपको किसान सम्मान निधि है, ये मिल रही है?
3: नहीं, हमें नहीं मिल रही।
2: इसका क्या कारण है भैया?
3: मतलब जमीन पापा के नाम में है।
2: अच्छा, पापा के नाम, तो पापा हाँ, को मिल रही होगी आपके?
3: हाँ, पापा को मिल रही है, और हमारे नाम में है, तो हमने वो खरीदी है, तो वो मैंने बात भी हुई तो बोले गया, जो जमीन खरीदी है उसे सम्मान निधि नहीं मिलती।
2: पौध है, पौध की जब आप डालेंगे उसके बाद उसमें कौन से ऐसे काम है जिनको करना है जिससे हमारी पौध अच्छी रहे?
3: अब पौध डालेंगे, उसके बाद उसको पानी की देखभाल होती है, पानी उसको जो दूसरे तीसरे दिन लगाना पड़ता है, फिर और ये खाद वगैरह है, डाई वगैरह, ये डालते हैं, पौध जल्दी तैयार होती है, 24 दिन में तैयार हो जाए। सबसे ज्यादा पानी की देखभाल होती है, क्योंकि गर्म मौसम में पानी जल्दी खुशक हो जाता है
2: जी जी। और ज्यादा पानी भी नुकसान देता है, उससे भी हमारी पौध पीली पड़ जाता है?
3: हाँ, ज्यादा पानी जब हो जाता है तो वो भी, अब मतलब इतनी लू चल रही है तो उसका जो तापमान गर्म में वो।
2: अच्छा, आपने अपने जो खेत की मिट्टी की जांच है वो करवाई है क्या?
3: अभी कराई नहीं है, कराऊंगा मैं, जांच भी कराऊंगा उसके।
2: अच्छा, वैसे कराते रहते हैं समय समय पर आप?
3: हाँ कराते थे, अब नहीं कराई मैंने,
2: इस बार नहीं करा पाए। अच्छा, तो आपके गांव के जो पास पड़ोस के हैं वो किसान, वो कराते हैं मिट्टी की जांच खेत?
3: हाँ वो कराते थे, करा लेती।
2: अच्छी बात है कि मतलब ये जैसे हम अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहते हैं समय समय पर, इसलिए खेती की भी जांच कराना बहुत जरूरी है।
3: हाँ,
2: आपकी बात करें शिक्षा की, तो आपने कहाँ तक प्राप्त की है भैया?
3: शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन हूँ।
2: पढ़े लिखे युवा किसान है तो खेतीबाड़ी भी आप जागरूकता के साथ कर रहे हैं। हमारे किसान भैया आज आपको सुन रहे हैं कार्यक्रम में, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे?
3: यही है, अपना समय से काम करें, समय से अच्छा फसल, समय की अच्छी रहती है, पिछाई फसल भी सही रहती है।
2: बहुत अच्छी बात बताइए, समय का अपना ध्यान रखें और खेतीबाड़ी में समय से सारे काम करने हैं। प्रेम सिंह जी, आज हमारी आपकी बातचीत हुई, आपने अपना जो कीमती समय है वो हमारे लिए दो है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमारे किसान साथियों ने जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनो, जाके अंतर्गत ममता बहन आपने जो बातचीत करी ना, सफल

0: किस्सा कसरी प्रेम सिंह से वो हमारे किसान साथी ने सुनी। और देखो ममता बहन, हमारे किसान साथी तरह तरह की फसलें अपने खेतन में करते हैं और हमारे कुछ किसान साथी इस समय बैंगन की रोपाई कर रहे हैं।
1: हाँ
0: तो
1: भैया,
0: बैंगन की रोपाई करते समय कुछ बातन को विशेष ध्यान हमारे किसान साथियों को रखनी है और जाकि रोपाई जो है वो जून के महीना में हमारे किसान साथियों को करने होती है। अच्छी उपज लेने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को ध्यान में रखने हैं। जैसे हम बात करें अगर बैंगन की रोपाई के लिए खेत की तैयारी की, तो कम से कम 3 से 4 बार जुताई लगातार करके छोटी छोटी क्यारियां तैयार करके और बैंगन की रोपाई करने को काम कर सकते हैं।
1: और अच्छी पैदावार के लिए जसविंदर भैया, क्यारियों में 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 75 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास को 200 से 250 किलोग्राम जो गोबर की खाद है उसे मिला को मिश्रण बनाए के उसको क्यारियों में डालें। इससे अच्छी पैदावार मिलेगी और बैंगन की फसल बहुत अच्छी बढ़वार करेगी।
0: आमतौर पर बैंगन की जो नर्सरी है ना वो 30 से 35 दिन के भीतर ही तैयार हो जाती है, जैसे हमारे किसान साथी तैयार करते हैं। और इसकी रोपाई के लिए कतार से कतार की और पौधा से पौधे की दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर रखना बहुत जरूरी होता है।
1: और ध्यान रखने हैं हमारे किसान भैया और बहनों को कि रोपाई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई को काम हल को कर दें और कम बारिश होने पर 3-4 दिन के अंतर पर फसल को पानी देते रहें, यानी उसमें सूखोपन ना हो, नमी बनी रहे और ज्यादा जल भराव भी ना हो।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे कहीं ना आपने नमी बनाए रखना जरूरी है और जल भराव के कारण जो बैंगन की हमने पौध लगाई है वो खराब हो जाती है और फिर क्या होता है कि हमारे पास पौध ना बचती है और खेत हमारा खाली रह जाता है और बस उत्पादन पर सीधो सीधो प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारे जो किसान साथी हैं अपनी जो बैंगन की क्यारियां बनाई हैं उनने उनमें से जल निकास की व्यवस्था जरूर कर लें। और बैंगन की फसल में खरपतवार भी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान साथियों के सामने देखी जाती है।
1: उसके लिए हमारे भैया बहन निगरानी के दौरान अगर उन्हें खरपतवार दिखाई पड़े तो उसकी तुरंत निराई गुड़ाई कर दें और निराई गुड़ाई करने से जहां तक है खरपतवार से छुटकारा मिल जाएगा।
0: और देखो ममता बहन, जाके अलावा एक और समस्या हमारे किसान साथियों के लिए आती है, कीट प्रबंधन में भी हमारे जो किसान साथी हैं कीटनाशक को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वे जैविक विधि से भी अगर कीट नियंत्रण करने की कोशिश करें तो हम समझते हैं कि जो उनकी फसल है वो अच्छी पैदावार देगी और सुरक्षित होगी।
1: बिल्कुल भैया, जब बात सुरक्षित की कही तो देखी जाए जो हम कीट को नाशी को उपयोग करते हैं वो अपनी फसल पर, उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारी जो फसल तैयार होते हैं वो काफी दुष्प्रभावित रहते हैं और वो
0: बिल्कुल।
1: आगे स्वास्थ्य पर काफी उसको गहरा असर पड़ता है।
0: और ममता बहन एक चीज को और ध्यान रखें, हमारे किसान साथी जब फल बन जाता है ना बैंगन के, तो इनकी 7 से 10 दिन के अंतराल पर तुड़ाई जरूर करें। और एक चीज को और ध्यान रखें, अगर कोई कीटनाशी को प्रयोग कर रहे हैं तो कीटनाशी भी जब आप उसमें छिड़काव करें तो कम से कम 10 दिन को अंतराल जरूर रखें। जो तैयार फसल है उसको खेत से बाहर निकाल लें और अगर जरूरत पड़े तो 10 दिन तक बामे छिड़काव बिल्कुल ना करें और 10 दिन के बाद ही उसकी छिड़काव करें उसमें।
1: जो बात करी जाए जैव रसायन की तो बैंगन में कपूर को इस्तेमाल सबसे बढ़िया है। पौध की रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद इसकी अगर कर देते हैं तो जो भी कीट को प्रकोप होता है तो उससे हमारी फसल बची रहती है।
0: ममता बहन एक और, जब वायरस लग जाता है मोजेक और पत्ती पीली पड़ने की समस्या को कम करने में भी मदद करता है, पौधे की हरितमा और बढ़ाए का क्लोरोफिल सुरक्षित रखता है। तो इन सब उपायों को भी हमारे किसान साथी जो हैं बैंगन की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और सुरक्षा के तौर पर ये काम कुछ अपने किसान साथी बैंगन की फसल में कर सकते हैं। हम तो अपने किसान साथी इनसे यह कहेंगे कि बैंगन की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए ये कुछ काम हमारे किसान साथी अगर बैंगन की फसल में करेंगे तो बैंगन की फसल से अच्छी पैदावार मिल सकती है।
1: तो जसविंदर भैया, जैतो ही बैंगन की रुपाई में सावधानियां और अब हमारे कार्यक्रम में ज्यादा समय ना बचो है जो अपने भैया बहन से और बातें करें,
0: बिल्कुल
1: लेकिन चलन से पहले अपने भैया बहन को बता दें कल के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। कल चर्चा में सुनेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना, साथ ही लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे हमारे भैया बहन और कृषि संकेत में इस पखवाड़े के कृषि कार्य सुन सकेंगे, साथ ही भेंट वार्ता तो सुनेंगे ही और मौसम की जानकारी भी सुनवाई जाएगी कल के कार्यक्रम में।
0: और ममता बहन
1: हाँ
0: अंत
1: भैया,
0: में एक सूचना और अपने किसान साथियों के लिए बता दें कि हमारे कार्यक्रम में मई से कुछ बदलाव करे गए हैं और उनके बारे में हमारे किसान साथियों को बता दे रहे हैं कि प्रत्येक महीना के पहले बुधवार को सफल कृषक से करी गई भेंट वार्ता सुनवाएंगे हम और दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से करी गई बातचीत सुनवाएंगे। तीसरे बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी को आयोजन करो जाएगा और चौथे बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप कार्यक्रम भी हम अपने किसान साथियों के लिए सुनवाएंगे।
1: और अगर पांचवा बुधवार पड़ जाता है तो उसको सुनवाएंगे हमारे भैया बहन को सफल कृषक से बातचीत। और इसी तरह से गुरुवार के दिन सुन सकेंगे महीना के पहले गुरुवार को आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और दूसरे गुरुवार को सुनेंगे कृषि पत्रिका खेत खलियान।
0: बिल्कुल।
1: और तीसरे गुरुवार में सुन सकेंगे हमारे भैया बहन आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और कृषि पत्रिका खेत खलियान सुनेंगे चौथे गुरुवार को। अगर पांचवा गुरुवार महीना में पड़ जाता है तो भैया बहन सुनेंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्य।
0: और इसी प्रकार से अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो महीने के प्रत्येक पहले और तीसरे शुक्रवार को कार्यक्रम होगा लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित, और दूसरे और चौथे शुक्रवार को हम सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान होंगे कार्यक्रम में। और अगर पांचवा शुक्रवार होता है महीने में तो कार्यक्रम होगा लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित। और ममता बहन अगर हमारे कार्यक्रम से हमारे किसान साथी जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ जो मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर हैं वे हम अपने किसान साथियों के लिए बता दें। मोबाइल नंबर है 0595-2324-326। इस नंबर पर फोन करके आप सीधे अपनी समस्याएं और अपनी जो भी फरमाइश है उसको आप बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप या फिर एसएमएस करने के लिए हमारा एक दूसरा नंबर है, नंबर लिख लें 9410087876। इसके अलावा अगर जो हमारे श्रोता हैं वो ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल का पता है patramila@rampur.gmail.com।
1: इसके अलावा जो पत्राचार हेतु भी अपनी फरमाइश लिख के भेज सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं, उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901।
0: और ममता बहन देखो आज को कार्यक्रम तो बस हमारो यहीं तक, अगले कार्यक्रम तक अपने सुनने वालों से ले लें इजाजत। तो कार्यक्रम के अंत में अपने भैया जसमिंदर
1: और अपनी बहन ममता को दें अनुमति। राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडिया वीर 336.7 मीटर पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम आसपास।
1: नमस्कार। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह क्या हुआ खास, आप तक वो जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास, साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। आसपास के आज के इस अंक में आपका स्वागत है।
2: आसपास के आज के इस अंक में शामिल है, अजा खाना है बाबुल मुराद इकरोटिया सादात में 25 मई को असद अब्बास के स्वयं की हुई मजलिस, फनेड़ी सादात से आए मौलाना एजाज हैदर ने मजलिस को किया खिताब। ईद उल अजहा का त्योहार 28 मई को धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर किए पुख्ता इंतजाम। इस बाबत जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा ने दी जानकारी। रामपुर जिले में 1258 मस्जिदों और 190 ईदगाहों में हुई ईद उल अजहा की नमाज। रामपुर में शाबाद गेट स्थित ईदगाह में काजी शहर सैयद अनस मियां ने पढ़ाई नमाज। शहर के मोहल्ला गुया तालाब स्थित शिया जामा मस्जिद में मौलाना अली मोहम्मद नकवी ने नमाज पढ़ाई। 25 मई से 2 जून तक नौतपा में लोग सूरज की तपिश से तपेंगे। इस समय सूरज कर्क रेखा के निकट है। नौतपा की बाबत पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी जानकारी। अजा खान है बाबुल मुराद इकरोटिया सादात में 25 मई को हुई असद अब्बास के स्वयं की मजलिस को खिताब करते हुए फंदेड़ी सादात से आए मौलाना एजाज हैदर ने कहा,
3: जो अल्लाह से कलाम करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला, गुफ्तगू करने वाला, तो क्या अल्लाह ने दूसरे ने कलाम नहीं किया? दूसरों ने भी किया। हजरत ईसा को रूह अल्लाह का लकब, तो रूह अल्लाह के दूसरे हजरत आदम का लकब को भी रूह जब अपनी रूह को दूसरे को लकब सच मिला था, तो सिफत के एतबार से सारे नबी मुशरक है, मगर लकब वो होता है कि जो जिसको दे दिया वो उसका हो गया, जो जिसको दे दिया वो उसका। अब अगर एक अली को खलीलुल्लाह कर दिया तो वह जो कलाम वाले की आवाज पहुंचे खलीलुल्लाह ने कर दिया कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के मगर नहीं तय करेंगे बुदाय साहब के खलील के वाली दोस्त क्या होते हैं। हुजूर को लगा दिया खलीलुल्लाह, हुजूर को लगा दिया खलील उस दोस्त

0: ईद उल अजहा पर सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त की बाबत रामपुर के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र मीणा ने हमें बताया।
1: ईद के पर्व के दृष्टिगत सभी संवेदनशील बिंदुओं पर पर्याप्त फोर्स लगाया गया है, सेक्टर वाइज ड्यूटी डिप्लॉय की गई है और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है और सभी राज्य लगातार उसके बाद में कुर्बानी होगी। कुर्बानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहाँ पर लगातार फोर्स अलर्ट है और सभी को बताया गया है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी। जो भी कुर्बानी होगी वो क्लोज स्पेस में होगी और कोई भी कुर्बानी से संबंधित सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जाए। जनता से यही अपील है कि त्योहार को पूर्व की तरीके से ही सौहार्दपूर्ण तरीके से निष्पादित करें और प्रशासन के द्वारा जहाँ भी सहयोग अपेक्षित किया जाए वहाँ सहयोग।
0: ईद उल अजहा पर की गई तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने हमें बताया।

0: से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो जो है कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा दी गई है, इसके साथ ही साफ सफाई, बिजली व्यवस्था इत्यादि के भी इंतजाम कराए गए हैं। साथ ही नमाज के बाद जो कुर्बानी की परंपरा होती है उसमें जो अवशेष निस्तारण होता है उसकी व्यवस्था भी बनाई गई है। नगरीय क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। अभी ही जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि सभी जगह पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।
1: शहर में शाबाद गेट स्थित ईदगाह में शहर काजी सैयद अनस मियां ने नमाज अदा कराई। शहर काजी ने खुतबे में कहा,
2: बरादरान इस्लाम, यह ईद उल अज़हा कहलाती है, यानी कुर्बानी की ईद। कुर्बानी का नाम आते ही हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल और हजरत हाजरा अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की शख्सियात
1: शिया जामा मस्जिद रामपुर में मौलाना सैयद अली मोहम्मद नकवी ने नमाज पढ़ाई। मौलाना ने खुतबे में कहा,
3: इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिए दिया कि अल्लाह का हक अदा करो और गरीब की अमानत उसके घर तक पहुंचाओ, तलाश करो, ढूंढो, देखो और इस अंदाज से पेश करो कि किसी को एहसास नहीं होना। लिहाजा हमें जहाँ अल्लाह ने आपका अपना ख्याल किया है, आप साहिब हैसियत हैं, आप उसने ग्रामर को कबूल कर लिया और दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम इस इबादत और इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करे। इसलिए कि अगर हल्का सभी इसमें जहन में आ गया, मैं बढ़िया रख रहा हूँ ताकि लोग ये कहें भला साहब बड़ा अच्छा ले गया कुर्बानी के, मैं सबसे महंगा रहूंगा ताकि महल वाले कहें भाई अपनी हैसियत के एतबार से आया है। अगर ये जहनों में है बस मैं ही खत्म, हमें कुर्बानी को जैसे हालात हैं जैसी हैसियत है हमें उसी हैसियत के एतबार से जानवर में हिस्सा लेना है या अपने जानवर को कुर्बान करना है और इनको जो हकूक है गरीबों के रिश्तेदारों के बरादरी का उसे हमें हिस्सा नहीं करना है, हमारी जिम्मेदारी है हम पहुँचाएँ। लिहाजा ये सीनत है हजरत अलैहिस्सलाम, आप देखेंगे कि किसी भी मासूम ने कभी साहिल को अपने दरवाजे पर बुला के नहीं किया, इन्होंने रात में भी अगर जाके दिया तो चेहरा फिर भी नहीं दिखाया और इमाम हजरत अलैहिस्सलाम तो सोते हुए उनके सराहने रख जाया करते, सोते हुए उनके सराहने रख जाया करते थे। एक मतलब एक साथी पीछे लग गया, इमाम ने कहा कौन है, कहा मौला आपका जाने वाला हूँ आपका साथी, कहा क्यों आया, मैं तो तन्हाई में निकला हूँ अंधेरे में निकला हूँ, कहा मौला एक बात पूछनी, मैं बहुत देर से आपके पीछे बता रहा हूँ, सब सो रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि मैं देने वाला कौन है। इमाम ने कहा मैं ये थोड़े दे रहा हूँ, मैं जिसे दे रहा हूँ ना उसे नींद आती है ना ऊँग आती है, मैं उसे देख रहा हूँ, वो जितना आदमी वो जाने में देखता है उतना ही रात कर देता।
1: नौतपा में लोग गर्मी से झुलस रहे हैं। नौतपा के संबंध में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा,
4: यह समय नौतपा, नौ नक्षत्रों पे सूर्य का भ्रमण होता है और उन नौ नक्षत्रों में बारिश के समय आर्द्रा पुनर्वसु आदि जो नक्षत्र होते हैं उन्हीं में मघा पूर्वा फाल्गुनी आदि विशेष वर्षा प्रदान करते हैं। अगर इन नौ दिनों में किसी भी नक्षत्र में बारिश नहीं होती तो प्राकृतिक ऊर्जा से बारिश का समय उत्तम रहता है और बरसात में कृषि योग्य पूर्ण उत्तम वर्षा होने से कृषि भूमि और किसानों को बहुत ही फायदा होता है, उपज में बहुत ही अच्छी उन्नति होती है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सभी मानों को सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण की उपासना बहुत ही सरल है। भगवान सूर्य की मंत्र यानी सविता गायत्री से भगवान सूर्य को एक लोटा जल लें, थोड़ा सा चावल डालें।

0: किसी क्षेत्र में लाभ होता है और पृथ्वी की निरोग होने का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। पृथ्वी किस प्रकार निरोग होती है, उस पृथ्वी के अंदर जो खरपतवार रूपी रोग बसे होते हैं वह कृषि की उपज को हानि पहुंचाते हैं। तो यह भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के इस समय उस खरपतवार रूपी रोग के पृथ्वी के निरोग करती है, उनको जला देती है। और यह भगवान सूर्य की उपासना मनुष्य को अपने नहीं समाज के लिए और कृषि भूमि की उपज के लिए करनी चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अगभाई। जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करता है उसका कल्याण स्वयं हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सूर्य नारायण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम नमः सूर्य नारायण नमः, भास्कराय नमो नमः, दिनकराय नमो नमः, दिवाकराय नमो नमः।
1: आसपास के आज के इस अंक में बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है आसपास कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। इसी के साथ संपन्न होता है क्षेत्रीय गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास।
2: वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की थी।

आसपास। अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र गतिविधियों पर आधारित ये कार्यक्रम, संकलन सुहेल जैती का और प्रस्तुति थी विक्रांत चौधरी की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
7: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
6: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
7: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
6: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
7: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
7: याद रखिए,
8: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
9: तो आने वाले समय की जो योजनाएं हैं, कहते थे जो
10: तन से पहुंचे
9: और भैया देखो, इसके लिए कहूँ बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए, चाहे तो अपने स्वयं कर सकते हो या तो आप जाए के जनसेवा केंद्र पर यहाँ कराए सकते हो। और अब देखो भैया, घड़ी कर रहे इशारा के पंच भाई तलीन जय आज्ञा
10: जय।

0: पर्सनल की, मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: घर घर सूर्य घर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आया।

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी DGP। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
2: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
2: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
3: जी, बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
1: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
4: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए जिससे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
5: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता, और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
1: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1,011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

संध्या के 7:31 हो चुके हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं जितरा सिंह के स्वर में कुछ गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी चित्रा सिंह और सलमा आगा की आवाज में गजलें।
1: ये है आकाशवाणी रामपुर, जिसे सुन रहे हैं आप मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मम्मी मम्मी कहाँ हो? जरा एक ग्लास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
1: अभी लाई।
2: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूँ इस बचे हुए पानी का?
0: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
2: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
3: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात

0: से लाऊं पानी,
1: पानी।
0: एक बूंद भी पानी नसीब पानी। नहीं
1: पानी।
0: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
1: पानी, पानी।
2: ये तस्वीर है आने वाले कल की।
1: पानी।
2: अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे है पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ,
2: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 8 बज चुके हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जैसी आका का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के साथ आइए देखते हैं कौन सबसे पहले हमसे जुड़ा है। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, संगीता रानी पप्पू महक, सुनीता रानी आरजू, हसमुख लाल बुलबुल शक्ति खुश दिल, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा ही खुश दिल परिवार। मोथाना महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर,

और ये हमारी श्रोता है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से आपका पूरा परिवार

नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामणी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम अकरम रुबीना, आरिज नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी कलेर बिहार से हैं, मोहम्मद आसिफ खान, निगत परवीन। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन बेगम, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी, हिना कौसर। और प्रेम पूर्वक नमस्कार के साथ हमसे जुड़े हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार सचित, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना देशमुख,

पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से सईद भाई, सुफियान अनस आयजा, सैफ अल्फिया सदफ, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दो बिहार नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति और नवनीत रॉय। आप सब ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

इसी गीत को सुना था, सुनना चाहा था सागर लखा दौन मध्य प्रदेश से, लाडा जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खारगोन मध्य प्रदेश से इसी गीत की ख्वाहिश की थी। तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और आपके परिवार के समस्त लोग। राजौरी जिला महोबापुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उभयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और बघेल परिवार। गंजडवारा उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें भेजा था मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी।

मेन रोड तिला राह से प्रकाश पोहर का नर्मदा पोहर कर सुजाता पोहर कार तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद अनिस सिद्दीकी हमजा सिद्दीकी गुलशन साहिबा जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर के एम से गांव वाराणसी हिसार से राजकुमार दौदी प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार दौदी कार्यक्रम का अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म का नाम फना और ख्वाहिश हमारे आप सभी श्रोताओं की

ऊर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मैनी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा।

इंदिरा कॉटेज, तल्लीताल नैनीताल के हमारे श्रोता मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या रावत, आप सबकी फरमाइश पर पेश है फना फिल्म का ये गीत, जिसको गाया है सोनू निगम, सुनिधि चौहान ने।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाए।

0: थी अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: इसी गीत की ख्वाहिश की थी मोहल्ला बरादरी महमूद खरामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान और अफसर अली नगमा नाज मंसूरी ने। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड से हाजी इमहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। इसी गीत को सुनना चाहा था रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। गांधी समाधि रोड रामपुर से आजिया गफ्फार खान, राजिया बेगम, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान, राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफ शाह, जीनत अमान और शमा परवीन। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राज्यपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और ये हैं जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर, बेगम रुखसार, रकीबा शाहिन, तूबा फ्रिंड, शमीम अख्तर अंसारी। और ये पसंदकर्ता जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद और बल्लू निषाद और तरुण यादव। संघर्ष ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आपके लिए लेकर आए हैं श्रद्धा पंडित और सोनू निगम की आवाज में। ख्वाहिश हमारे आप सभी श्रोताओं की ततरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी।

स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। पेश है आप सबकी फरमाइश पर संघर्ष फिल्म का ये गीत, जिसको गाया है सोनू निगम और श्रद्धा पंडित ने।

श्रोताओं, तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको प्रोग्राम सुचारू रूप से नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है। सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान, सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमेन, प्रमिला डोमेन, आशा डोमेन, निशा डोमेन और डोमेन परिवार, तख्तापुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी, पनहाला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बब्बन चोगले, दंदरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, आजाद रोड सनावत से मोहम्मद अल असलम खत्री, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सिद्दीकी, आफिया राफिया, मोहम्मद अदनान खत्री, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, आप सबको सुनवा रहे हैं बेवफा से वफा फिल्म का ये गीत जिसको गाया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दविंदर वरिंदर, कुलदीप सिम्मू एकम दमन अभिजीत, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा नंदिनी, आराध्या खट से, वैष्णवी खट से, ललित नारायण भाऊ खट से, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रियादिशानी और निमित आहूजा, वंगिट खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, सुधाकर पाटिल और मित्र परिवार सुलेपनाला कोल्हापुर महाराष्ट्र से, बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान, मोहम्मद यूसुफ अनाबिया सिद्दीकी, बेटी अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान, ये हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का क्या कसूर को। फिल्म दिल का क्या कसूर में आशा भोसले और कुमार शानू को।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गाता चल समाप्त करने की शहज़ियागा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। मीडियम वेव 336.7 मीटर पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभ भी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने

0: खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप हेल्प नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के

0: समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkhon town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
4: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
3: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Iyer, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
4: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
3: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
4: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power Manohar Lal today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. On the occasion, the Union Minister distributed loan checks and QR-coded credit cards to street vendors to promote digital transactions and economic self-reliance. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. Chief of Defence Staff CDS General N.S. Rajasubramani today said the armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding the nation's interest. He said they remain committed to protecting India's sovereignty and territorial integrity. General Subramani was addressing the media after assuming charge as the country's new CDS.
5: We pay homage to our brave hearts whose valor, sacrifice and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris. I assure the citizens of India that the armed forces will continue to serve the nation with dedication, courage, honor and professionalism.
3: Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media on the occasion, Admiral Swaminathan said the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interests and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. West Bengal Governor R.N. Ravi today expressed concern over security vulnerabilities along the India-Bangladesh border, saying that unfenced stretches of the border pose a threat to national security. The governor was speaking to the media at Baghdogra before attending an event in Siliguri. He also stressed the need to strengthen security along the strategically important Chicken Neck Corridor that connects the northeast with the rest of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock,

0: Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमा के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासिद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदामात और हुसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने

0: प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन एक रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गुर्जर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पौनबंशी संतलत के मक्के महर्षि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
0: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिले कद्र गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वजीर आजम ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तिरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निजाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल है। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जाजार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाके रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन

0: स्क्रीन मार्किंग ओएसएम निजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निजाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में बीजेपी ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में बीजेपी ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फॉर्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए हैं, चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। एसआईआर का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर नेज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोख देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है, क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हसास जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाके है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले दो दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने दो साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दीगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj based on the archival inputs of All India Radio.
3: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा, और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रही।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी, खबरदार आता, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाया। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सरल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। हम पर बैठकर दवाई से देखना आसान, तुम खुद दवाई से बनकर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मैं देवी को बताऊंगी एक लड़की

0: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
1: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है

0: रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस ये समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी, मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे, वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद है और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था, जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस विराम के बाद।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदल

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही रहती ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

ঝকরে ঝুলে অঙ্গ অঙ্গ ফুলে কদম্ব সন সাঁস

जटिल कर्म पथ पर थर थर थर कांप लगे रुकने पर, जटिल कर्म पथ पर।

0: अंतिम पद है,
1: उत्तर गगन से एक बार फिर पी कर इसका प्याला, उत्तर गगन से एक बार फिर पी कर।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
4: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a saxophone recital by Sri Asanapurappu Yerraya and Party, accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri Asanapurappu Yerraya is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
3: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
4: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरप्पु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण and Tiruchirai T.G. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top-grade artist of Akashwani.
3: Shri Yeraiya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. Ye rachna T. Singarachari ki hai, jo raag vasant aur aditaal mein nibaddh hai.
4: Shri Yeraiya begins his saxophone recital with Ninnu Kori Yunannura, a composition of T. Singarachari in raag vasanta set to aditaal.

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विथ नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to निन्नु जेप्पा कारणमेनी, a composition of पटनम सुब्रमण्यम अय्यर in राग मंदारी, set to आदिताल।

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सुरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
4: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
3: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
4: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs

रायपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न हो रहे हैं। इसी मीटर पर सवेरे 5:52 पर मीडियम वेव और FM दोनों मीटर्स पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी।